0: आ गया, आ गया, आ गया।
1: आज का हूं मैं, मेरा नाम केतन है। केवड़ा नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच वॉक शो। आप मुझे सुन रहे हैं आज के इस दिन पे, वी आर स्टैंडिंग राइट इन बिटवीन द वीक। वेल इस संडे, नॉट दिस संडे बट मे बी द नेक्स्ट संडे, राइट? या आई थिंक सो। मतलब जो आ रहा है 21 को, वो नहीं, मेरे ख्याल से 28 तारीख को डे लाइट सेविंग जो है वो चेंज होने वाली है, यानी कि अभी जो भी है फट से एक घंटा आगे बीत जाएगा। होपफुली आई एम करेक्ट, राइट? होपफुली आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हूं तो प्लीज बता दीजिए मुझे 5599 पे टेक्स्ट करके। बट यस, अगर आप बेसिकली सो रहे हैं और जैसे ही रात की 2 बजती है, 2 बज के फट से 3 बज जाएगी, तो यानी कि आप अगर संडे को काम कर रहे हैं सुबह, तो आपको एक घंटे पहले सोना पड़ेगा, यानी कि आपकी एक घंटे की नींद कम हो सकती है। या बट जो नहीं कर रहे, कोई बात नहीं यार, चिल करो यार। सुबह उठोगे लगेगा, अरे आज मैं इतना लेट कैसे उठा, तो लेट नहीं उठे बाबुआ, बस टाइम थोड़ा चेंज हो चुका है। वैसे यस, बने रहिए होम सिक रेमेडीज के लिए, आप मुझे टेक्स्ट भेजिए 5599 पे, या फिर कॉल करिए। कॉल करके बात करने का मजा ही अलग है, लाइक यू नो, एक्सप्रेशन वाइज इमोशंस ये सब दिखती है, और कम्युनिकेशन, फिर और थोड़ा और बातें भी होती है, सवाल जवाब भी होते हैं। टेक्स्ट पे तो क्या है, खुद ही इमेजिन करना पड़ता है कि सामने वाला बंदा कैसे बोल रहा है। सो यस, 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे टेक्स्ट भेजेंगे फॉर होम सिक रेमेडीज।
2: बचाओ क्या,

What a song, what a song, what a song. फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के. बहुत ही प्यारा यार, लाइक आई डोंट नो ये मूवी कितनों ने देखी है. आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है ये गाना इस फिल्म का है. उनको ये लगता है कि कोई पुराना जो फिल्म है उससे इन्होंने किया है, या फिर यू नो लास्ट टाइम व्हेन सोनू निगम वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द इंडस्ट्री तो वो इसी तरह के कवर सॉन्ग्स गाया करते थे ताकि वो सीडीज भेजा करते थे, कैसेट भेजा. सीडीज तो तब थी नहीं उस टाइम पे, सो कैसेट्स में रिकॉर्ड करके देन ही यूज्ड टू डिलीवर इट टू ऑल द म्यूजिक स्टूडियोज एंड ऑल. सो दिस इज व्हाट ही डिड एंड वैसा ही लगा. बट ये मेरे ख्याल से ओम शांति ओम का गाना ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट बहुत ही प्यारा लगता है मुझे जिस तरह का. मैं कहूँगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद पहला बॉलीवुड का मैशअप सॉन्ग था एज अ सिंगिंग प्रस्पेक्टिव. मोस्टली मैशअप सॉन्ग तो बहुत बने ही हैं बट बॉलीवुड में यूज नहीं हुए. प्लस ऊपर से सिंगिंग को लेके लाइक यू नो एवरी सॉन्ग दे हैव रीएडजस्टेड टू फॉलो द सेम कोड्स. आई नो नॉन म्यूजिशियन शायद ये नहीं समझ पाए but this is what it is. Amazing song yaar, amazing song. Even I also love to sing the song, you know, jab bhi live performance hoti tha. But yes, anyways, ek funny baat batata hu. So basically ye gana hum perform karne wale the, kafi retro wale you know retro lovers aaye hue the audience mein when I was performing in Parnell. To wahan pe maine Ayush bhai jo hamare guitarist hai, mahan guitarist, to un bhai sahab ko humne bola ki bhai ye wala gana gana. To are kya baat hai, let's do it. तो मैं गा रहा हूँ और स्टार्टिंग में गाया. और बेसिकली क्या हुआ है कि कोड्स को मैच करने के लिए उन्होंने थोड़ी जो धुन है ना छेड़छाड़ की है ओरिजिनली. लाइक इस गाने में अगर आपने देखा होगा तो ओरिजिनल जो गाने हैं वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं, उन्होंने थोड़ा बहुत स्क्वीज करके थोड़ा बहुत रीएडजस्ट किया. तो ये मुझे नहीं पता था कि इन भाई साहब को नहीं पता है. तो इन्होंने सीधे से बोल दिया भाई क्यों नहीं गा सकता है तो बंद कर भाई, क्या बकवास कर रहा है. और मेरे को लगा कि शायद मज़ा नहीं आ रहा है वो इस वे में बोल रहे हैं. फिर आयुष ने बोला यार क्या घटिया गा रहा था तू, यार क्या गा रहा था, हर कुछ गा रहा था, कोड्स में नहीं आ रहे थे. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो. तो डेनिस से पूछा हमने कि भाई डेनिस जो ड्रमर है हमारा उनसे पूछा कि भाई क्या मतलब इतना ख़राब था क्या. कि नहीं भाई तुम तो एकदम पिच परफेक्ट थे यार, बढ़िया गा रहे थे. तो मैंने कहा ये बोल रही है. मैंने कहा आपको कहाँ लगा कि ये ऐसे गाया जाता, तुमने ऐसे क्यों गाया. मैंने कहा भाई साहब ये गाना ऐसे ही गाते हैं इसमें. तो ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही नोज बट एक्चुअली ही डजंट, ही डिड नॉट नो. सो बेसिकली इन्होंने उनको लगा कि ये गाना जो है ना, उन्होंने स्टार्टिंग की ही लाइन सुनी और उनको लगा कि यह ओरिजिनल जो है ना वो है. तो इन्होंने ये वाला गाना तो सुना नहीं मैशअप वाला, तो उस वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी. बट इट वाज अ गुड, हम इतने हंसे. मैंने कहा भाई साहब इनको और भी गाने सुनाओ, इंग्लिश छोड़ के हिंदी में भी सुनाओ गाने, थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी. बट एनीवेज होम सिक रेमेडीज के लिए ये रहा मैसेज. हे केतन, वॉकिंग थ्रू क्वीन स्ट्रीट यस्टरडे एंड आई रियलाइज लिटरली एवरी सिंगल पर्सन इज वेयरिंग द एग्जैक्ट सेम ब्लैक पफर जैकेट फ्रॉम द लोकल नॉट लोकल एक्चुअली इंटरनेशनल. ये मैं ब्रांड जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ ऑब्वियसली फॉर सम रीज़न, बट ये ब्रांड एक्चुअली नेपाल से. नाउ यू नो कौन से मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, पफर जैकेट्स. सो एज एन नाम उनका है, वो वहाँ से है नहीं है वो मेरे को पता नहीं है, बट वहाँ का है. सो बैक होम स्ट्रीट्स वर फिल्ड विथ ब्राइट कलर्स, कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेज एंड वाइब्रेंट प्रिंट्स. यस्टरडे आई वोर द ब्राइट येल्लो जैकेट एंड फेल्ट लाइक एवरीवन वाज स्टेयरिंग एट मी like an alien. Auckland Winton fashion feels so dark, monochromatic and dull. It makes me miss the vibrant color of home so much. How do we stay? Bhai sahab, ye to yaar aapne literally out of syllabus wali baat ki hai. Matlab ye hai, but to be honest, main itna zyada fashionable nahi hu. Like I मुझे जो पसंद आता है मैं पहन लेता हूँ. आई एम वेरी वेरी बैड. और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई तू क्या कुछ टोन जो है उसको थोड़ा ध्यान में रख के कर दे. सो आई डोंट नो यार, मैं तो खैर इसका जवाब दे नहीं पाऊंगा. बट इज देयर एनीवन ओवर हियर जो जवाब दे सकते हैं, फील फ्री आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं 5599 पे, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0800 004866 पे. ये है मीरा जी का मैसेज है. मीरा ऑकलैंड की मीरा, नॉट अदवान. बट यस एक मैसेज आया मीरा जी, इस मोनोक्रोमैटिक बोरिंग फैशन देर यू नीड टू सरेंडर दिस बिकॉज आई मीन यू डोंट नीड टू सरेंडर इट बिकॉज यार क्या लिखा है. ओके
ओके माई बैड, वो थोड़ा सा स्पेलिंग वैसी थी उस वजह से, वो हिंदी इंग्लिश इंग्लिश कर रहे थे ना, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया. बट ये कह रहे हैं कि यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ फैशन, बट डोंट वरी. आई मीन लाइक आई डोंट थिंक सो एनी वन शुड जज, बट यू जस्ट फॉलो वॉट यू फील लाइक, एंड इफ यू लव एनी ट्रेंडिंग कलर देन यू वेयर इट, बट इफ यू डोंट फील लाइक डोंट वरी. आई मीन लाइक डोंट वरी अबाउट वॉट पीपल गोना से, जस्ट लव योर सेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव. अरे वाह, क्या सही मैसेज आया. इन्होंने सुझाव तो नहीं दिया है बट मोटिवेट जरूर किया है कि क्या, यू नो, यू शुडंट बी वरिंग अबाउट अदर पीपल, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. दैट्स सो कूल, बट कूल. थैंक यू सो मच. अगर और भी कोई है जवाब देना चाहेंगे इस पे तो मुझे आप बता दीजिए 5599 पे. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. 80s के रेट्रो गाने.

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

0: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
1: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
2: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
1: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
3: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
4: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. My Dia washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
6: Non-stop Bollywood.
7: Hum.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Lunchbox with Ketan.
9: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
8: Hum.
10: Hi, hi, hi, hi.
6: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक। चलिए एक मैसेज पढ़ लेता हूँ आप सभी के लिए। इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस। पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, चेक इन एंड रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग, रीच आउट एंड टॉक टू अ ट्रस्टेड प्रोफेशनल। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800 862 342, 0800 862 342 for free and confidential mental health support. If you are someone is in immediate danger, please call 111 or emergency services.

0: वेलकम बैक। चलिए फटाफट से हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड देख लेते हैं। 1905 में न्यूजीलैंड की पहली फुली रिप्रेजेंटेटिव रग्बी टीम ओरिजिनल्स ने नॉर्थ हेमिस्फेयर का टूर किया था और उन्होंने करीबन 35 में से 34 मैच जीते थे और हाका और ऑल ब्लैक्स निकनेम काफी पॉपुलर बनाया। इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही और उन्होंने अपोनेंट को लार्ज मार्जिन से हराया। उनकी एक मेजर डिफीट वेल्स के अगेंस्ट 3-0 थी। सो यस, ओरिजिनल ने न्यूजीलैंड रग्बी को इंटरनेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश किया था और ऑल ब्लैक्स की फेमस ट्रेडिशंस की फाउंडेशन भी रखी जो आज बरकरार है। बहुत ही अमेजिंग, राइट? वैसे मैं जानना चाहूंगा न्यूजीलैंड ने कितने रग्बी वर्ल्ड कप जीते हैं, बताइए मुझे 5599 पे। न्यूजीलैंड ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, रग्बी वर्ल्ड कप, आप मुझे बताइए 5599 पे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: Media works complaints. How can I help?
5: Yeah. Hello.
4: Hi.
5: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
4: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
5: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
4: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
5: Great. Sing it to me.
6: Advertise with
7: Media Works.
6: New Zealand listens to us.
8: JB Hi-Fi is celebrating the stunning store refresh of JB Sylvia Park this Thursday from 5 p.m. with Cost Plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Sylvia Park this Thursday, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
1: Lunchbox with Keithan.
9: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
10: हम चटनी शॉट्स।
0: चटनी शॉट के सेगमेंट में स्वागत है। एक लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। हेस्टिंग्स से आई है जहां पे स्पीड लिमिट कम करने का प्रपोजल रखा गया है। वेल, काउंसिल ऑलमोस्ट 60 रोड्स की स्पीड लिमिट को रिड्यूस करने का प्रपोजल दे रही है। इसका मेन रीजन है कि हेस्टिंग्स के कुछ एरियाज में स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट, लैंड यूज चेंजेस और स्कूल सेफ्टी को देखते हुए करंट स्पीड लिमिट्स को अपडेट करने की जरूरत पड़ रही है। अभी न्यूजीलैंड में जनरली अर्बन एरियाज में डिफॉल्ट स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आर है और ओपन रोड्स या रूरल हाईवे पर 100 किलोमीटर पर आर होती है, अनलेस कोई डिफरेंट स्पीड लिमिट साइन वहां पे लगाई गई हो तो। प्रपोज चेंजेस काफी रोड्स पर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, फ्लैक्समेयर में कुछ रोड्स की स्पीड लिमिट जो है 50 से 30 किलोमीटर पर आर है। एक्चुअली किया जा सकता है 50 से 30 आर, यानी कि 20 किलोमीटर स्पीड कम करनी पड़ सकती है। हैवलॉक नॉर्थ में कुछ रोड्स 80 से 50 कर दिए जाएंगे, ये प्रपोजल है ऑफ कोर्स। एंड कुछ जगह पे जहाँ पे 100 है उसे 50 कर सकते हैं। कुछ रूरल्स या सेमी रूरल्स रोड पर चेंजेस जो हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल है, जैसे 100 से 80 किलोमीटर या फिर 100 से 70 किलोमीटर पर आर। टेमरा पीक रोड पर प्रपोज्ड 40 से 20 किलोमीटर पर आर की होने वाले की आशंका है, यानी कि ये काउंसिल की तरफ से प्रपोजल रखा गया है। रीजन क्या है? ऑफकोर्स काउंसिल के अकॉर्डिंग कुछ मेजर लुकिंग चेंजेस एक्चुअली शॉर्ट रोड्स या शॉर्ट रोड सेक्शन पर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉल्ट सेड प्लेस जैसे शॉर्ट नो एग्जिट रोड पर 100 से 50 किलोमीटर पर आर का चेंज प्रपोज्ड है। नेपियर रोड के सिर्फ अराउंड 700 मीटर्स के सेक्शन और मिडिल रोड के अराउंड 1.35 किलोमीटर का सेक्शन अफेक्टेड होगा। कोई भी प्रपोज स्पीड रिडक्शन 3 किलोमीटर से ज्यादा लॉन्ग स्ट्रेच पर नहीं है। अब ये चेंजेस फाइनल नहीं हुए हैं, काउंसिल का जो पहले पब्लिक कंसल्टेशन करनी होगी, पब्लिक फीडबैक कंसिडर करना होगा और रिक्वायर्ड अप्रूवल लेना होगा काउंसिल, पुलिस, NZTA AA और अदर रोड यूजर से भी कंसल्टेशन करेंगी। सो यस काउंसिल काउंसलर्स का जो ये प्रपोजल है वो करीबन 17 सितंबर 2026 की मीटिंग में डिस्कस करेंगे, यानी कि कल के दिन। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, अगर पॉजिटिव रहता है तो हम जरूर बताएंगे।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
0: थ्रोबैक Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Welcome back. You are listening to Lunchbox. मैंने एक थोड़ी देर पहले सवाल किया था. वैसे अभी यहाँ पे ना बॉलीवुड का एक डायलॉग भी मैं प्ले करूंगा जिसे आपको सुन के मुझे 5599 में बताना है कौन सी फिल्म का गाना सॉरी कौन सी फिल्म का डायलॉग है और कौन महान एक्टर ये डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं. सो ये रहा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ एक्चुअली मैंने एक सवाल किया था कि न्यूजीलैंड की टीम ने ऑल ब्लैक्स ने कितने वर्ल्ड कप जीते. एंड यस, मुझे जो जवाब आए हैं दैट इज सो ग्रेट, करेक्ट. 3 वर्ल्ड कप जीते हैं मेंस टीम ने, 1987 में पहला, फिर 2011 में दूसरा और 2015 में तीसरा. वेल यस, इनॉग्रल जो था वो न्यूजीलैंड ने ही जीता था, क्लेम्ड विक्ट्री ऑन होम सॉइल अगेंस्ट अगेन इन 2011, यानी कि 2011 और 1987 का जो था वर्ल्ड कप वो एक्चुअली यहीं पे जीता है, होपफुली यस. एंड लेकिन हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या. वुमेन टीम ब्लैक फर्न ने करीबन 6 टाइटल जीते हैं, 6 बार, 1998, 2002, 2006, 2010, 2017, 2021, वाओ, जो कि 2022 में खेला गया था लेकिन 2021 बोला जाता है उसे. सो ये वर्ल्ड कप जीते, यानी कि वुमेन टीम बहुत ही आगे है मेन टीम से. सो ग्रेट राइट, बट यस लेट्स लेट मी प्ले द डायलॉग यहाँ पे और आप मुझे बताइएगा वो कौन सी फिल्म का या फिर या कौन सी फिल्म का डायलॉग है. देयर यू गो.
3: हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा.

0: मुझे पसंद है लड़का।
1: हाँ।
2: है दोस्तों, इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा, जो इसको जान लेता है ये साला उसी की जान ले लेता है।
3: Yo, yo, honey sing.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हालचाल, 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है एंड 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज वैसे बारिश के आसार नहीं है बट स्टिल इट गोना बी क्लाउडी एंड यस 6:13 पे होगा आज का सनसेट।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: क्या नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स शो। मेरा नाम केतन है, मैं हूँ। 3 बजे तक बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे गपशप और यस एक से बढ़कर एक कंटेंट क्रिएट भी करने वाले हैं आप सभी के लिए। तो आप बस बने रहिए और सुनते रहिए लंच बॉक्स शो। इस आर में आपको बॉलीवुड की खबर भी मिलेगी, उसके बाद लेटेस्ट खबर भी मिलेगी और क्या कुछ नया अपडेट आया है उसके बारे में, यानी कि पॉडकास्ट की बातें या फिर कीर्तन का जो अपडेट है वो, प्लस इलेक्शन में क्या होने वाला है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेंबर यहाँ आने वाले हैं थर्सडे को, यानी कि कल। कौन, आपके सवाल जवाब रेडी रहने चाहिए, मैं उसके बारे में बात बताऊंगा। बट आपको सिर्फ बने रहना है और सुनते रहना है मेरा शो आज अंटिल 3।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल यस, आप लंच टाइम रेंट लाइन के लिए कुछ तैयार कीजिए मैसेज और मुझे भेज दीजिए 5599 पे। कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करेगा आप थोड़ी देर में रिगार्डिंग कुछ ऐसी बातें जो आपको आपके यू नो इर्द गिर्द हुई हो एंड यू फेल्ट सो इरिटेटेड अबाउट। सो यस, फोन उठाइए और मुझे आप 5599 पे या फिर 0800-004-866 पे थोड़ी देर में आप कॉल करिएगा।
1: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
2: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. Midea washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
3: Okay, we've got a handful of coffee beans, hot water, full fat milk, 3 packets of sugar, ooh, and a nice little chalky fish on top. That sound like you?
4: That does sound like me. But wait, how much is that? You know what? I'm actually good. I'm just going to make my own fancy flat white with stuff from Pack and Save.
3: Oh, well that's sick, man.
4: Close, it's Stick Man. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
3: Assembly? Oh, we used to have that at school.
5: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: Naya hybrid dhoon rahe ho? The Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Marugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada Kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Marugao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
7: You know Elite Bathroomware? Family owned since 2002. 48 hard-working Kiwis. One obsession? Bathrooms. With the ultimate showroom and the biggest range, curating the best brands and bathroom fittings so you don't have to compromise. You asked? Elite delivered. The spring bathroom sale is on for September only. It's your chance to have that high-end bathroom with incredible savings. Elite Bathroomware, Kiwi owned and operated, 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.
8: Lunchbox with Ketan.
9: Mujhe pasand hai ladka.
8: Hum. Lunchtime Rant Line.
10: Lunchtime Rant Line ke segment mein aapka swagat hai. Yahan pe main message padhunga. Abhi ek message aaya hai. Wo kehte hain. Hi Ketan, I'm Amit from Papatoto. My rant is about people who leave everything until the last minute. My friend knew about our plans for a week, but started getting ready only 20 minutes before. Then everyone had to wait for him. Yaar, ye hai, I think, because, matlab, ye cheez sab mein hoti hai. Like, even mera bhi, pata nahi kyun. Ye actually, iska solution kya hai, wo toh meko pata nahi. Let me just have a think ki iska kya response ho sakta hai. But yes, I also come into the same category, jahan pe मैं भी पता नहीं क्यों लास्ट मिनट पे सोचता हूँ. मुझे भी बहुत बोला जाता है कि भाई ख़त्म कर ले. बट मतलब वही है कि आई हार्डली ट्राई टू चेंज. पता नहीं क्यों. आई यू ऑल्सो वन ऑफ देम जो ये सिचुएशन से है. लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. ये तो ये कह सकते हैं. देखो, सिंपल शब्दों में जो ज्ञान दूंगा वो तो खैर मैं देता ही हूँ हमेशा, बट फॉलो मैं भी खुद नहीं करता. एक तो सबसे पहले वही लगता है कि यार, यू नो, पूरे वीक के लिए मैं पहले ही प्रिपरेशन हो जाऊँ, प्रिपेयर्ड हो जाऊँ, और यू नो, इट जस्ट गो थ्रू ऑटोमेटिकली. अभी वैसे भी AI भी आ चुका है जो आपकी हेल्प कर सकता है इन अ वे, अगर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट वाइज अगर काम है आपका तो. बट यस, जिस तरह की इन्होंने बात ही की है कि घूमने फिरने का, वो तो यार अब क्या बोलें. आई मीन, इन अ वे, लेट्स से अगर इन्होंने बोला कि वो 20 मिनट पहले ही रेडी होने लगा, दैट मीन्स अगर वो ड्रेसेस और ये सब रेडी कर रहा है तो दैट गोना बी डिफिकल्ट यार. मतलब आपको वही है, थोड़े दिनों पहले ही कर देना चाहिए. बट आई फील, मुझे लगता है कि यार ठीक है यार, दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट. कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. सो आई एम ऑल्सो इन टू द सेम कैटेगरी. मेरे से भी नहीं हो पाता है कि मैं पहले ही प्रिपेयर्ड रहूँ इन चीज़ों को लेके. बट आप मुझे बताइए व्हाट यू गाइस थिंक. 5599 पे आप मुझे मैसेज भेजिए और बताइए कि आर यू द वन हु गेट प्रिपेयर्ड योर सेल्फ ऑन टाइम बिफोर टाइम, एंड और या फिर आर यू द वन जो ना चाहके भी एंड में ही प्रिपेयर्ड होते हैं.
8: लंच के मंच पे Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. और बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जो आप सभी काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे टू गिव द वोट एंड टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव टूवर्ड्स द चेंज ऑफ योर कम्युनिटी. राइट, इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शन के लिए काफ़ी वोटिंग्स और ये सारी चीज़ें जो हैं जोरों शोरों से चल रही है. यहाँ पे सवाल भी काफ़ी लोगों के मिक्स होते हैं, दैट सम पीपल माइट बी हैप्पी, सम पीपल माइट नॉट बी हैप्पी, सम पीपल विल बी मिक्स. लाइक हाँ, ये सही किया है तुमने, लेकिन तुमने ये नहीं किया, तुमने अगर ये वादा किया था तो ये क्यों नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर आपके इसी तरह से कुछ सवाल जवाब है तो आप लिख के हमें 5599 पे भेज दीजिए. बिकॉज कल के दिन 5 बजे, थर्सडे 5 बजे, ACT एक्ट पार्टी लीडर डेविड सेमर जो कि यहां आने वाले हैं लाइव टॉक के लिए आ रहे हैं वो, जहां पे पॉलिसीज, प्रायोरिटीज और न्यूजीलैंड के लिए विजन वो क्या रहने वाला है. डेविड सेमर जी से अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचाइए 5599 पे. फिर सैंडी एंड रुजबे विल बी आस्किंग देम एंड देन लेट्स सी क्या जवाब आता है. बट यस, दिस इज योर होमवर्क. आप जल्दी से सोच के रखिए क्या जवाब, क्या सवाल पूछना चाहिए, क्या लगता है कि आपको कम्युनिटी से रिलेटेड या फिर स्टेट से रिलेटेड या फिर कंट्री से रिलेटेड या फिर और भी कोई सवाल हो जो आपको लगता है रिलेटेबल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं. याद रखिए डेविड सेमर कल आ रहे हैं, थर्सडे 5 बजे आपको वो रेडियो पे सुनेंगे. बट यस, बिफोर दैट 5599 नंबर जहां पे आप सवाल भेजिए.

0: स्टेटस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
3: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
4: Get into New Zealand's greatest range of garden sheds online at Trade Tested. From classic steel sheds to fancy designer sheds to amazing tiny houses, Trade Tested is the best place to sort your shed out. Make your backyard great today.
5: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
6: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है, अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
7: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ
8: और मैं नहीं करता।
6: दायरा, रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर।
8: ओपन शोकेस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
9: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
6: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग टीबीसी।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
10: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
11: इसके पीछे
0: लंच के मंच पे।
12: क्या नमस्ते, वेलकम बैक। वेल यस, अब बात करेंगे हम कुछ ऐसी बातों की जहां पे बहुत से लोग ऑफ कोर्स कहते हैं। अगर मैं ये कहूं आपको कि किंग ऑफ क्रिकेट या फिर गॉड ऑफ क्रिकेट, सो यू ऑल नो हम किसकी बात करते हैं। देयर इज ओनली वन नेम ऑफ कोर्स एंड ही इज सचिन तेंदुलकर। वैसे ही किंग ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो अगेन यू नो हु इट इज बट जैसे कि अंबानी हो गए या फिर मित्तल हो गए, ये सारे राइट और अगर मैं कहूँ किंग ऑफ बॉलीवुड तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, वो है शाहरुख खान। बट दैट डजंट मीन कि अगर आपके आगे टैग लग गया किंग, दैट मीन्स कि किसी ने आपको उपाधि दी है कि भाई आप अब बेस्ट हो। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ लोगों का प्यार होता है जो वो उनको मानते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो सचमुच में है, ऐसा कुछ नहीं होता है राइट। फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में कहा गया था कि आपका नाम बहुत हो गया, अक्षय खन्ना जो है उनसे पूछा गया था और काफ़ी पते की उन्होंने बात की थी, क्योंकि काफ़ी लोग थोड़ा इसको अलग हटके के भी लेते हैं कि आपके लिए सक्सेस, जैसे कि हमने एक पॉडकास्ट भी हम रिकॉर्ड की उस पर भी हम बात करेंगे सक्सेस का मतलब क्या लगता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि सक्सेस मतलब अगर किसी फील्ड में जब तक आप टॉप पे नहीं हो तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। यही सवाल उनसे पूछा था कि आपने शोहरत बहुत पा ली है, आपने ये सवाल, लेकिन आप में टैग नहीं लगा है कि भाई बेस्ट एक्टर या फिर ऐसा, तो कैसा फील होता है। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से अच्छे से उन्होंने जवाब दिया है कि आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा बिजनेस अंबानी जैसा नहीं है या फिर मेरा बिजनेस मित्तल सर जैसा नहीं है या फिर टॉप पे नहीं आता है, डज दैट मीन कि मैं बिजनेसमैन अच्छा नहीं हूँ या फिर सक्सेसफुल नहीं हूँ? नो राइट। सो सेम इन एक्टिंग एज वेल, टॉप में एक ही बंदा हो सकता है, टॉप में 10 लोग नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा सक्सेसफुल हुआ है। सो यस, वही सवाल बेसिकली रिलेटेड टॉपिक मैं लेके आया हूँ अभी, जिसमें शाहरुख खान जी से बात की थी, उनसे पूछा गया था कि आस्क ए एसआरके सेशन ये हुआ था। तो यस, शाहरुख खान ने अपने फैंस के साथ आस्क SRK सेशन, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल हैबिट्स, नर्वसनेस और करंट रीडिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग आंसर दिए। ये सेशन उनकी अपकमिंग फिल्म किंग के रिलीज की वजह से हुई, यानी कि किंग जो है सिर्फ 100 डेज ही बचे हुए हैं और उन्होंने ये चीज़ ऑर्गेनाइज की थी। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि रियल लाइफ में SRK सबसे किंग लाइक क्या करते हैं। शाहरुख खान ने बताया कि उनकी मॉर्निंग की जो बिगनिंग होती है बेड में 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी से होती है। उन्होंने फनी वे में कहा कि जब तक वो कॉफ़ी फिनिश नहीं करते किसी को उनसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो कॉफ़ी की वजह से वर्क पर लेट हो जाते हैं तो सेट्स पर उन्हें डांट भी पड़ती है। यानी कि ये उन्होंने ऐसा बताया, आज के तारीख में जो इतने बड़े लेजेंड बन चुके हैं स्टिल उन्हें डांट पड़ती है। एक फैन ने पूछा कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी उन्हें क्या नर्वस वाली चीज़ है जो उसे हमेशा सताती है, या फिर तो SRK ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दिया है, बहुत ही आसान तरीके से आंसर दिया है, गेटिंग द पंच लाइन राइट। मतलब डायलॉग या जोक की जो पंच लाइन होती है परफेक्टली डिलीवर करना भी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो ऑब्वियसली होता ही है और उस वजह से वो नर्वस भी होते हैं। फैंस ने ये भी पूछा कि वो करंटली क्या रीड कर रहे हैं। शाहरुख ने बताया कि द हीरो ऑफ एजेस पढ़ रहे हैं, जो ब्रैंडन सैंडरसन की मिथ्स बॉर्न ट्रायलॉजी की 3rd बुक है। एक और फनी क्वेश्चन में उनसे पूछा गया कि अगर वो किसी यूजलेस स्किल्स में वर्ल्ड क्लास हो सकते हैं तो वो क्या होगी। SRK ने शॉर्ट में इसको अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया है, फिजिट्स। बट यस, ओवरऑल ये जो सेशन था आस्क SRK बहुत ही कमाल का ह्यूमर और कैंडिड रहा है। As you all know that Shahrukh Khan is very smart and very, humor भी उनका बहुत ही बढ़िया है। So yes, but yes, just to let you know, film जो है वो 24 दिसंबर की डेट फाइनलाइज हुई है, King, जो रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। देखते हैं क्या होता है, and can't wait to see the trailer.
0: दिल से दिल तक, unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Just chill. Lunchbox with Ketan.
1: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: वेलकम बैक. वेल, फटाफट से मैं आपको डायलॉग फिर से सुना देता हूँ बिकॉज किसी का रिस्पांस अच्छा सा नहीं आया. सो मैं फिर से ये डायलॉग चलाता हूँ एंड आप मुझे बताइएगा ये कौन सी फिल्म का और किस एक्टर ने इसे डिलीवर किया है.
3: हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा.

0: सुकून जाएगी।
1: क्या हाल नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, लेकिन अगर आपने मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे यस, 3 बजे के बाद सैंडी जुड़ जाएगी फॉर द कॉफी ब्रेक और उनके बाद उनका साथ देंगे ड्राइव शो में रुजबे। वैसे ये आर जो है काफी स्पेशल है एंड आई रियली वॉन्ट टू पुट दैट न्यूज टू यू एज वेल। द रीजन इज कि जो AI है, AI is actually going to different level. Like we feel we are enjoying right now, but uski jo other side ki story hai, you may have no idea. Iske bare mein charcha hogi aaj TikTok ke segment pe bhi. Yes, bas aap bane rahiye. This is going to be an amazing. Darane ke liye nahi, but it's just that we thought that it is better to let you guys know ki you know, and the thing is that अभी ऑप्शन ये हो चुका है दैट यू कैन नॉट इवन अवॉइड दैट, ये हो चुका है। सो या लेट्स सी, आप बस बने रहिए, सुनते रहिए। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गाने, रात बाकी शायद वही है, मोनाली ठाकुर पीयूष मेहरोलिया की आवाज में ये आप गाना सुनिए। लेकिन इससे एक डायलॉग मैंने पूछा था कि कौन सी फिल्म का है, तो सही जवाब मिल गया है, राजकुमार जी ने वो डायलॉग किया है। धवल मूवी का नाम है, जिसमें बहुत ही बढ़िया किरदार थे, एक से बढ़कर एक सितारे थे। दिलीप कुमार भी उनमें उसमें काफ़ी अच्छा रोल निभाया उन्होंने, तो काफ़ी दोस्त होते अच्छे। ये वही मूवी तो नहीं जिसमें गाना भी है इल्लू क्या है ये इल्लू नहीं कुछ है, इल्लू का बूटा बेरी, ये क्या क्या क्या था, मैं 3-4 गाने एक साथ डाल दिए मैंने। इमली का बूटा बेरी का पे ये भी शायद उसी मूवी का गाना है, राइट। बट यस, आप बस सुनते रहिए, एंजॉय करिए गाना। मैं लेके आता हूँ लेटेस्ट खबर थोड़ी देर में।
2: बचाओ क्या

0: Lunchbox with Ketan.
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: अभी की लेटेस्ट खबर पे बात कर लेते हैं। एक खबर आई है रिगार्डिंग द ड्रग्स, वेलिंगटन से है, और जहां एक वुमेन ने पुलिस को कॉल किया बिकॉज एक अनवांटेड पर्सन उनके घर से जाने को रेडी नहीं था। लेकिन जब वुमेन पुलिस से फोन पर बात कर रही थी, पुलिस ने एलिजली उनसे पूछा कि अपने पार्टनर्स को ड्रग्स हाइड करने के लिए कहते हुए सुना, ये बात हुई है। पुलिस ऑफिसर प्रॉपर्टी पर पहुंच गए और पहले अनवांटेड गेस्ट यानी कि ट्रेसपासर को डील किया। उसके बाद पुलिस ने सर्च वारंट लिया और प्रॉपर्टी की सर्च की। सर्च के दौरान पुलिस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स मिले, इंक्लूडिंग एसएससी, मेथ और कोकेन। पुलिस के अकॉर्डिंग ड्रग्स की क्वांटिटी इतनी थी कि उन पर सप्लाई रिलेटेड चार्जेस लग सकते हैं। इन केसेस में 29 ईयर्स ओल्ड वुमेन और 27 ईयर ओल्ड मैन को कस्टडी में रखा गया है। दोनों को वेलिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्रग रिलेटेड चार्जेस फेस करने के लिए अपियर होना पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर डीन सिल्वेस्टर ने कहा कि ऑफिसर्स की अलर्टनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ड्रग्स और एडिक्शन से होने वाले हार्म को सीरियसली लेती है। सो यस, काफ़ी मतलब उन्होंने सोचा नहीं होगा ऐसा कुछ होगा, लेकिन ग्लैड उन्होंने कॉल किया, बताया, बट देन या द सिचुएशन हैज़ कम। तो एक तरह से दो चीज़ें कर दी, एक तो उन्होंने लड़की का भला तो किया ही, लेकिन लड़की भी वहाँ पे फंस गई। सो या इस बारे में कुछ और खबर आती है तो हम आपके तरफ ज़रूर पहुँचाएँगे।
3: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
5: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
6: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
5: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
6: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
5: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
6: 100% authentic and pure as mother's love.
7: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
8: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
9: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
8: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
10: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
9: ये आखिरी है।
8: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC.
11: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.

0: बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: हाय हाय हाय हाय।
0: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
4: वेल यस, पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं। कुछ पॉडकास्ट हमने रिलीज किए हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। सबसे पहला तो यस, सक्सेस को आप किस तरीके से तोला करते हैं, यानी कि व्हाट डू यू थिंक द सक्सेस कुड बी। काफ़ी आई ओपनर है, काफ़ी अच्छी बातें बोली हैं एंड हर एक का पर्सपेक्टिव जो है वो अलग ही रहता है। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग पॉडकास्ट जहाँ से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप सीखेंगे। आप हमें BF लिखिए और 5599 पे आप भेज दीजिए ताकि आपको आप तक लिंक पहुँच जाए इस पॉडकास्ट की ऑडियो की। डिस्कशन हुआ है बेसिकली सोसाइटी किस तरह से सक्सेस को मेजर करती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। एंड उसके बाद कीवी सेवर, ज्वेलरी बिजनेस या फिर आपकी जो भी सेविंग्स हैं उनका क्या होगा जस्ट इन केस अगर आपके साथ भगवान न करे कभी कुछ हो ऐसा, लेकिन जस्ट इन केस अगर होता है प्रैक्टिकली अगर सोचें तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये तो ऑटोमेटिकली मेरे पार्टनर के पास जाएगी या फिर जो भी है, बट इट डजेंट वर्क ऑल द टाइम। सो ये पॉडकास्ट ज़रूर आपको सुनना चाहिए बिकॉज तानिया पिंटो जो कि सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट ये है और वो आई थी यहाँ पे और उन्होंने बात की है सैंडियन रुजबे से और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सवाल भी किए, बहुत अच्छे अच्छे जो आम जनता जनरली पूछती है। सो यस, ये जवाब अगर आप चाहते हैं सुनना तो आप हमें सिंपल शब्दों में ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक आप तक पहुँच जाए। अनफिल्टर्ड विद सैंडियन रुजबे, ये भी आप सर्च कर सकते हैं रोवा स्पॉटिफाई पे।

Well, yes, फिजी कीर्तन संग्रह में आपका जो सहयोग मिला है उससे हम इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं दैट वी एक्चुअली डिसाइडेड टू डू समथिंग लाइक दिस. और उसके लिए एंट्रीज जो है वो भी बहुत बढ़िया ही है. हम कीर्तन संग्रह जो कि 25 सितंबर को वैदिक सेंटर में होने वाली है पेशकश, और पापटोने में होने वाला है. रिकॉर्डिंग जो है कलाकार जो भी फाइनलाइज हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग होगी, और उसके बाद यस रोवा पर वो फीचर होंगे हम फिजी कीर्तन संग्रह पर. जी हाँ, आप उन्हें भी सुन सकेंगे. बट यस, आप हमें ज्वाइन करिए, हमारी टीम को, हम टीम को ज्वाइन करिए इस दिन एंड सी हाउ एवरीथिंग वर्क्स एंड हाउ एवरीथिंग हैपन. एंड एंट्री जो है कम्प्लीटली फ्री है. रिफ्रेशमेंट एंड कावा आपको वहीं पे मिलेगा फॉर सेल. एंड यस, यू विल ऑल्सो हैव अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज टू विन प्राइजेस. जी हाँ, प्राइज नहीं, प्राइजेस.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, देखते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं आज के दिन। आज तारीख है 16 सितंबर। वेल, 16 सितंबर के हिसाब से काफ़ी इवेंट्स हैं, जैसे कि फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, 5 तारीख से शुरू हुआ था और 27 सितंबर तक चल रहा है, चलने वाला है, पोलैंड में हो रहा है, आप उसे देख सकते हैं। उसके अलावा और भी इवेंट्स हैं, जैसे कि डेविस कप क्वालिफायर सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। एंड देन फ्यू मोर स्पोर्ट्स वो भी चल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्रिकेट में क्या आप देख सकते हैं। अभी इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मैच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने मैसिव स्कोर खड़ा किया था उनके अगेंस्ट एंड हैव स्कोर आई थिंक 254 रन। एंड जवाब में श्रीलंका ने फाइट अच्छी दी, बट ऑब्वियसली एट द एंड जीते इंग्लैंड ही। इतनी खास नहीं भाई, बहुत ही बुरी हालत हुई। मेरे को लगा शायद 180 रन समथिंग बनाए होंगे, लेकिन नहीं, 135 रन ही बना पाई श्रीलंका इन 19 ओवर और सारे विकेट उनके गिर गए। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में भी मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने 163 रन बनाए और ये काफ़ी क्लोज मैच रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान। ओवर पूरे हो गए, अदरवाइज एक ही चौका मारने का और था दरकार, जो अगर मार देती तो शायद अफगानिस्तान ये मैच जीत जाती। बट ये सीरीज हो चुकी है इंडिया के नाम 2-0 से। तो अगर इफ़ यू वांट टू सी एनी मैचेस, देखते हैं आज क्या चला। अभी एक्चुअली मलेशिया वर्सेस यूएई के बीच में मैच हो रहा है T20 इंटरनेशनल के क्वालिफायर राउंड का, केएल में हो रहा है ये। 20 पर 1 विकेट खो चुकी है मलेशिया 8 ओवर में, यानी कि 10 की रन रेट से वो रन बना रहे हैं, विच इज़ गुड। उसके अलावा और भी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल कप भी चल रहा है, यूथ ODI भी चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज मैच है 9:30 रात के। एंड देन अगर वुमेन क्रिकेट की अगर बात करें तो उसमें 17 सितंबर यानी कि कल के दिन मैच होंगे, आज तो कुछ नहीं उनके पास।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हाँ।
2: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए,
2: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा।
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
2: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में 3.

0: 10,000 km vehicle warranty. More ways to save at Winger Motors East Auckland, North Shore and Pukekohe or winger.co.nz. On now till 30th September. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m. handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
3: तो क्या करें?
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
7: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
8: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
9: Big saves overstocked. Yes, massively overstocked with whiteware, and it all has to go. Need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? We've got huge whiteware deals like get an 8kg washing machine for just $4.90 or a 332-litre fridge, only $9.99. Get New Zealand's best whiteware today. Stock is limited, only at Big Save.
10: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
11: हाँ. अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
13: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
14: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
15: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
14: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Lunchbox with Ketan.
16: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
17: इसके पीछे
14: हम Tech Talk.
18: Welcome back. You are listening to Lunchbox. और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको AI से related कुछ बातें बतानी है और वो बात ये है कि AI humanity के लिए threat बन चुका है. ऐसा क्यों? क्यों लोग कह रहे हैं कि ये सब हुआ है? वेल मेन बात तो यही है कि ऑफ कोर्स जो न्यूज़ है एआई यानी कि उसका जो पोटेंशियल रिस्क है उसके बारे में कुछ बातें आई हैं. कुछ टाइम पहले आपको पता होगा दैट देयर आर फ्यू कॉम्पिटिटर्स जो आपस में ही फाइट कर रहे थे. हर बार वो अपने आप को बेटर बताने के लिए वो अपने जो एआई फील्ड है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर रहे थे. बट नाउ वो आ गए हैं सब एक साथ मिलके और कह रहे हैं कि भाई थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा बिकॉज हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में इतना रिस्की हो जाएगा दैट इट माइट गोना अफेक्ट द ह्यूमैनिटी एज वेल. नॉट कि इतना वियर्ड नहीं है, आई मीन उतना वैसा नहीं है, बट ये फोटो वोटो ये चीज़ नहीं जो जिस पे वो काम कर रहे हैं, जिसे हमें फ्यूचर में मिलेगा, जो अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें फ्यूचर मिलेगी, अभी तक हमारे हाथ में आई नहीं है. वो सिर्फ ट्रायल बेस पे कर रहे हैं और उसी वजह से उन्होंने आपस में मिलके ये चीज़ इंटरव्यू दी है. सो यस, रिस्की तो है, थोड़ा इफेक्ट भी है एंड ऑफकोर्स थोड़ी टेंशन वाली बात तो है ही है. बट अगेन मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ा सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तो एटलीस्ट कल को कुछ भी हो तो वी नो हमारे सामने एकदम वैसी चीज़ नहीं आ जाए कि यार ये क्या है, ये क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा है. बट वंस यू अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स सो मे बी दे माइट बी अ सोल्यूशन. वी आर एंजॉइंग एज ऑफ नाउ जो भी आ रहा है, फोटो वीडियो जो भी आ रहा है, बट दिस AI गोना बी सो बिग ऑन अदर साइड एज वेल. सो आप बस बने रहिए और कुछ भी इसके बारे में कुछ अपडेट आता तो हम आपको बताते रहेंगे.
14: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: मेरी आवाज गूंजेगी।
1: Throwback brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-4624 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Well, thank you so much. बहुत ही बढ़िया रहा आज का दिन, बातें और कहानियां जो आपके मैसेजेस आए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बट आप बने रहिए कॉफी ब्रेक के लिए, सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली एंड देन रुज़बे उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो। आई विल टेक अ लीव एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।

ठंडक आता माची सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा रंग तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heart to beat.

0: 3:06 हो चुके हैं। कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वेल, न्यूजीलैंड के दो प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की फोटोज अपने फेसबुक पेज पे नहीं पोस्ट करने वाले हैं। सो यू नो, स्कूल्स के भी फेसबुक पेज होते हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये फेसबुक पेज पे पोस्ट नहीं करेंगे। कंसर्न आया है कि स्कूल्स जो है, ऐसा नहीं है कि दे हैव एक्सपीरियंस वाइड स्प्रेड अब्यूज ऑफ देयर इमेजेस, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट कि व्हाट कैन हैपन टू दोज इमेजेस वंस दे आर पब्लिकली ऑनलाइन, एंड स्पेशली अभी एआई के टाइम पे। सो एआई का टाइम एक ऐसा टाइम आ चुका है कि यू नो थ्रेट जो है एआई को लेके ये भी बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन्स बिटवीन डिफरेंट कंपनीज ऑफ एआई। ऐसा बोला भी जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज के सीईओज ये भी अभी बोल रहे हैं कि यू नो थोड़ा स्लो डाउन कर देना चाहिए इसके अपग्रेड्स को, बिकॉज ये आगे जाके थ्रेट भी हो सकता है अगर स्लो डाउन नहीं हुआ तो। सो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डर है कि एआई की वजह से इट कैन बिकम वेरी ईजी टू मैनिपुलेट द फोटोज एंड वीडियोज। पहले से भी होती है ये, लेकिन अभी रियल क्या है फेक क्या है थोड़ा टाइम लगता है समझने में। जब आप एआई वीडियो देखते हो, यू नो कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो, सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिगर आउट करने में कि इज़ इट रियल या फिर एआई के ज़रिए बनाई गई है। तो इसलिए ये जो स्कूल्स हैं इनको इन चीज़ों के बारे में कंसर्न है कि चिल्ड्रन फेसेस बीइंग सुपर इम्पोज्ड ऑन टू अदर इमेजेस या वीडियोस, एआई कैन क्रिएट अ सिचुएशंस दैट नेवर हैपेंड एक्चुअली में, पीपल बीइंग मेड टू अपीयर इन प्लेसेस दे हैव नेवर बीन। मतलब कि मैं ऐसी एप्स भी है कि मैं अपनी सिंपल एक फ़ोटो अगर अपलोड करती हूँ कि ऐसा मैं प्रॉम्प्ट देती हूँ कि ऐसा बता दो कि मैं इस समय पर ग्रीस में बैठी हुई और वहाँ पर ऐसा घूम रही हूँ, मैं मेरी वीडियो बन जाएगी जैसे मैं रियली मैं ग्रीस में घूम के आई हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है, नॉट जस्ट द फोटोज, आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडियोज। सो स्क्रीन शॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स बींग टेकन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आजकल, एंड इनको ये भी कंसर्न है कि स्कूल्स हैविंग वर्चुअली नो कंट्रोल वेयर इमेजेस गो वंस दे आर पब्लिक, एंड चिल्ड्रन कैरिंग अ डिजिटल फुटप्रिंट दे नेवर पर्सनली कंसेंटेड टू, बिकॉज वो बच्चे हैं, वो थोड़ा डिसीजन ले रहे हैं। तो आपका क्या टेक है इसके बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि ये न्यूजीलैंड के दो स्कूल्स ने डिसाइड किया है, डू यू थिंक कि इन्होंने सही डिसाइड किया है। मेरे को लगता है कि ऑप्शनल ये भी हो सकता है ना कि न्यूज़लेटर में कई बार होता है कि हर किसी को अपने बच्चों की फ़ोटो एक्टिविटीज़ में देखनी होती है, मे बी देयर कैन बी अ न्यूज़लेटर जो सिर्फ पेरेंट्स को अवेलेबल है जहाँ पे दे कैन पोस्ट द न्यूज़लेटर्स टू द पेरेंट्स एंड पेरेंट्स कैन एक्चुअली गो एंड चेक द एक्टिविटीज़, एंड देन पेरेंट्स के ऊपर रहता है अपने अकाउंट्स में उनको अपने बच्चों की फ़ोटो डालनी है कि नहीं डालनी है। बट स्कूल्स जो है अभी हेजिटेंट हो रहे हैं to go public and post the pictures of the kids. What is your take on this? अगर ये आपके बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर अगर ये रूल आता है कि आपकी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि डू यू गिव कंसेंट कि पब्लिकली आपके बच्चों की सोशल्स पर फोटो पोस्ट होगी, वुड यू गिव कंसेंट? What is your take on this? कॉल करके या मैसेज करके बताइएगा। कॉल करने के लिए 0800004866 या फिर मैसेज कीजिए 5599 पर कि आपका क्या टेक है इसके बारे में। डू यू थिंक इट इज़ सेफ? एंड एक हवा है मे बी जिससे अभी लोग डर रहे हैं, नथिंग मच, कुछ होने नहीं वाला है ऐसा, एंड बट डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा थ्रेट है? सो देर नॉट बैनिंग दी स्कूल्स, देर नॉट बैनिंग द फोटोज ऑल टुगेदर, वो एक ऐप यूज़ करने वाले हैं। इनका एक हीरो स्कूल ऐप है जहाँ पे जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा टू पेरेंट्स एंड फैमिली फॉर स्टूडेंट फोटोज़ एंड वीडियोज़, वही जैसे मैं आपके साथ न्यूज़लेटर के बारे में बात कर रही थी। बट दे सेड कि फेसबुक को वो अभी भी यूज़ करेंगे बट मेनली फॉर थिंग्स लाइक इवेंट्स, रिमाइंडर्स, स्कूल इन्फॉर्मेशन रैदर देन चिल्ड्रंस इमेजेस, तो ये वो नहीं करने वाले अभी। सो दीज आर द टू स्कूल्स इन न्यूजीलैंड जिन्होंने ये डिसाइड किया है, एंड दिस इज़ एन टाकोरो स्कूल इन पामेस्टर नॉर्थ एंड पपोमा प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर भी एक्चुअली में ये डिसाइड किया गया है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? आप भी यहाँ पे ज़रूर मैसेज करके या फिर कॉल करके भी शेयर कर सकते हैं। हाय, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून सैंडी।
0: जी जय, क्या टेक है आपका इसके बारे में?
1: वो फेसबुक बंद करना चाहिए ना, मेरे फेसबुक पे कंट्री का नाम नहीं दूंगा, अच्छा गर्ल्स अपने खाट में फोटो छोड़ते हैं और वो उसका पेरेंट्स के पता नहीं पता है कि नहीं.
0: Yeah, the young kids, जो आपके कहने का मतलब है कि teenagers.
1: हाँ, teenager. तो ये out control हो गया already ना. अब इसके control करना बहुत मुश्किल पड़ेगा.
0: Yeah, it's a dangerous place for the kids की समझना कि क्या पोस्ट कर सकते हैं उनके लिए भी एक्चुअली में. यू आर राइट, तभी तो वो बैनिंग वाला भी यहाँ पे प्रपोजल चला है कि अंडर 16 के लिए बैन ही कर देना चाहिए.
1: बैन करने के दो तीन तरीका होता है, अगर अंडर सुपरविजन क्या करता क्या छोड़ता क्या लिखता है वो एक चीज होना चाहिए ना.
0: या एंड दूसरा टेक ये भी है कि आजकल का टाइम जहाँ पे इंटरनेट इज लाइक इन एवरी कॉर्नर, कहीं पे भी जाओ वाईफाई आपको वैसे ही मिल जाता है, एंड हर एक रेस्टोरेंट कैफे में आपको वाईफाई मिल जाता है. एआई का टाइम है, कितना कंट्रोल कर सकते हैं किसी के ऊपर.
1: दूसरी बात, लैपटॉप स्कूल में लीगल है. लैपटॉप पे चले जाएंगे फाउन नहीं दिया तो.
0: या बट मेरे को लगता है कि लैपटॉप स्टिल कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें थोड़े फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं ना कि एक्सेस आपको कौन सा देना है, पेरेंटल गाइडेंस वहां पे कर सकते हैं. बट या जिसको निकालना है तरीका वो कहीं से भी निकालेंगे.
1: हाँ हाँ, वो तो लैपटॉप तो निकालना ही
0: है. 100% या एज अ पेरेंट एंड स्कूल मेरे को लगता है कि दे कैन जस्ट पुट द कंट्रोल्स आउट देयर कि हम ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी जिसको रूल तोड़ना है उसको तोड़ना ही है.
1: स्कूल नहीं कंट्रोल कर पाएगा. जैसे अभी एक बीच में दो एक साल ऐसे होता होगा कि टीनेज सुसाइड बहुत भारी था यहाँ न्यूजीलैंड में. कुछ लोग आवाज उठाए कि सुसाइड के कंट्रोल करेगा, कि किस तरह से कंट्रोल करेगा तू, वो बताता थोड़ो कि मैं क्या करने वाला हूँ. जो समझ में आ जाता वो कर देता है.
0: नहीं, सही कह रहे हैं.
1: अगर कोई बता देगा कि ये करने वाला है तो उसका रोक सकते हो ना.
0: वो अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है, देयर इज नो कन्वर्सेशन, देयर इज नो कम्युनिकेशन.
1: तो ये जो फेसबुक पे छोड़ते हैं जो फाउंड पे, उसका कम्युनिकेशन नहीं है. वो जो छोड़ता है छोड़ देता है ना. खुद जो उसका माता पिता शायद उनको भी नहीं पता होता है कि बच्चे क्या करते हैं.
0: यही सही है.
1: और
0: थैंक यू जय. या क्या बोल रहे हैं,
1: बच्चे बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, पब्लिक सिटी में नहीं जाते, कहीं पूजा में ले जाना चाहते तो वो नहीं जाएगा ना.
0: वो अपना खुलते मिलते नहीं है साथ में
1: ना. नहीं
0: सेम पेज या फिर आपने कोई और तरीका अपनाया है. यू नो, यही फायदा हो जाता है कि यहाँ पे जब कोई अपना कोई तरीका अपना रहा है वो शेयर करता है, इट्स काइंड ऑफ गिविंग टिप्स टू अदर पेरेंट्स एज वेल. ठीक है, थैंक यू जय, थैंक यू फॉर कॉलिंग. सो आप भी अपना टेक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कॉल करके या फिर मैसेज करके भी. 5599 इज अ नंबर.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
8: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox in a dash. Now that's a good call. Dash!
9: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
10: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
11: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
12: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। फिर ये घर कैसे?
13: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है।
12: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया, मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया। नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
14: First home buyer बनना है या investment property लेनी है, तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru।

0: 3:26 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुकी है कॉफी ब्रेक. फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. अब आते हैं आज के सवाल पे. व्हाट एम आई क्वेश्चन. वेल आपको गेस करना है ये क्या है. इट सेज आई ग्रो स्ट्रोंगर एंड योर विजन गेट्स वीकर. जैसे ही ये स्ट्रांग होता है आपकी आई साइट वीक होती जाती है. द मोर ऑफ मी यू हैव द लेस यू सी. ये क्या है. ड्राइव कीवर्ड के साथ आपको बताना है 5599 पर. सो सवाल एक बार फिर सुनेगा कि जैसे ये स्ट्रांग होता जाता है वैसे ही आपकी विजन वीक होती जाती है. ये स्ट्रांग होगा तो आपकी विजन वीक होगी. ये ज़्यादा बढ़ जाएगा आप उतना ही कम देख पाएंगे. ये क्या है आपको बताना है 5599 पर. एंड हर कोई इसे देखता है. एवरी वन इन देयर लाइफ आपने इसे देखा है. मतलब आई विल से एवरी डे. एवरी डे आपका इससे वास्ता पड़ता है. ये क्या है. एवरी डे ऐसा नहीं है कि ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड यू गेट मोर वीकर. ऐसा नहीं है. फ्यू डेज है कि जहाँ पे जब ये बहुत स्ट्रांग होता है तो तब तो आई साइट आपकी वहाँ पे वीक हो जाएगी. सो या ये क्या है 5599 पर आपको मैसेज करके देना है. सिटी में अगर है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप आउटस्कर्ट्स जाते हैं कंट्री साइड जाते हैं वहाँ पे इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है. वहाँ पे अगर ये स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा फिर तो ऑब्वियसली आपकी विजन बहुत ही वीक हो जाएगी. सो व्हाट इज़ इट 5599 पर आपको लिख के भेजना है. एंड एवरी डे विदाउट एनी कह सकते हैं कि ब्रेक एवरी डे आप इसको देखते हैं. ऐसा कोई इंसान ही नहीं है इस दुनिया में जिसने इसको नहीं देखा है, जिसका वास्ता इससे नहीं पड़ा है. ऐसा कुछ है नहीं. तो बताइए क्या है. सो फार जो मेरे पास आंसर्स आए हैं ना इसमें से कोई भी सही जवाब नहीं आया है. तो आपको बता देती हूँ आंसर्स मेरे पास क्या क्या आए हैं. ग्लासेस मेरे पास आंसर आया है. रोशनी सपना एंड मेघा ग्लासेस इज नॉट द आंसर. शुगर मेरे पास आंसर आया है. सन नीलेश आपने भेजा है. लाइट आया है मेरे पास. सन काफ़ी लोगों ने भेजा है. नो सन इज नॉट द आंसर. ध्रुवी आपका जवाब एकदम सही है. सो क्या है. सनलाइट इज नॉट द आंसर. ये आपको बता दूँ. सो रिमेंबर जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा उतनी आपकी विजन वीक होती जाएगी. द मोर ऑफ मी यू हैव द लेस यू सी. इस बात को पकड़ के चलो. और एवरी डे विदाउट एनी ब्रेक इट्स देयर इन योर लाइफ. एवरी डे यू कांट हेल्प इट. आप इसको कहीं नहीं भेज सकते हो. तो क्या है ये 5599 इज अ नंबर. बाय द वे आपको बता दूं कि लाइट सनलाइट तो खैर बारिश के समय पर गायब भी हो जाती है. धूप तो गायब भी हो जाती है. लेकिन ये बारिश हो आंधी हो तूफान हो ये फिर भी है. ये हमेशा ही मेरे को लगता है रहेगा. सो क्या है. कईयों की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा भी होता है ये. 5599 पर आप लिख के भेजिए.
1: थोड़ा तो हॉल बना दे.
2: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

3:34 एट द मोमेंट हो चुके। काफी लोगों ने यहाँ पे सही जवाब एक्चुअली में अभी भेज दिया है, मेरे हिंट के बाद एक्चुअली में काफी लोगों ने सही जवाब भेजा है। एंड ध्रुवी, आपका सबसे पहले सही जवाब आया था। और अभिषेक वेलिंगटन से सुन रहे हैं, विकेश है, प्राची आप यहाँ पे सुन रही हैं, एंड देन वी हैव नीलेश, आपने आंसर भेजा है। आसिफ, आपका आंसर भी आ चुका है। एंड मोनिका का आंसर आ चुका है। प्रभजोत का आंसर भी आया है। मितिका, पव, रजनी, सोनम, तस्लीम, बड़ा अच्छा नाम है यार। एंड कईयों ने अपना नाम यहाँ पे लिख के नहीं भेजा है। सो आसिफ ने भेजा है आई मसल्स एंड फोकसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। वाओ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। नीलेश ने लिखा है स्लीपिंग या नींद, शुगर लेवल्स, डायबिटीज़। लता, आपने लिख के भेजा है। एंड कार हेडलाइट्स, ये मेरे पास आंसर भी आया है, बट द राइट आंसर इज़ डार्कनेस, इज अंधेरा। सो जैसे ही अंधेरा स्ट्रांग होता है, वैसे ही आपकी विजन वीक होती जाती है, बिकॉज अंधेरा बढ़ेगा तो आपको कम दिखाई देना शुरू होता है, बिकॉज अंधेरे में क्या देखोगे आप, डार्कनेस ही तो देखेंगे। इस वे से ये सवाल था। बट यू नो वॉट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इस चीज़ के ऊपर, कि योर आइज कैन टेक अराउंड 20-30 मिनट्स टू फुली अडेप्ट टू डार्कनेस। तो जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत अंधेरा है, तो 20 मिनट आपको लगते हैं, आपकी 20 या 30 मिनट लगते हैं आपकी आँखों को एडजस्ट होने में। एंड धीरे धीरे देन यू इनिशियली आपको सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है, देन ग्रेजुअली जो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स है रूम की आपको धीरे धीरे दिखाई देनी शुरू होती है, बिकॉज आपकी आँखों को उतना टाइम लगता है अंधेरे में एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत करने के लिए। एंड या सो अंधेरा इज़ द राइट आंसर, आपने सही गेस किया है। आज 4 बजे के बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाली है। रुजबे तो खैर यहाँ पे हो गई, लेकिन साथ में हमारे सिस्टर रेडियो स्टेशन से हमें कोई ज्वाइन करने वाला है, टॉकिंग अबाउट माय एफएम, वहाँ से उनकी डे टाइम अनाउंसर हमें यहाँ पे शेयर एक्चुअली में यहाँ पे ज्वाइन करने वाली है टू टॉक मोर अबाउट माओरी लैंग्वेज वीक। तो एक मस्ट लिसन सेगमेंट रहने वाला है, ज़रूर सुनेगा, तो आप उससे काफ़ी बातें एक्चुअली में आपको पता चलेंगी, काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा कि राइट वे क्या है कुछ चीज़ों को प्रोनाउंस करने का, या फिर कहाँ पे आप जा सकते हैं। देर इज़ वन ऐप ऑल्सो जो कि इस समय पर काफ़ी प्रमोट हो रही है न्यूजीलैंड में, इसके बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पे यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द ऐप एंड वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आप रिपीटेड मोड पे सुन सकते हैं। सो यू नो रेपिटेशन में जब हम चीज़ें सुनते हैं तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एक्चुअली में बात करने वाले हैं आज 4 बजे के बाद, तो स्टे ट्यून्ड।

0: बाई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: 346 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। वैसे थ्रू बैक गाना भी आप यहाँ पे सुनने वाले हैं, लेकिन रिमेम्बर कल यहाँ पे हमारे स्टूडियोज में लाइव हो जाएंगे एक्ट पार्टी के लीडर डेविड सेवर। सो इलेक्शन स्पेशल में हम डिफरेंट पार्टी के लीडर्स को यहाँ पे लेके आने की या फिर उनके स्पोक्स पर्सन को यहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम डायरेक्टली उनके पॉलिसीज़ के बारे में हम उन्हें क्वेश्चन कर सकें, उनसे सवाल पूछ सके। सो आपके जहन में फ़िलहाल कोई डेविड सेवर के लिए अगर सवाल है तो आप लिख के भेज सकते हैं ड्राइव कीवर्ड के साथ और 5599। कल हमारी 5 बजे के बाद इनसे यहाँ पे लाइव बातें होने वाली है, एंड अभी से सवाल आपको भेजने होंगे 5599 पर, सो दैट वी हैव आवर क्वेश्चंस रेडी फॉर हिम। कोई भी आपके मन में इस इलेक्शन ईयर को लेके डेविड सेवर ने मे बी जो रिसेंटली पॉलिसीज़ निकाली है, काफ़ी बातें बोली है, कल भी इनके बारे में एक्चुअली में आर्टिकल आया था एक्ट पार्टी के बारे में कि वो फ्रीज़ कर देंगे जो मिनिमम पे वेज है 3 साल के लिए, उसको फ्रीज़ कर देना चाहिए, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी उस आर्टिकल में। सो मे बी उसके अराउंड आपका कोई सवाल होगा या कुछ और चीज़ों को लेके, इमिग्रेशन को लेके, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्शंस आप यहाँ पे पूछ सकते हैं 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ। एंड हम कोशिश करेंगे आपके जितने भी सवाल यहाँ पे आ रहे हैं मैक्सिमम सवाल उनके सामने रखने के लिए, बिकॉज यही मकसद है ये सेगमेंट करने का कि आपकी जो वॉइस है हम वहाँ तक पहुँचाएँ एंड जो आंसर है ये आपको डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे मिले। सो या कल 5 बजे के बाद यहाँ पे एक्ट पार्टी के लीडर डेविड सेवर इज़ द फर्स्ट गेस्ट जो कि यहाँ पे पहुँचने वाले हैं।

0: सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: हम एक्यूरेट ट्रैफिक,
3: द वेयरहाउस, लो ग्रोसरी प्राइसेस।
4: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10 on the northern.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Weather ka hal kafi kamal. Feels like 14 degrees, 14.4 actual temperature, and overnight temperature is going to be as low as 10 degrees. Light northerlies developing late afternoon. 6:13 pe hoga sunset.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: 4:03. Good afternoon. You are listening to The Drive Show with Sandy and Rusbe.
4: A very, very good afternoon to you. Yes, aaj 16 tarikh hai. And aaj agar aapka birthday, very happy birthday to you. Kia ora, Rusbe?
1: Kia ora. और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो मेरे को अभी सीखने हैं, लेकिन हमको और भी सिखाने हैं. हम होपफुली यहाँ पे बहुत जल्द किसी को लेकर आएंगे.
4: या शेय, सो वो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाली है, हमारे सिस्टर रेडियो स्टेशन से. वहाँ पे वो डे टाइम का शो बेसिकली वो वहाँ पे करती है. सो उससे और भी बातें होंगी, बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे देने वाली है वो. इनफैक्ट सम यूज़फुल इंफॉर्मेशन कि कुछ सीखने के लिए राइट प्लेस क्या है, कहाँ पे हम जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक्चुअली में आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे टुगेदर.
1: सैंडी, नाउ माय हायरे माय की हम नो ड्राइव शो नाउ माय हायरे माय की हम ड्राइव शो
4: हायरे हायरे तो गुड बाय हो गया ना.
1: हायरे नहीं रे, नाउ माय माय Hey re, Mikey.
4: Welcome to Drive Show.
1: Yeah, bro, that's right.
4: No, my hey re, Mikey, Drive Show. यानी कि Welcome to Drive Show. ये मतलब था इसके कहने का.
1: किते पिया कोई.
4: किते पिया कोई. या इसका मतलब है How are you?
1: किते पाए.
4: किते पाए means good.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया. आज तो पूरी माउरी सीख लेंगे हम लोग.
4: ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में अभी रुजबे या मुझे ट्रांसलेटर बनना पड़ेगा या फिर लाइव. बट इट्स गुड दो,
1: हमें सीखना चाहिए. लेकिन यार मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे इनफैक्ट अभी ऐसा लग रहा है कि आई एम 14 ईयर्स टू लेट टू लर्न माउरी. बट हमारे
4: इट्स नेवर टू लेट रुजबे.
1: या ऑब्वियसली, लाइक दैट्स व्हाई बेटर लेट देन नेवर. सीखना भी शुरू करना है. लेकिन हमारे तकलीफ़ें नहीं बोलना, हमारे प्रायोरिटीज ही इतने अलग अलग रहे हैं काफ़ी बार यहाँ पे सेटल होने के लिए, कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट होने के लिए हम,
4: और मे बी वो चीज़ें हमारी जहन में ही नहीं आई.
1: हाँ वही तो,
4: कि ये भी करना ज़रूरी है. कई बार होते हैं कि वो आते ही नहीं है, माइंड में नहीं वो चीज़ें आती है, अनटिल अनलेस यू आर वर्किंग एट सम प्लेस जहाँ पे इट्स अ प्रायोरिटी. That's then only you right. get to know about it.
1: That's right. So anyway, आपके साथ आज बहुत और भी बातें करने वाले हैं, और 5 बजे के बाद आज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ये
0: situationship.
1: एक सिचुएशन में आपको डालेंगे और उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्या करते हैं, ऐसा आपको हमको बताना है यहाँ पे. तो लेकर आएंगे आपके लिए आज
4: सिचुएशन लेके आएंगे. पहले आपके लिए एक टेस्ट लेके आएंगे.
1: अच्छा, टेस्ट हो रहा है क्या?
4: टेस्ट करना है ना आज हमें.
1: अच्छा ठीक है, चलो टेस्ट भी करेंगे.
4: तो वो टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर सिचुएशन लेके आएंगे.

0: माहौल बना दे.
1: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington, and Westgate. Up to 60% off on now.
2: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. और काफी समय बाद हमारे साथ यहाँ पे हमारे expert join in कर रहे हैं. And make some noise क्योंकि Guru Kandola is back. Guru Kandola, welcome to the show. कैसे हो आप?
3: मैं बढ़िया रुजबे, आप बताओ कैसे हूँ?
2: अरे बहुत ही बढ़िया, मतलब काफी समय हो गया आपसे बात नहीं हुई यार. ऐसे लग रहा था एनर्जी बहुत लो हो रही है हमारे शो की.
3: अरे आप दोनों ने एनर्जी पूरे ऑकलैंड का पूरे न्यूजीलैंड का हाई करके रखा हुआ है, तो आप कहाँ लो करने देते यार.
2: क्या बात है, चलो बढ़िया. आपने मेरी लाल कर दी, मैंने आपकी लाल कर दी. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन. ओके
3: बताओ
2: गुरु भाई, हमको यार एक सवाल आया यहाँ पे, एंड दिस इज अराउंड, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है. कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना या फंड्स उठाना, लाइक हाउ इजी कैन यू मेक इट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू.
3: कमर्शियल प्रॉपर्टी, यस, इट इज वेरी यू नो, ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादा टच नहीं लोग बात करते, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टीज एक पूरा एक नीश है. इट्स अ सेपरेट नीश फ्रॉम द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज. और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में देयर इज लॉट ऑफ एडवांटेजेस. देयर लाइक बेसिकली लोगों के पास प्रॉपर्टीज हैं और कई लोग खरीदना चाहते हैं, बिकॉज कई लोग बिजनेस रन कर रहे होते हैं, बोल रहे हैं कि जहाँ हम बिजनेस रन कर रहे हैं हमारा हर साल हमारा रेंटल बढ़ जाता है, यू नो, हर साल नहीं बढ़ता तो हर तीन साल में बढ़ जाता है, रिन्यूअल में बढ़ जाता है. एंड देन to stop that and to make the business healthy and wealthy, people want to actually buy those commercial properties. Aur ek bari jab aapko commercial property ka taste lag jata hai, to commercial properties mein basically you don't pay anything, like rates bhi aap nahi pay karte, water bills bhi aap pay nahi karte, everything is get paid by, aur usme koi maintenance hoti hai, wo bhi needs to be paid by tenants, so everything is get paid by tenants. So जो भी आप रेंट कलेक्ट करते हो वो सारा प्योरली आपका ही होता है, वो 100% रेंट आप कलेक्ट करते हो. नाउ रेंटल प्रॉपर्टीज का जो कैलकुलेशंस है टू गेट द मनी अक्रॉस टू बाय दोज प्रॉपर्टीज, या फिर आपके पास ऑलरेडी रेंटल प्रॉपर्टीज हैं और उसके ऊपर आप अपअप उठाना चाहते हो टू बाय सम अनदर कमर्शियल प्रॉपर्टी, यू नो, और टू बाय सम अनदर बिजनेस. नाउ दीज आर ओल्ड, यस, बिट ऑफ complications, not an easy kind of discussion ki main aapko abhi on air pura samjha paunga, but lekin it is very technical side of it, but aapka kitna easy hai is yahan pe usko uthana paisa commercial properties mein. I wouldn't say that it is very easy, but again you need a right person to guide you through, jisko commercial ke bare mein knowledge ho, jisko commercial ko kaise present karna hai bank ko, and how to get that loan approved based on, because commercial properties mein what banks look into is ki kitna rent wo grab karegi, kitna rent lega aur kitna jo rent jisse aa bhi raha hai wo wahan pe kitni der rehne wala hai, kitni lambi aapki lease hai, you know, you how long you got a lease with that person, aur kis tarah ka business run kar raha hai, koi dairy shop run kar raha hai us commercial building mein, ya koi doctor run kar raha hai, ya koi accountant hai, ya fir koi hospital chal raha hai, ya koi petrol station hai. So different side of कौन सा टेनेंट है, कितना रिलायबल टेनेंट है, उसके हिसाब से दे विल गेज इट एंड हाउ वी हैव टू प्रेजेंट इट टू द बैंक कि आपको इनको पैसा देना चाहिए, बिकॉज यहाँ से रेंटल से ये लोग इतना सोफिस्टिकेटेड मनी उठाएंगे और वो सारा 100% इनके पास आने वाला है. यस, इट इज वेरी एज अ साइड नीश मार्केट, और काफी हमारे लोग इसमें है भी और काफी लोग नहीं भी है, क्योंकि कमर्शियल के बारे में किसी को इतना नॉलेज नहीं है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है. बट जो भी अगर आप मेरे को सुन रहा है थ्रू यू गाइस एंड दे थिंकिंग यस यार मैं तो बिजनेस रन कर रहा हूं, मुझे व्हाई डोंट आई बाय दिस प्रॉपर्टी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस यू विल एवर हैव टू बाय योर ओन कमर्शियल बिल्डिंग जहां पे आप खुद बिजनेस रन कर रहे हो, बिकॉज देन दे विल बी अ नो रेंटल इंक्रीमेंट्स, आपको कोई बोलने वाला नहीं
2: रहेगा आपके पास, ज्यादा
3: स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि कल को आगे आपको किसी ने बोल दिया कि लाओ ये भैया आपका साल का रेंट मैंने $20,000-$30,000 से बचा बढ़ा दिया है, और आपको कि भाई यार बिजनेस तो चल नहीं रहे हैं आप, बट डजंट मैटर, उनके पास भी वो एक जो लैंडलॉर्ड है उसके पास भी एक ही चांस आने वाला है, जिस दिन रिन्यूअल आएगा उसी दिन वो रेंट बढ़ा पाएगा, उसके बाद तो वो भी अगले 2-3 साल के लिए रेंट नहीं बढ़ा पाएगा. सो ही ऑल्सो गॉट ओनली दैट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर रेंट. तो और फिर उसके बाद आप बोलोगे नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, तो बोलेगे ठीक है खाली करो. फिर आपका जो अच्छा चलता हुआ बिजनेस है, तो आप दो जगह फंस जाते हो कि मैं बिजनेस छोड़ दूं या मैं रेंट बढ़ाऊं, मतलब करना शुरू कर दूं, यू नो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू हैव अ डिस्कशन ऑन. एंड अगर उस बोर्ड में कोई है जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहता है या कमर्शियल में ऑलरेडी बिजनेस उनकी कमर्शियल पोर्टफोलियो है एंड दे वांट टू रीस्ट्रक्चर दोस कमर्शियल पोर्टफोलियो कि उसी में से निकाल के हम किसी प्रॉपर्टी को फ्री कर लें और उसी के ऊपर अगर हम और लोन निकाल के दूसरी कमर्शियल ले लें. सो दिस लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन.
2: राइट. आई थिंक गुरु आपने बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है. एंड फॉर समवन हु इज राइट नाउ इन दैट फेज जहाँ पे वो देख रहे हैं कि यू नो लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ द मनी दैट वी हैव, आई थिंक दे शुड गेट इन टच विथ यू. आपको कॉल करने का नंबर 0800-564-424.
3: बिल्कुल 0800-564-564-424 इज द नंबर टू गेट इन टच. आप 0800 लॉजिक जी अगर इजी रिमेंबर करना है, लॉजिक जी अगर आप टाइप करोगे दैट आल्सो कम्स टू मी व्हिच इज 0800 लॉजिक जी.
2: एब्सोल्युटली गुरु, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी होप टू टॉक टू यू वेरी सून. लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेरीज है अराउंड कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लोन्स अगर आपको लेने हैं, तो आप फटाफट अभी के अभी गुरु कंडोला को कॉल कर लीजिए. ही इज अवेलेबल. आप अवेलेबल हो राइट नाउ टू आंसर कॉल्स?
3: अभी आप बोलोगे तो मैं ले लूंगा. वैसे तो मैं एक क्लाइंट के साथ बैठा था, बट आई जस्ट थॉट कि आई विल जस्ट क्विकली टेक दिस इंटरव्यू एंड देन फिनिश इट ऑफ. बट इफ एनीवन वांट टू गिव मी अ कॉल, मेबी इन हाफ एन आवर टाइम वुड बी गुड.
2: ओके, इन हाफ एन आवर टाइम गेट इन टच विद गुरु कंडोला. 0800-564-424 इज द नंबर. थैंक यू गुरु.
3: थैंक यू रिजवी. चीज़ बाय बाय.

0: यू बाई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 448 राइट नाउ ऑन द क्लॉक एंड इट्स बीन सच अ बिजी आवर ऑलरेडी वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द एंड ऑफ द आवर लेकिन सैंडी आज 5 बजे के बाद हम एक टेस्ट लेने वाले हैं
2: या एक टेस्ट यहाँ पे होगा और इस टेस्ट के बाद ही सिचुएशनशिप में आपको हम यहाँ पे डालने वाले हैं लेकिन उससे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रुजबे वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल हम 5 बजे के बाद यहाँ पे एक्ट पार्टी के लीडर डेविड सिमर इनसे बात करने वाले हैं तो वी आर ट्राइंग डिफरेंट स्पोक्स पर्सन जो है डिफरेंट पार्टीज़ के उनको हम यहाँ पे शो में लेके आए और उनसे जो आपके सवाल है वो डायरेक्टली यहाँ पे पूछें पॉलिसीज़ के बारे में उनका विजन क्या है न्यूजीलैंड को लेके ये सब चीज़ें सो अगर आपका कोई सवाल है तो अभी मैसेज कीजिए 5599 पर
1: देखो एक चीज़ जो मैं पूछने वाला हूँ जिसके बारे में इज अबाउट द लेटेस्ट जो इन्होंने प्रपोजल दिया है ना कि फ्रीजिंग द अडल्ट मिनिमम वेज फॉर 3 ईयर्स एंड 60% ट्रेनिंग वेज फॉर अंडर 20s
2: या जो कल ही आया था
1: जो कल ही इसके बारे में बात हुई है तो मैं उसके बारे में तो सवाल पूछना ही चाह रहा हूँ कि अगर आप फ्रीजिंग कर रहे हो अडल्ट मिनिमम वेज को तो फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर्स जो है उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे फॉर लो इनकम हाउसहोल्ड्स हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज विद इन्फ्लेशन एंड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ते जा रहा है हर साल तो वो तो डेफिनेटली एक सवाल रहेगा बट इसके अराउंड अगर आप भी कुछ यू नो पूछना चाहते हैं देन डू लेट मी नो बिकॉज दैट विल हेल्प अस आपके जो सवाल रहेंगे उनको आंसर्स अगर देंगे हम तो वो
2: काफ़ी चीज़ हो सकती है इमिग्रेशन के बारे में भी हो सकता है बिकॉज दे एम टू टाइटन द परमानेंट रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स टू मैंडेट ऑनगोइंग फिजिकल प्रेजेंस या
1: वो निकाल रहे परमानेंट रेजिडेंसी निकाल रहे
2: निकाल ही रहे
1: रेजिडेंट वीजा और फिर
2: तो इसके अराउंड भी डेफिनेटली हमारा एक सवाल रहने वाला है इमिग्रेशन के ऊपर भी दिस इज व्हाट वी हैव थॉट अबाउट
1: ये तो सही लगा मेरे को यार ये लोग ने जो डाला है मुझे नहीं लगता ये गलत है दिस इज एक्चुअली मच रिक्वायर्ड आई वुड से टू अवॉइड ब्रेन ड्रेन So and I think this one is definitely yeah, but we'll definitely ask
2: और something. भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने पॉलिसीज में रखी है
1: एक्चुअली में इसके अराउंड ये जो है ये परमानेंट रेजिडेंसी निकाल रहे इसके अराउंड कोई सवाल है क्या आपके पास मतलब हाउ डू यू थिंक इट्स गोइंग टू नेगेटिवली इंपैक्ट न्यूजीलैंड और अस
2: मुझे लगता है कि हमारे कम्युनिटी में काफी लोग हो सकते हैं जो अफेक्टेड हो इससे You never know. So, आप बताइए अगर आपका कोई सवाल है इसको लेके 5599 पर मैसेज करके बताइए आप यहाँ पे एंड आपका सवाल हम आगे पहुँचाएंगे वी कैन जस्ट मतलब हम एक प्लेटफॉर्म बन सकते हैं जहाँ पे आपकी बातें वहाँ पहुँचा सकते हैं उनकी बातें आप तक सो दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म
1: या एब्सोल्युटली देयर इज नो अदर रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस इट्स बेसिकली जस्ट टू प्रोवाइड मोर क्लैरिटी मोर ट्रांसपेरेंसी एंड वी नो हम किसको वोट करने वाले हैं मतलब इफ वी नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम सो दैट इज द होल इंटेंशन ऑफ दिस सो प्लीज जरूर कल ज्वाइन इन कीजिएगा एंड अगर आज आप मैसेज भेज सको हमें क्वेश्चंस व्हाट इज बॉदरिंग यू व्हाट इज इट दैट यू वांट टू आस्क 5599 ड्राइव कीवर्ड भेज दीजिए हमें मैसेज या फिर इंस्टाग्राम पे जाके भी आप हमें मैसेज लिख सकते हो यू कैन स्लाइड इनटू आर डीएम्स फॉर फ्री सैंडी सेखो ऑन इंस्टाग्राम या फिर रुजबे अंडरस्कोर द बाबा ऑन इंस्टाग्राम यू कैन गो एंड आस्क अस सम क्वेश्चंस एज वेल गौरव ने भेजा है इफेक्ट ऑफ दिस परमानेंट रेजिडेंसी रूल ऑन स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीजा होल्डर्स अच्छा ये इसके बारे में क्या है डिटेल में हम आपसे पूछेंगे क्या आप क्या जानना चाह रहे हैं लेकिन हाँ आपके मैसेजेस आप हमें यहाँ पे भेजते रहिए

0: with Logic.
1: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The government is making changes to the way councils can recover costs from housing growth. It's allowing developers to be charged a levy for infrastructure like stormwater. Housing Minister Chris Bishop believes it's a fairer approach.
2: Existing ratepayers should not be cross-subsidising housing growth that they don't benefit from.
1: Labor is promising penalties for large companies that price gouge. Spokesperson Arena Williams says it would apply to essential goods.
3: It's not about a list of products that are going to be up for price gouging. It's about the whole market for food and groceries.
1: A search will take place next week for an aircraft that vanished in 1978. Police say the operation will begin at the northern entrance to Lake Moeraki on the west coast on Monday. The Defence Force and Coast Guard will be involved. There's no word yet on what prompted the search. A small Wellington-based studio is going global with Te Reo. It has launched a full Te Reo Māori version of its game Mini Motorways, which is played by millions. Dinosaur Polo Club's Ben Tucker Emerson says it's a proud moment.
4: The chance to bring a bit more of our culture and identity to the world stage has been really, really exciting.
1: As the NRL playoffs unfold, it should not come as a surprise that there's a lift in the mind games. Dolphins officials are keen for the NRL to clamp down on what they saw as escorts in the win over the Warriors. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And in netball, the Mainland Tactics are losing another key player. 24-year-old Australian defender Ash Barnett is returning to the Queensland Firebirds for next year's super season.
0: Sports news. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands bhi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: वेदर का हाल आज काफी कमाल. लाइट नॉर्दर्लीज डेवलपिंग लेट आफ्टरनून. 6:13 पे होगा सनसेट. फील्स लाइक 14 डिग्रीज. टू लेयर्स ऑफ क्लोथिंग इज रिकमेंडेड. ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 10 डिग्रीज टुनाइट. कल का दिन मिला जुला सा रहेगा कल, लेकिन बारिश ज्यादा होने वाली है.
7: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
8: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
6: 5:02 and you're listening to Power Drive at 5. Good evening.
9: Very, very good evening to you, Rusby. Power Drive at 5 आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है and इस आवर में आज सिचुएशनशिप में डालने से पहले आपके साथ आज हम एक गेम खेलेंगे.
6: एक टेस्ट हम यहाँ पे खेलने वाले हैं और वो टेस्ट के लिए वी नीड यू टू गिव अस अ कॉल ओवर हियर.
9: वॉलंटियर चाहिए इसके लिए.
6: वॉलंटियर्स चाहिए हमारे पास कोई. किस चीज का टेस्ट है वो बता दे क्या?
9: या वी कैन टॉक अबाउट इट.
6: आज हम टेस्ट ले रहे हैं अबाउट हाउ सेल्फ अवेयर आर यू.
9: और ये आपको अपने बारे में पता है.
6: ये कैसे आपने इसके बारे में सोचा सैंडी? ये बताना चाहते हो आप?
9: सेल्फ अवेयर ऐसा ही होता है ना कि कई बार हम कोई चीज़ देखते हैं सुनते हैं देन यू लाइक यार बट इज दिस पर्सन सेल्फ अवेयर अबाउट खुद की चीज़ के बारे में ना कि ये चीज़ शायद वो खुद ही कर रही है या कर रहा है या यू नो उस चीज़ में लेके कि जब हम कई बार किसी को और ये हम सब करते हैं बेसिकली हम कई बार किसी को प्रीच करते हैं कुछ चीज़ों के लिए कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए but you actually do it.
6: तो आज हम टेस्ट ले रहे हैं and this is like a funny test here. It's not a serious test. It's a funny test and hopefully you will enjoy it as well. 0800-004-866 call कीजिए यहाँ पे और इस टेस्ट का हिस्सा बनिए.
9: Yeah, so who will call? 0800-00 हम आज self aware test हम एक questionnaire तैयार किए हैं.
6: हमारे caller of the month Gaurav, welcome to the show.
10: Thank you so much, Sandy and Jusbe. How are you?
6: Good, यार आप पहले बताइए कि बाद में आपकी शाम कैसे गुजरी? कल आपने प्रैंक की आपकी बीवी के साथ?
10: आज मेरी लो टोन साबित कर रही है कि कल मेरी शाम कैसी गुजरी.
9: 5 मिलियन की लो टोन निकली है. एक्चुअली में 5 मिलियन की निकली है किसी की.
6: क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? माय गॉड,
9: वो जो तुमने कल 5 मिलियन बोला है ना वो एक्चुअली में किसी का निकला है.
6: यार क्या बात कर रहे हो यार, एकदम ही तथास्तु हो गया मतलब मेरे बोलने पे. क्रेजी,
9: बस इनका नहीं निकला है.
6: नहीं आपको क्या पता भाई, ये गेम
10: 5 मिलियन
6: भाई याद रखना, अगर कभी भी आपका जिंदगी में कभी भी लॉटो अगर निकला 5 मिलियन या उससे ऊपर का,
10: नहीं याद रखूंगा, याद रखूंगा आप दोनों को।
6: नहीं नहीं, सिर्फ याद नहीं चाहिए हमें,
9: हिस्सा चाहिए हमारा।
6: नहीं यार कोई नहीं। ओके तो गौरव रेडी हो तुम यार ये क्वेश्चंस के लिए?
10: पक्का।
6: सो बेसिकली आज हमारा गेम, आज हम खेलते सिचुएशनशिप, राइट? तो हम वैसे ही सिचुएशनशिप वाले सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यू जस्ट हैव यू, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, आई विल गिव यू फ्यू ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस दूंगा मैं हर क्वेश्चन के साथ। आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन दैट यू रेजोनेट विद द मोस्ट।
10: ठीक है
6: ठीक है। तो आपका पहला सवाल है ये, किसी ने तुम्हारी गलती पकड़ ली, तुम्हारा इमीडिएट इंटरनल रिएक्शन क्या होता है? इंटरनल रिएक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्क्रिप्ट की गलती है। ऑप्शन बी, डिफेंस मोड ऑन, गूगल से फिजिक्स के लॉस कोट करके प्रूफ करूंगा कि मैं सही था। या ऑप्शन थी, ऑप्शन सी, गहरी सांस, चलो ठीक है हक दिया मैंने।
9: मैंने कि गलती हो गई,
6: ये मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ये बस जस्ट लेटिंग यू नो, मेरा एआई भी ऐसे ही बात करता है।
10: मेरे लिए तो आई वुड गो फॉर सेकंड ऑप्शन, बिकॉज मैं ना ज्यादातर फैक्ट के बेसिस पर बात करता हूँ, सारे समीकरण बिठाऊंगा, बताऊंगा कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हो सकती थी जिसकी वजह से इट्स नॉट माय फॉल्ट।
6: अच्छा ओके ठीक है।
9: आप जो सुन रहे हैं तो आप भी सुनिए और आप भी अपना टेस्ट दीजिए साथ में,
6: आप भी अपना साथ में
9: कि यू नो इन तीनों ऑप्शंस में से आप क्या सिलेक्ट करते, एंड एंड ऑफ द टेस्ट में यहाँ पे बताओ 5599 पर कि इससे क्या पता चला, आर यू सेल्फ अवेयर, मतलब आप टेस्ट में पास हुए या नहीं?
6: नहीं नहीं पास ऐसा कुछ नहीं यार, मतलब सैंडी एवरीवन इज अ विनर। नहीं नहीं एवरीवन इज अ विनर, ऐसे प्रेशर दोगे तो फिर वो
9: नहीं, बट दिस इज अ सेल्फ अवेयरनेस ना।
6: सही है सही है। तो गौरव सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हारा मूड सडनली हीरो से विलन वाला हो गया और कॉज क्या है, ये सवाल है। ऑप्शन ए, यूनिवर्स की मेरे से कोई पुरानी दुश्मनी है। ऑप्शन बी, किसी ने मेरे पास आके गलत ढंग से सांस ले ली। ऑप्शन सी, कुछ नहीं बस भूख लगी है और मैं बिना वजह लोगों पे चिढ़ रहा हूं।
10: सी, भूख लगी है,
6: भूख लगी
10: है ना, एक वो कहते हैं कहावत है ना कि हाँ भाई आदमी का वो मूड उसके पेट से होके जाता, पता नहीं दिल का रास्ता पेट से ऐसा कुछ।
9: या, या।
6: आदमी के दिल का रास्ता पेट की तरफ
10: से, चिड़चिड़ा हो जाऊंगा।
9: या काफी लोग भूख के कारण ग्रंपी हो जाते हैं ना,
10: वो एक ना सिंड्रोम होता है गैस्ट्रोकार्डियक सिंड्रोम, अगर आप खाली पेट रहते हैं ना तो आपके पेट में ब्लोटिंग होती है जिसकी वजह से आपके हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाती है, आपकी वेगस ना बॉडी इरिटेट हो जाती है, वो फाइट टू फ्लाइट मोड आ जाता है, वो सारा कुछ।
6: या ये डॉक्टर भी है
9: या, या, मैं वही सोच रही थी।
10: मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं।
6: आप फिजियोथेरेपिस्ट हो सच्ची में?
9: अरे
6: अरे तो फिर आधे डॉक्टर ही हो गए ना यार। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लगाते कि नहीं लगाते?
9: नहीं,
10: इंडिया में लगाते हैं, रूल हुआ था 2024 में स्टार्ट हो गया था, पर यहाँ पे नहीं लगाते,
6: यहाँ पे नहीं लगाते,
9: नहीं लगाते या।
6: चलो कोई नहीं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम्हारा सबसे पक्का दोस्त तुम्हारे दो सबसे इरिटेटिंग आदत बताए तो तुम ऑप्शन ए, उसका दिमाग मतलब उसका ब्रेन वॉश करके प्रूफ करोगे कि ये बैड हैबिट्स नहीं आइकॉनिक ट्रेट्स है। ऑप्शन बी, ऑफेंड हो जाओगे और 3 दिन के लिए दोस्ती कैंसिल कर दोगे। ऑप्शन सी, साइलेंट नॉड करोगे क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि तुम सुबह बिना चाय के एक आफत हो।
9: मुझे इसमें रुजबे का पता है, वो क्या करेगा?
6: मैं क्या करूंगा?
9: ऑप्शन ए। ही विल से
10: मेरे अंदर मेरी माँ का खून है, मेरे अंदर मेरी माँ का खून है और वो बहुत बड़ी मैनिपुलेटर है, तो मैं भी सेम ऐसा ही हूँ, किसी को मैनिपुलेट करके उसकी गलती बता दूंगा कि हाँ भाई ये जो मेरी आदतें हैं ये इसलिए बेनिफिट करती हैं, मतलब मेरे लिए पॉजिटिव है, तो इट्स लाइक दिस।
9: तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है लेकिन मेरे लिए सही है।
10: हाँ
9: ऐसा
6: या
10: सही, उसके पीछे रीजन दे दूंगा कि हाँ भाई ये रीजन है।
6: वेरी नाइस। ओके फोर्थ वन। ओके, जब गलती के बाद सॉरी बोलने की नौबत आती है तो तुम क्या बोलते हो? ऑप्शन ए, आई एम सॉरी कि तुम्हें ऐसा लगा। ऑप्शन बी, मैं सॉरी बोल देता लेकिन अगर तुमने वो नहीं किया होता तो मैं ये नहीं करता। ऑप्शन सी, मेरी गलती थी, 100% मेरी भूल है, नो एक्सक्यूजेस।
10: मैं ऑप्शन 3 चूज करता है इसके अंदर, सॉरी बोलने में कोई कमी थोड़ी ना, अगर सॉरी बोल देंगे ऐसा थोड़ी
9: ना, आपको पता है कि आप गलत हो तो
6: मैं ऑल थ्री ऑप्शंस यूज करता. मैं पहले बोलता कि मैं सॉरी बोल देता, लेकिन
9: ये सेल्फ अवेयर नहीं है.
6: नहीं मैं सेल्फ अवेयर हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ पहले बोलता मैं कि आई एम सॉरी कि तुम्हें ऐसा लगा. मैं सॉरी बोल देता, लेकिन अगर तुमने वो नहीं किया होता तो मैं ये ना करता. मेरी गलती थी
10: 100% जाके कि हां बच्चू हां दोनों काम नहीं करे तो थर्ड ऑप्शन तो है
6: क्या. मैंने आई हैव सीन माय सेल्फ यूजिंग ऑल थ्री ऑप्शंस. एनीवे लास्ट क्वेश्चन जो इमेज तुमने अपने दिमाग में बनाई है वर्सेस लोग तुम्हें सच में जैसा देखते हैं, ठीक है. तो ऑप्शन ए, दिमाग में एसआरके लेवल एंट्री, रियलिटी में मेन कैरेक्टर ऑलवेज. ऑप्शन बी, दिमाग में डीप मिस्टीरियस फिलोसोफर, रियलिटी वो बंदा जो रूम में अकेले भूल जाता है क्यों आया था, आके भूल जाता है क्यों आया था. ऑप्शन सी, दोनों मैच होते हैं, मुझे अपनी अच्छी बातें और अपना डेली ड्रामा दोनों पता है.
10: इन तीनों ऑप्शन के अंदर ना आई डोंट नो, लाइक मैं ना एक वर्ड, एक चीज के लिए मैं अपने आप को डिफाइन कर देता हूँ कि भाई मैं जब भी जाता हूँ मैं ना वो दिखाता हूँ जो सामने वाला देखना चाहता है. इट्स लाइक दिस, अगर सामने वाला देखना चाहेगा कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा बन के दिखा दूंगा, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है.
6: That's right, okay. That's right. तो मतलब अगर आप बुरे हो तो वो आपकी गलती नहीं है, वो सामने वाले की गलती है क्योंकि वो बुरा देखना चाह रहा है. सही सही बोल रहे हो आप. Yes, I completely I agree with this one as well.
9: Yeah.
6: Sandy ने सुना नहीं है, कोई बात नहीं. But Gaurav, thank you so much यार. आपको अभी पता चला कि आप कितने self aware हो?
10: थोड़ा बहुत तो पता
6: है. मुझे लग रहा है आप काफी self aware हो यार.
10: वही बताया था, कल भी बताया था मैंने, केतु 7/25.
6: अरे यार मैं वो भूल क्यों गया.
9: सही है.
6: अच्छा ठीक है गौरव, थैंक यू सो मच.
9: थैंक यू गौरव, थैंक
10: यू सो मच. थैंक यू बाय.
9: सो आपने भी सवाल सुने होंगे, आप भी बताइए यहाँ पे मैसेज करके कि जो रुजबे ने सवाल पूछे ये सुनने के बाद आपने अपनी क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट की. मतलब बेसिकली एंड रिजल्ट में डू यू थिंक यू आर सेल्फ अवेयर, आपको अपने बारे में पता है कि आप जो कर रहे हैं क्या है, क्या सही है क्या गलत है.
6: ड्राइव शो जारी है आपके लिए, पावर ड्राइव एट 5, और आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए लेकर आने वाले एक और थीम क्या होगा वो जानेंगे बहुत जल्द. अभी के लिए इट्स बॉम्बे रॉकर्स फॉर यू.

0: सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: हम Accurate traffic.
3: Kitchen Mania free installation.
4: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10. On the northern, it's slow heading north from Oniwa to Esmond. The northwestern to Massey, 28 minutes, just heavy from Waterview to Roseback. The southern to Manukau, 39 minutes, an hour to Drury. It's heavy southbound Newmarket to Sylvia Park. We've got a crash on Church Street in Onehunga, so traffic's very heavy there and on Nielsen. Southwestern is heavy around Mangere Bridge in both directions.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. KitchenMania.co.nz. T's and C's apply.
5: Winger Motors है आपका होम ऑफ चेरी, जहां नया SUV लेना इज इजियर देन यू थिंक। स्प्रिंग सेविंग

0: फैक्ट्री डे ड्राइविंग के लिए स्मार्टर चॉइस विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन और पुकेकोई और winger.co.nz ऑफर एंड सितंबर 30th.
1: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m. handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Power Drive at 5.
7: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
8: Gundi Khadda. सीधा अंदर आऊं
9: मैं लाऊं अपना ए गेम.
7: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
10: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits, Bollywood's most wanted. में आपको एक मस्त सा गाना सुनाएंगे यहाँ पे, लेकिन आपको एक और एक रिमाइंडर दे दे कि कल 5 बजे के बाद यहाँ पे डेविड सिमर एक्ट के जो लीडर है उनसे हमारी बात होने वाली
11: है. 5:30 एक्चुअली में बात होने वाली है, तो इसी टाइम के अराउंड हम बात करने की तैयारी करेंगे उनसे. कुछ सवाल हमारे पास आए हैं रुजबे, हमारे मैसेजेस पे काफ़ी सवाल आए हैं, यहाँ पे यू नो स्टूडियो की लाइन पे काफ़ी सवाल आए हैं. थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चंस के लिए.
10: कल सारे एड्रेस करेंगे हम. अगर और भी सवाल है आपके पास तो भेजिए हमें यहाँ पे ड्राइव 5599 मैसेज चैनल पे.
11: हमारी कोशिश रहेगी हर एक पार्टी के कोई ना कोई स्पोक्स पर्सन को यहाँ पे लेके आने के लिए एवरी थर्सडे, सो दैट कमिंग टूवर्ड्स इलेक्शन हम थोड़ा तैयार है कि किसको वोट करना है, किसकी क्या पॉलिसी है, आपको क्या सूट करता है, यू नो आपको इन चीज़ों की अवेयरनेस है. एंड वोटिंग के लिए अगर आपने इलेक्शंस के लिए अगर आपने वोट अभी तक नहीं बनाई है तो आप जाइए वेबसाइट पे.
10: रजिस्टर नहीं किया है तो,
11: अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जाइएगा और अपनी वोट आप बना लीजिएगा. अगर आपको चेक करना है कि वैलिड है कि नहीं है वो भी आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं.
10: vote.nz is the website where you can do all of this.
11: फुल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए जो हम करने वाले हैं वो है बाली एंड बैंकॉक. हम जा रहे हैं March 2027 जो कि ईस्टर का टाइम रहेगा. ईस्टर गेटअवे हम करने वाले हैं, मैं और रुजबे एंड हमारे साथ कुछ लिसनर्स जा रहे हैं. 50% ये जो ट्रिप है ये सोल्ड आउट हो चुका है, 50% सीट्स अभी बाकी है. तो ये जो पैकेज है ये सन टूअर्स ने तैयार किया है जो कि एकदम प्लान्ड है, इंक्लूसिव है और हैसल फ्री है. बेसिकली वहाँ पे सिर्फ आप घूम नहीं रहे हो, वहाँ पे आप एक गाइडेड टूर कर रहे हो जहाँ पे आपके खाने पीने का ध्यान भी रखा जा रहा है, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर. साथ में एक्टिविटीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, अकोमोडेशन का, टिकट्स का, एवरीथिंग. सो अगर आपके कोई सवाल है, कई बार होता है ना कि यार मेरे अंदर ये सवाल है, मैं मेरे को हेजिटेशन हो रही है पूछने के लिए, तो हम एक कर रहे हैं चाय पे चर्चा. चाय पे चर्चा पे क्या रहेगा, मैं और रुजबे वहाँ पे रहेंगे एंड किसी रेस्टोरेंट में हम बैठेंगे, वहाँ पे हम रहेंगे, सन टूअर्स के अनिल भाटिया वहाँ पे रहेंगे. एंड यू कम ओवर देयर और बातें करो, जो आपका सवाल है थ्रो योर क्वेश्चंस और वहीं पे आपके लिए हम जवाब लेके आएंगे, सन टूअर्स आपके लिए जवाब लेके आएंगे. सो चाय पे चर्चा के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज़ हमें लिमिटेड स्पॉट्स है बेसिकली, तो हमें रजिस्ट्रेशन ज़रूर चाहिए होगी, तो 5599 पर ड्राइव लिख के भेजिए, ऑटो रिप्लाई में चाय पे चर्चा का फॉर्म आएगा, जस्ट फिल द फॉर्म एंड जस्ट डू द RSVP.
10: सो या वेरी सिंपल टू रजिस्टर फॉर इट, आप फटाफट कर लीजिए रजिस्टर ड्राइव कीवर्ड लिखकर. एंड
11: इट इज फॉर 11th अक्टूबर,
10: कब हो रहा है ये? 11th अक्टूबर को हो रहा है. सो या 11th अक्टूबर, काफी टाइम है आपके पास, आई थिंक यू हैव ऑलमोस्ट मंथ टू प्लान इट आउट. 11th अक्टूबर इज अ संडे एक्चुअली, सो संडे को
11: आई थिंक 10th है कि 11th है रोज पे, फिर
10: संडे है. 11th अक्टूबर इज अ संडे.
11: ओके,
10: तो संडे को मिलेंगे हम चाय पे चर्चा के लिए. एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस तो ड्राइव लिखकर भेजिए एंड यू कैन RSVP देयर, यू विल गेट टू नो द वेन्यू एंड एवरीथिंग ओवर देयर एज वेल. हमारे फेसबुक पे भी हमने पोस्टर डाला है एक चाय पे चर्चा का, तो वहां पे भी वो लिंक वहां पे भी डाल देंगे हम.
11: एंड ऑल्सो सन टूर्स को आप कॉल कर सकते हैं कभी भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, 0800 4 सन टूर्स, 0800 4 786 868 पर.

0: listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आज बहुत सन्नाटा है यार यहाँ पे. आप ड्राइव लिखकर मैसेज कीजिए. सैंडी कुछ बताइए यार, क्या मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे. एक कोई सवाल हो जाए. आपका भेजा फ्राई नहीं आया बहुत टाइम से.
1: नहीं, भेजा फ्राई तो नहीं मैं करती हूँ अभी ना.
0: अभी
1: तो मैं व्हाट एम आई करती हूँ, वो मैंने पूछा. मैंने कॉफी ब्रेक में पूछा था वो ऑलरेडी.
0: अच्छा.
1: एंड काफी लोगों ने उसके सही जवाब दिए. और आज ट्रेंड मेकर्स में हम एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर के गाने सुनने वाले हैं जिन्होंने बहुत कम मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में म्यूजिक कंपोज किया है रुजवे. लेकिन उन्होंने जितना भी म्यूजिक कंपोज किया है, क्लास म्यूजिक कंपोज किया है, बहुत कम मूवीज में किया है. एंड ऐसा लगेगा उस आवर में कि एक्सेप्ट 2 or 3 सॉन्ग्स की, बाकी सारे गाने एक ही एक्टर के ऊपर एक्चुअली में. या सो ये जो म्यूजिक कंपोजर है इनका नाम है राम लक्ष्मण.
0: राम लक्ष्मण.
1: यस.
0: इनके बारे में
1: या राम लक्ष्मण के कंपोजिशन का ये गाना अभी आप सुनने वाले हैं. सो दिस इज द 90s एरा जो आप सुनने वाले हैं. इनफैक्ट ही इज अ पर्सन जिन्होंने 70s में भी 80s में भी बहुत गाने बनाए. ही इज अ पर्सन, वो जो गाना है धागाला लागली, हाँ. जो ओरिजिनल कंपोजिशन है वो इन्होंने की है. उसके बहुत सारे रीमिक्स बने हैं बट द ओरिजिनल वन जो कि आई थिंक 1974 की मूवी में था, किसी एक ऐसी मूवी में था. सो वो तो ओरिजिनल
0: बाद में बहुत बार
1: रिक्रिएट हुआ है वो. बट ओरिजिनल कंपोजर इज राम लक्ष्मण फॉर दैट सॉन्ग.
0: वाओ.
1: या सो मराठी मूवीज में भी उन्होंने बहुत काम किया है. तो आज उनके कुछ बॉलीवुड के गाने हम यहाँ पे सुनने वाले हैं. आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द ओरिजिनल धागाला लागली. तो या
0: क्या ओरिजिनल कौन सा गाना?
1: धागाला लागली का
0: धागाला लागली ढगाला ढगाला
1: ढगाला है. ओके.
0: ढगाला मींस क्या मालूम है?
1: नहीं.
0: क्लाउड्स.
1: कि क्लाउड्स आ गए हैं.
0: नहीं मतलब वहाँ पे ढगाला मतलब क्लाउड्स में जब वो बिजली ऐसे कड़कती है ना.
1: हाँ.
0: तो वो उसका मतलब वो है कि ढगाला लागली का.
1: ओके.
0: वैसे मतलब क्लाउड्स
1: के अंदर से कड़क बिजली ऐसे.
0: हाँ, ऐसा ऐसे इसे ही समझ लो.
1: सही है.
0: आई कांट एक्सप्लेन इट बेटर.
1: नो दैट्स फाइन. सो या राम लक्ष्मण को आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं. सो इनके बारे में और भी हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं.
0: तो काफी नॉस्टैल्जिक आर होने वाला है आज. आज एक ऐसा गाना भी मैं अभी देख रहा हूँ प्लेलिस्ट में, एक ऐसा भी गाना है जो मुझे लग रहा है हम कभी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ पाते.
1: Yeah.
0: उस गाने को अगर हमने शुरू किया तो हमको खत्म करना ही पड़ता है.
1: खत्म करना ही पड़ेगा. तुम्हें पता है राम लक्ष्मण का, वैसे इतना मैं अभी आपको हिंट देती हूँ इनके बारे में. हिंट क्या, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि दिस इज टू नेम्स ना, राम एंड लक्ष्मण. लाइक विजय पाटिल इज वन एंड सुरेंद्र इज सेकेंड वन. दो लोगों ने साथ में मिलकर म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया. बट बहुत जल्दी ही जो लक्ष्मण है सुरेंद्र, इनकी डेथ हो गई थी 1976 में. But he still continued with the name Ram Lakshman rather than his own name.
0: Wow, yeah, that's very cool, yeah.
1: So, yeah, इनके बहुत सारे ऐसे nostalgia गाने आज आप सुनने वाले हैं Trendmakers में.
0: तो ज़रूर साथ दीजिएगा हमारा 6 to 7 के बीच. अभी के लिए आपको कुछ messages सुनाते हैं. Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusby brought to you by Beds R Us Manuko and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manuko and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. The Breakfast Show with VJ and Pooja. Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my
3: I
2: fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं. The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco. Weekdays 6 to 10 a.m. Hum. Accurate traffic. Kitchen Mania free installation.
4: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10. On the northern, it's slow heading north from Oniwa to Esmond. The northwestern to Massey, 28 minutes, just heavy from Waterview to Rosebank. The southern to Monaco, 39 minutes, an hour to Drury. It's heavy southbound Newmarket to Sylvia Park. We've got a crash on Church Street in Onehunga, so traffic's very heavy there and on Nielsen. Southwestern is heavy around Mangere Bridge in both directions.
5: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
6: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: There's a new sound at Bunnings. That's the sound of Bunnings rewards being earned. You can earn them across the store, from gardens to gumboots, hose reels to heated towel rails. Simply download the Bunnings app, scan your Bunnings card and see your points stack. Join Bunnings Rewards today.
9: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone-in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
10: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havil Jolion, Havilet 6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
11: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
12: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
13: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havil and Omura Jaiku.
14: Power Drive at 5.
15: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
16: Let's go.
15: Straight from the heart.
17: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: अरे राम माशाल्लाह इंशाल्लाह क्या बात है, आप तशरीफ ले गए मुलाकात हो गई आपसे।
1: हाँ।

0: There are reports of flooding and snow on lower South Island roads as a cold snap takes hold. NZTA says there are no closures on state highways yet, but heavy snow is forecast for places like Central Otago and the Mackenzie Basin. To sport, 4 days out from the NRL elimination final at Eden Park, and the Newcastle Knights are looking to take on an Origin-like mindset. The Knights are relishing the opportunity to silence a hostile atmosphere. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And the Breakers have secured Tor Black and former NBA draft pick Mojave King as a nominated injury replacement for American import Josiah Jordan-James, who is out for at least the first month.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
3: Hum par shok soochnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
4: Suchit kiya jata hai. Ratumara Road, Numboa Fiji ke swargiya Ramlal ke putra, Avondale ke Prakash Lal ke pati, ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता, फिजी में फॉर्मर नसीनो और सुआ सॉकर रेप एवंडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार थर्सडे 17 सितंबर को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स विरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-3104-961 पर कॉल कर सकते हैं। रतुमारा रोड नंबुआ फिजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र एवोंडेल के प्रकाश लाल के पति ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता फिजी में फॉर्मर नसीनो और सुआ सॉकर रेप एवोंडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार थर्सडे 17 सितंबर को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-3104-961 पर कॉल कर सकते हैं।
3: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
5: करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
5: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: छह बज चुके हैं। ट्रेंड मेकर्स आपके लिए हम लेकर आते हैं। हाय सैंडी, गुड इवनिंग।
7: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग रुजबे। और आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इस जोड़ी को जिनका नाम है राम लक्ष्मण। सो राम लक्ष्मण, फैसिनेटिंग बैक स्टोरी इनकी रही है। यू नो म्यूजिक कंपोजर्स हैं जिन्होंने साथ में मिलकर बहुत सारी मूवीज के हिट गाने दिए अंटिल 70s। और उसके बाद राम यानी कि विजय पाटिल, ही डिड सोलो, वो सोलो बाद में चले।
4: जी, विजय पाटिल नाम है इनका। और ये एक्चुअली मैं आज 16 सितंबर को इनकी पैदाइश 1942 में हुई
7: थी। एक्चुअली ही वाज अ लक्ष्मण, नॉट राम। विजय वाज लक्ष्मण।
4: ओह, विजय वाज लक्ष्मण।
7: या
4: ओह। और इन्होंने एक्चुअली में काफ़ी ब्लॉकबस्टर्स के लिए म्यूजिक दिया है 1980s और 1990s में। एंड उनके लैंडमार्क कोलैबोरेशन रहे राजश्री प्रोडक्शंस के साथ, डायरेक्टर सूरज बारजातिया,
7: उनके साथ बहुत सारा काम किया है। वेल 1976 में सुरेंद्र ही पास्ड अवे व्हेन इन्होंने एजेंट विनोद, उस समय जो ओरिजिनल एजेंट विनोद है,
4: 1977 की ये मूवी थी
7: या उस समय पर जब साइन हुई थी। बट देन विजय कंटिन्यूड द कंपोजिशन विद द नेम राम लक्ष्मण।
4: इज वेरी कूल कि उन्होंने अपने दोस्त को कभी ऐसे भुलाया नहीं, उनको
7: अलग ही नहीं किया अपने से कभी।
4: ऑलवेज कंटिन्यूड विद द सेम थिंग। That's really cool.
7: और आज की जो प्लेलिस्ट आप सुनने वाले हैं, आपको फुल नॉस्टैल्जिया फील आने वाली है। यू नो आप ये म्यूजिक सुनोगे ना तो यू विल लाइक या दिस इज टिपिकल 90s का म्यूजिक जो अभी आप सुन रहे हैं। इसमें बहुत सारे एस पी बाला सुब्रमण्यम के गाने भी है, सो यू विल गेट दैट फील टुडे।
4: एंड सैंडी, आपके से भी बहुत ज्यादा ये क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि मैंने प्यार किया 1989 की जो मूवी है, जो सलमान खान की डेब्यू मूवी थी, उसका म्यूजिक भी राम लक्ष्मण ने किया था।
7: बहुत सारी सलमान खान की बहुत सारी मूवीज का म्यूजिक जो है राम लक्ष्मण ने किया है।
4: सूरज बारजातिया ना,
7: सूरज बारजातिया, बिकॉज़ ही वर्क्ड विद सूरज बारजातिया। तो बेसिकली सूरज बारजातिया की सारी मूवीज में इट्स राम लक्ष्मण।
4: तो चलो ये पहला गाना सुनते हैं जो एस पी बालासुब्रमण्यम एंड लता मंगेशकर ने गाया है।

0: Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. Jankariyon ke liye hum sunte rahein.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
5: वेलकम टू कबाब्स किचन. आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
6: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स.
5: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
6: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
5: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
6: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
7: Air New Zealand is on sale now at Flight Centre. Fly seat-only return to Sydney from 549 or Raro from 589 per person. Book in-store or online today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
8: 3, 2, 1, rush!
9: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush.
0: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
12: Are you ready to go home?
13: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of JWM Havel and Omura Jaiku.
14: आप सुन रहे हैं हम playing Bollywood's biggest hits. आज राम लक्ष्मण, जिनका वो screen name था actually में. वैसे तो ये आज जिनका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका नाम विजय पाटिल है, जिन्होंने मराठी मूवीज में बहुत गाने दिए 1980s में और 70s में.
15: या एंड 1978 में एक मराठी मूवी आई थी रुजबे, जिसका नाम था बोट लवीन तिथि. अगर मैं सही बोल रही हूँ ये सुनो ना तुम. बोट लवीन तिथि, गुड गुलिया. गुड गुलिया.
14: बोट लवीन तिथि, गुड गुलिया.
15: गुड गुलिया मतलब ऑलमोस्ट देयर ना.
14: समझ में आया क्या है?
15: नहीं,
14: मतलब जिधर उंगली करूंगा उधर आपको गुदगुली होगी.
15: ओके, या फाइन.
14: आपने बोला, मैंने
15: नहीं. की ये मूवी थी जिसमें वो गाना इन्होंने कंपोज किया था, ढाकाला लागली. सो उस समय उषा मंगेशकर ने इस गाने को गाया था, बाय द वे.
14: ओ वाओ,
15: या उषा मंगेशकर एंड दादा कोंडके.
14: ओह नाइस,
15: इन दोनों ने इस गाने को गाया था.
14: उसके बाद वो गाना इतनी बार रिक्रिएट हुआ है, मतलब उसका वो एक और रिक्रिएट जो 90s या 2000s में हुआ था, अर्ली 2000s
15: में. अर्ली 2000s में दैट अभी भी हुआ है. सो मेनी टाइम्स आई विल से.
14: या तो अभी हम एक रिक्रिएटेड गाना आपको सुना रहे हैं, बिकॉज़ वी कुडंट फाइंड द ओरिजिनल ट्रैक.
15: या उसका हमें वो नहीं मिला, अच्छा क्वालिटी नहीं मिला उसका.
14: या सो एनीवे, रिक्रिएटेड गाना एंजॉय कीजिए अभी के लिए, और फिर और भी बातें करेंगे. वैसे कम्युनिटी में जो इवेंट्स हो रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में.

0: You're listening to Trendmakers. आज ड्राइव शो में Trendmakers में हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं द म्यूजिक डायरेक्टर
1: राम लक्ष्मण
0: विजय पाटिल.
1: या विजय पाटिल को वैसे
0: लक्ष्मण है आउट ऑफ द राम लक्ष्मण डुओ. इनका नाम था, स्क्रीन नेम था राम लक्ष्मण. वेल एनीवे इनके बारे में तो हम और भी जानेंगे,
1: लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हम कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग 25 सितंबर को वैदिक सेंटर में होने वाली है पापटोए में. सो रिकॉर्डेड कलाकारों के कीर्तन आप रोवा पर बाद में हम फिजी कीर्तन संग्रह पे सुन पाएंगे. हम की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं आप ये सब कुछ अगर लाइव देखना चाहते हैं. एंट्री फ्री है. रिफ्रेशमेंट्स एंड कावा विल बी ऑन सेल. सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू विन द प्राइजेस एज वेल 25 सितंबर को वैदिक सेंटर में शाम को.
0: इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं काफ़ी जगहों पे. अगर आपको भी जाना है तो हेंडरसन में 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन आप जा सकते हैं, राम मंदिर, श्री राम मंदिर. उसके बाद नॉर्थ शोर भारतीय संगम, ये भी आपको इनवाइट कर रहे हैं गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस के लिए ऑन 19 सितंबर सुबह 11 बजे से टाकापुना वॉर मेमोरियल हॉल में. वेद प्रचार वीक होने वाला है 28 सितंबर से लेकर संडे 4 अक्टूबर एट 32 ग्लासगो एफ पापट टोईटोए. एंड 7 डे श्रीमद भगवत कथा ये हो रहा है अभी करंटली 7:30 बजे शाम से 9:30 बजे रात तक भारतीय मंदिर में, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं.
1: एंड राम लक्ष्मण के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो यू नो इन्होंने बहुत सारी हिट मूवीज तो दी है एंड काफ़ी सारे मल्टी इंस्ट्रूमेंटल लोगों के साथ भी इन्होंने काम किया. इनकी म्यूजिकल स्किल एक्चुअली थी पियानो एंड अकॉर्डियन इसके साथ अलॉन्ग विद अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल. इन्होंने अपना ऑर्केस्ट्रा भी शुरू किया था बिफोर बिकमिंग अ मेजर फिल्म कंपोजर. इनके ऑर्केस्ट्रा का नाम था अमर विजय.
0: उस जमाने में ऑर्केस्ट्रा होता था, बैंड नहीं होता था.
1: बैंड नहीं था, ऑर्केस्ट्रा होता था. तो खुद का ऑर्केस्ट्रा इन्होंने पहले शुरू किया था बट उसके बाद इनको मूवीज में अपॉर्चुनिटी मिली.

0: Live Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusby, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
1: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
3: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
4: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
5: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum. Hum, accurate traffic.
6: New tasty rise bars and bites in supermarkets.
7: Cloudy overnight with a low of 10 on the northern. It's slow heading south from Oniwa Road to the Harbour Bridge. Tard to Silverdale, half an hour at the moment. The northwestern a bit heavy heading west past Rosebank on the southern town to Manukau, 26 minutes to Drury, 36. It's heavy heading north from Ellerslie Panmure to Dilworth Ave. On the southwestern, we've got reports of a crash by Plunkett Ave heading towards the southern.
6: New tasty rise low carb protein bars and bites. Less carbs, better snacking.
8: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
9: Hello, officer. What's the problem? I mean, I might have been going a bit fast back there, but I know these roads like the back of my hand. I've been driving them for years. The folks who crash on these bends are like out-of-towners. That's not me. I'm a local.
10: Man, mid-40s. He's taken the corner too fast and slid off the road. Suspected head and spinal injuries. Ambo required. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
11: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
12: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
13: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
11: Ek sach jo pure system ko do hisson mein baant deta hai. A crime thriller inspired by true events. Daira, starring Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran.
14: Law ka ek framework hai DCP Kumar, jiske daire mein main kaam karti hu.
15: Aur main nahi karta.
11: Daira, releasing in cinemas on 18 September.
15: Wo cultural case hai, unki story over hai.
14: Kahan over? Abhi to shuruaat hai.
11: Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
16: Let's go! 3, 2, 1.
17: Trend Makers.
18: 104.2 FM or Rova app ke zariye sun sakte aap hume from anywhere in the world.
19: Yes, and aaj hum yahan pe check karne wale hain aapke saath. जो अभी हमने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी राम लक्ष्मण के बारे में. सो मैसेज करके बताइए 5599 पर कि मराठी मूवी का कौन सा गाना है जो बार बार रीटेक हुआ है, जो ओरिजिनल कंपोजिशन की है राम लक्ष्मण ने.
18: रीटेक नहीं, रीमेक हुआ है
19: सॉरी नॉट रीटेक,
18: रीमेक हुआ है आपको, हाँ. अच्छे से
19: या जो रीमेक हुआ है बहुत बार रिक्रिएट हुआ है एक्चुअली में, बट ओरिजिनल कंपोजिशन की है राम लक्ष्मण ने.
18: तो कौन से वो गाना है जिसके बारे में हमने आज शाम भर बात की है, आप 5599 पे यहाँ पे मैसेज करके हमें बता सकते हो. एंड जाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये बतानी है कि पहले तो हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक, और हम जा रहे हैं ईस्टर के टाइम पे, ईस्टर 2027. एंड इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको इसके बारे में और डिस्कशन करना है, कुछ बातें करनी है, कुछ सवाल पूछने हैं, तो हम एक चाय पे चर्चा लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन द 11th of October.
19: या सो 11th अक्टूबर जो कि संडे का दिन है, उसी दिन हम आपको मिलेंगे. तो आपको करना क्या है, आपको ड्राइव लेके भेजना है 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, जस्ट RSVP कीजिए.
18: आपको चाय पे मिलना है हमें,
19: या चाय पे मिलेगा.
18: शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है
19: शायद ट्रिप का ख्याल दिल में आया है,
18: इसीलिए सैंडी और रुज़बे तुम्हें चाय पे बुलाया है.
19: 100%
18: क्या भारी प्रोमो बन गया सैंडी. तो आप चाय पे जरूर मिलिएगा हमें, चर्चा करेंगे हम वहाँ पे, मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, एंड आपके लिए लाइव अनफिल्टर्ड ले आएंगे उस दिन.
19: बहुत कुछ ऐसा सोचा है हमने आपके लिए, तो आइएगा. सवाल आपके जो है आप पूछिए, अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है कि भाई आपको बाली बैंकों के लिए ट्रिप बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ आप समझना चाहते हैं इसके बारे में, पेमेंट स्टाइल समझना चाहते हैं, वो सब कुछ, देन वहाँ पर ज़रूर आइएगा.
18: और इसी के साथ साथ टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ बिग इवनिंग फॉर अस, क्योंकि कल 5:30 बजे के आसपास लगभग डेविड सिमर हमें यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, एक्ट पार्टी के लीडर, और वो बात करने वाले हैं, मतलब उनसे हम सवाल पूछने वाले हैं अबाउट द पॉलिसीज दैट दे आर रूटिंग फॉर राइट नाउ, दैट दे आर स्टैंडिंग फॉर, और क्या उनका एक्शन प्लान है इस इलेक्शंस में, क्यों उन्हें हमें वोट करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला लेने में हमें मदद होगी.
19: Yeah,
18: कल के क्वेश्चंस के बाद
19: हम कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट पार्टी लीडर्स को या फिर एटलीस्ट स्पोक्स पर्सन को यहाँ पे हम लेके आए. तो आपके कोई सवाल है अभी आप भेज सकते हैं 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ,
18: या फिर हमें आप ईमेल कर सकते हो unfilteredrive@gmail.com.
19: या फिर आप सैंडी से @mediaworks.co.nz पे इजी आई थिंक, या वो आप ईमेल कर सकते हैं, हमारे इंस्टा पे जाके मैसेज कर सकते हैं सैंडी सेखो पे या फिर Ruzbe_dabawa पे.
18: जी तो इसी के साथ थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए आज, एंड होप आपको मजा आया शो सुनकर, हमको जितना मजा आया आपके लिए लेकर मतलब लाने में जितना मजा आया उतना. एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. आज हम्प डे यहीं पे समाप्त होता है हमारा, कल मिलेंगे अब थर्सडे.
19: बाय
18: बाय.

पतंग संग उड़ गया बचपन, छनक छनक मन टगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसत मसके क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे।

0: बन अरे मथुरा के पेड़े रेवड़ी मेरठ वाली चाट तरीबा की लाएगा अरे मैं हुक्म करूं तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा
1: अरे लगवा।

0: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
1: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
0: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
2: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
3: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
4: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
3: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
5: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
6: Great news! Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
7: Discover more with Air New Zealand flights on sale now. Wherever you're going, enjoy a more Kiwi way to get there. Sales periods vary by destination. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or your preferred travel agent.
8: Online person, phone person, or I want to speak to a real person. MTF Finance gets it. You can apply online, give them a call, or visit one of their 55 local teams around New Zealand. And because MTF knows finance isn't one size fits all, they'll talk about it the way that works for you. However you'd like to talk about your next loan, MTF will meet you there. Search MTF Finance today. Lending criteria and checks, terms, conditions and fees apply. See mtf.co.nz/terms. You're gonna see.
9: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है, अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
10: लॉ का एक फ्रेमवर्क है DCP कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
11: और मैं नहीं करता।
9: दायरा, रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर।
11: वो कल्चरल केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
12: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
9: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC.
13: Check. Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00-00-10.
14: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Labour leader Chris Hipkins claims Nationals' plans to break up supermarket giant Foodstuffs is nothing more than pre-election hot air. The move to lower grocery prices would be put before an independent Commerce Commission assessment. A search will take place next week for an aircraft that vanished in 1978. Police say the operation will begin at the northern entrance to Lake Mauraki on the west coast on Monday. And winter's not done with us yet. State highways in the lower South Island are being hit by flooding and snow. Surface flooding has been reported in places across State Highways 96 and 99, as well as on State Highway 1 in central Dunedin. In sport, as we're getting into the NRL playoffs, you would expect the mind games to crank up. The Dolphins have come away from the win over the Warriors, pointing the finger at what they saw as escorts over a high kick or bomb. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And the Breakers have secured Tall Black and former NBA draft pick Mojave King as a nominated injury replacement for American import Josiah Jordan James.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
14: Night Cafe on Hum. Aapka moment, Krish ka magic, only on Hum.
17: हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो. आज 16 सितंबर है और नाइट कैफ़े लेकर मैं आ गया हूँ. एक और नाइट कैफ़े आज हमारे साथ थर्सडे तक ये चलता रहेगा फॉर दिस वीक. और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ साथ अलग अलग दिन पर अलग अलग चीज़ें मैं लेकर आता हूँ. मंडे को नो लॉजिक मंडे, ट्यूसडे को कोक स्टूडियो रिलोडेड, वेंसडे को आज आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं नाइट कैफ़े मिड वीक मसाला, जिसमें बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें आपके लिए. वेलकम एवरीवन.
14: थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी, Midweek Masala.
17: Welcome everyone to Night Cafe Midweek Masala.

क्रिश, बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि आज इंटरेस्टिंग खबरें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बॉलीवुड की दुनिया से, आपके फेवरेट स्टार्स के बारे में जानकारी, फिर फेवरेट फिल्मों पर जानकारी, आने वाले फिल्मों पर भी जानकारी। मिर्ज़ापुर का बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स क्या रहा इन द फर्स्ट वीक, इस पर जानकारी। बिपाशा बाजू ने ये अलर्ज किया है कि प्रोटीन पाउडर में कुछ अलग है, कुछ अद्भुत है, मैं आपको इस पर जानकारी दूंगा। शोभा दी ने क्रिटिसाइज किया है मिर्ज़ापुर द मूवी को, और तमन्ना और सिद्धार्थ की न्यू सॉन्ग छत पूजा, इस पर जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और रितेश देशमुख रिकॉल्स अ काइंड जेस्चर फ्रॉम पापाराजी यानी मीडिया से, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए। सुनते रहो मिडवीक मसाला।

नट कैफे मिड वीक मसाला जारी है. वेलकम टू द शो एवरीवन. एक के बाद एक गाने भी प्यारे और आपके लिए होंगे. बॉलीवुड की खबरें एक से एक बढ़कर जो मज़ेदार ताज़ा तरीन खबरें हैं वो लेकर आएंगे. बिपाशा बासु ने कहा है कि प्रोटीन पाउडर में वर्म्स आते हैं. ये एलिगेशन इन्होंने लगाया है. इन्होंने क्लेम किया कि शी फाउंड टाइनी वर्म्स इनसाइड ए न्यूली ओपन्ड जार ऑफ प्रोटीन पाउडर. इन्होंने इसका वीडियो भी शेयर किया है ऑफ द एलिज्ड कॉन्टेमिनेशन ऑन हर इंस्टाग्राम स्टोरीज. प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है एज इसोपीवा प्रोटीन पाउडर. और बिपाशा ने महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे को भी टैग किया है इन हर पोस्ट एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प. और इन्होंने डिस्क्राइब किया है एज हिम बीइंग देयर ओनली होप इन एड्रेसिंग द एलिज्ड फूड सेफ्टी इशू जो इन्होंने पाया है. शोभा डी के बारे में जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए.

0: Night Cafe Midweek Masala.
1: You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी मैं लेकर आता रहूंगा, बस आपको हमारा साथ देना है. लेकिन अभी बॉलीवुड न्यूज आपके लिए. शोभा डी ने क्रिटिसाइज किया मिर्जापुर द मूवी. ऑथर कॉलमनिस्ट शोभा डी ने कहा है कि मिर्जापुर द मूवी एक बहुत ही अच्छी फिल्म नहीं है. इन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिया है. शी फाउंड द फिल्म लैकिंग अ कंपेलिंग स्टोरी. इन्होंने कहा है कि मूवी का रन टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 3 hours and 17 minutes. और इन्होंने कहा है कि शी एक्चुअली फेल असलीप फॉर अराउंड 15 मिनट्स वाइल वॉचिंग इट. और इनका ब्लंट रिव्यू स्टेंस इन कॉन्ट्रास्ट टू द फिल्म स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस. काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि क्रिटिक्स बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं, फिल्म बेकार निकलता है, और बेकार रिव्यू देते हैं तो फिल्म बहुत अच्छा निकलता है. आई थिंक पब्लिसिटी काम कर जाती है, वर्ड ऑफ माउथ अप्रिसिएशन भी एक फिल्म के लिए बहुत ही बड़ा होता है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो मिडवीक मसाला.

0: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। बॉलीवुड की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहते हैं और आज स्पेशल सेगमेंट में 9 PM तक ये बॉलीवुड न्यूज़ का सेगमेंट होता है आपके लिए। द मेकर्स ऑफ वान रिलीज द डिवोशनल सॉन्ग ऑफ क्षति मैया और तमन्ना भाटी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म में नजर आए थे इन दिस म्यूजिक वीडियो। मैंने इनफैक्ट इसको देखा है, बहुत ही वंडरफुल पिक्चराइजेशन हुआ है। तमन्ना कैरेक्टर टर्न्स टू फेथ और छठ पूजा ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट पीरियड और ये सॉन्ग एक्सप्लोर करता है द इमोशनल और कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस्टिवल। वीडियो ख़त्म हुआ है विद एन एक्सीडेंट फॉलोड बाई वट अपीयर्स टू बी ए मिरेक्युलस इवेंट, तो आप ये ज़रूर देखें। इसका वीडियो रिलीज कर दिया गया है। क्रिश का साथ है, मिडवीक मसाला आपके लिए जारी रहेगा टिल 9 PM।
1: Midweek Masala.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नेट कैफे मिडवीक मसाला जारी है। बॉलीवुड खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहो। क्रिश का साथ है। पहला जो जानकारी है वो तो आपको बताया, लेकिन अभी जो और भी जानकारी है वो भी लेकर आते रहेंगे आपके लिए। मिर्ज़ापुर द मूवी अर्न्स 146 करोड़ इन इट्स फर्स्ट वीक। ये जो मूवी है इट्स कम्प्लीटेड इट्स फर्स्ट वीक इन द थिएटर्स। और पंकज त्रिपाठी लेट फिल्म है जिसका कलेक्शन अभी रहा है 146 करोड़ डोमेस्टिकली। और मूवी को सितंबर 4th को रिलीज किया था और इट कंटिन्यूज टू परफॉर्म स्ट्रॉन्गली एट द बॉक्स ऑफिस। फिल्म में पंकज त्रिपाठी है, आलिया फजल है, दिव्येंदु है, रशिका दुगल है और रवि किशन जैसे कलाकारों ने काम किया है। और फिल्म इज ए बिग स्क्रीन कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉपुलर अमेजॉन प्राइम वीडियो सीरीज जो अभी बड़े स्क्रीन पर ला दिया गया है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो मिडवीक मसाला।

0: Cafe on Hum.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो,
1: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Krish के साथ है, प्यारे प्यारे songs में आपके लिए लेकर आता रहूंगा. इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे. हुंकार trailer tackles abuse by powerful guru. ये trailer को release कर दिया गया है. हुंकार the roar, जिसमें अनित पड्डा और फतिमा साना शेख काम कर रहे हैं. और अनित plays मीनू, a young woman जिसको accuse किया गया है, accuses a powerful spiritual guru of abuse. और explore करता है ये story about how victims can face suspicion or judgment after speaking out. वहीं पर फतिमा साना शेख भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाती है अगेंस्ट द गुरुज पावरफुल नेटवर्क. इस फिल्म में रघुबीर यादव, मोहम्मद जीशान अयूब और अर्जुन माथुर और राम कपूर जैसे कलाकार भी काम कर रहे हैं. आज के लिए मिडवीक मसाला में बस इतना ही. अगले घंटे पर मिलते हैं.

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
2: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
3: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. Kuch aur samajik suchnaye aapke liye. Experience the divine wisdom of Shri Krishna with Brajras Rashik. Dr. Shri Krishna Kinkar ji, jo Shri Dham Vrindavan ke hai. Naam Sankirtan world record holder hai. Ye ek 7-day Srimad Bhagavat Katha host kar rahe hai from 14th to 20th September. 7:30 p.m. To 9:30 p.m. hoga Bharatiya Mandir, New Zealand, Sandringham mein. Journey from Vrindavan to Auckland through Shri Krishna's divine लीलेस, टाइमलेस विजडम और इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके साथ यहां पर शेयर किया जाएगा और सेलिब्रेटिंग द डिवाइन स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड 100 ईयर्स ऑफ पिचवाई. आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर जाकर यहां पर इस ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन में भाग ले पाएंगे. बहुत ही अलग अनुभव होगा सेलिब्रेशन ऑफ श्री कृष्णा राइट हियर इन ओकलैंड. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
6: Winger Motors है आपका home of cherry, जहां नया SUV लेना is easier than you think. Spring savings का पूरा फायदा उठाइए और Tiggo 4, Tiggo 4 Hybrid, Tiggo 7 Super Hybrid और Tiggo 8 Super Hybrid range पर $3,000 तक की छूट पाइए. T's and C's apply. Value, technology, safety और comfort. Cherry range है everyday driving के लिए smarter choice. Visit Winger Motors West Auckland, Green Lane और Pukekohe और winger.co.nz. Offer ends September 30th.
7: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. Altogether Auckland.
9: हैवान इंसान नहीं होता पर हर इंसान हैवान बन सकता है
10: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है बेवकूफ होना
9: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी
11: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम
10: ये आखिरी
9: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC

0: Coffee on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe जारी है. Fiji Kirtan recording. Fiji Kirtan को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद. अब हम Fiji Kirtan संग्रह ओकलैंड के कलाकारों की रिकॉर्डिंग करके आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए तैयार है. रिकॉर्डिंग फ्राइडे 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापाटोय में होगी. अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के लिए टेक्स्ट करें KR25599. ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिलेगा. लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं. याद रहे, रजिस्ट्रेशन डज नॉट कन्फर्म ए रिकॉर्डिंग स्पॉट. सिर्फ 20 आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी और हम रिकॉर्डिंग कन्फर्मेशन के लिए आपको कॉन्टेक्ट करेंगे. Registrations close on 13 September. Terms and conditions apply. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो Bollywood's biggest hits only on Hum.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You are listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ सामाजिक सूचना है आपके लिए. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है. ट्यूजडे 15 सितंबर से लेकर संडे 20 सितंबर के तक सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. और भी जानकारी के लिए आप 09836 4647 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. माँ प्रसाद हर एक दिन आपके लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: NZ PMI.
1: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: Time check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
3: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
4: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Ryan. The government's changing the way infrastructure for housing growth is paid for. It's going to let councils charge developers a levy for things like wastewater and roads. The Employers and Manufacturers Association is not impressed with National's latest election pledge. The party has promised to break up grocery giant Foodstuffs if re-elected to boost competition. The EMA says the move undermines the foundations of business. And winter's not done with us yet. In the Lower South Island, surface flooding has been reported in places across State Highways 96 and 99, as well as State Highway 1 in central Dunedin. There are road snowfall warnings in place across the Alpine passes. In sport, the Newcastle Knights are taking inspiration from the way State of Origin squads deal with the hostility of the crowd when playing away from home as they prepare for the Warriors at Eden Park on Sunday. Rugby League with Machinery House in a league of their own. And the Breakers have secured Tall Black and former NBA draft pick Mojave King as a nominated injury replacement for American import Josiah Jordan James.
5: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
6: You're humming along with Krish on your number one. Hum playing Bollywood's biggest hits. Kuch na kuch alag hum par hota hai. Trend makers ke baare mein aapne suna hoga. About this musical podcast. Ye ek power-packed musical journey hai jahan par har gana curate kiya gaya hai around a unique theme in Drive Show with Sandy and Rizbe. From genres jo eras ko define karta hai to tributes celebrating legends of Bollywood. Chahe wo iconic singers ho, visionary composers ho, poetic lyricists ho, ya phir unforgettable actors ho. Har ek episode mein ek story aapko milega aur wo bhi through sangeet music. अगर ये जो एक और जो एपिसोड आप सुनना चाहेंगे ये इसमें अगर आप एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए सिर्फ जा रहे हैं यू आर कवर्ड क्योंकि स्पेशली क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है टू सेट द मूड कीप द एनर्जी अप और एवरी किलोमीटर ऑफ योर जर्नी काफ़ी एंजॉयबल बन सकता है चाहे आप सनसेट्स को चेस कर रहे हो या हाईवेज क्रूज कर रहे हो या फिर सिटी ट्रैफिक में स्टक हो द मिक्स जो होंगे इस गानों का इट विल बी परफेक्ट ट्रेवल कंपेनियन ऑन द रोड लिसन करने के लिए टेक्स्ट करें TM 5599 पर और या सर्च करें ट्रेंड मेकर्स ऑन रोवा ओनली मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai Rova. Agar aapne abhi tak download nahi kiya hai, to zarur kijiyega. Rova ko use karne mein bahut fayde hain. Aapko pata hai, bahut sare competitions bhi Rova ke zariye hote hain. Hamare Music Plus stations bhi aap Rova par sun payenge. Hum Rewind ho, Hum 80s Jukebox ho, Fiji Bhajans ho ya Chardi Kala Punjabi hits ho, Fiji Kirtan Sangra ho ya phir Rahat Fateh Ali Khan ke Sufi aur Qawwali songs ka ek bahut hi pyara list ho. तो ये सभी कुछ आपको रोवा पर ही मिलेंगे. तो रोवा पर पॉडकास्ट का भी एक्सेस आपको मिल सकता है. तो इस तरह से आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं. कॉम्पिटिशन्स और प्राइजेज जीतने के लिए भी रोवा बहुत ही फ़ायदेमंद है. तो आज ही डाउनलोड करें आपके फ़ायदे के लिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम. नाइट कैफे जारी है एंड इट विल बी फॉर यू अंटिल मिडनाइट. मैं क्रिश आपके साथ देता रहूँगा.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz। In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. As a business owner, what do you do when customers won't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that the Indian community values trust, relationships, respect, and keeping their word. With 20 years of debt recovery experience, they use respectful follow-up and mediation to recover your B2B debts. Want your invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
4: Night Cafe. You're listening to number one. Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ podcasts पर जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि interesting topics पर हमारे धुरंधर announcers बात करते हैं, guests आते हैं और interesting खबरों पर, मुद्दों पर बातें होती है। तो breakfast catch up में डॉक्टर परमजीत परमार को आप सुन पाएंगे, immigration spokesperson for the ACT party। ये विजय और पूजा से बात करेंगे to break down the party's newly proposed immigration policy। Discuss होंगे the plan to introduce a physical presence requirement for permanent residents, जिसमें 2 साल ऑफ रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट होगी विद इन एवरी रोलिंग 5 ईयर पीरियड। और की क्वेश्चंस जैसे करंट पीआर होल्डर्स एक्सेप्शंस और कीपिंग न्यूजीलैंड इमिग्रेशन सिस्टम फेयर एंड बैलेंस्ड, ये भी बातें होंगी। तो ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए आप बीएफ टेक्स्ट करें 5599 पर फॉर द फुल ऑडियो। कुछ और भी पॉडकास्ट पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: का मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Unfiltered Drive सुनना ना भूले. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातें हो रही है, जैसे कि इफ़ यू डाइड टुमारो तो आपके पैसों का, आपके घर का, कीवी सेवा, ज्वेलरी और बिजनेस का क्या होगा. काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसका आंसर काफ़ी ऑब्वियस है. ये चीज़ें आपके पार्टनर, आपके बच्चों या आपके फैमिली के पास जा सकता है. बट वट इफ़ दैट्स नॉट एक्चुअली हाउ इट वर्क्स. इन न्यूजीलैंड अगर आप विल के बगैर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका एस्टेट विल बी सब्जेक्ट टू इंटेस्टेसी लॉज और आउटकम में नॉट बी what you expect. क्योंकि जो एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ड्राइव विद सैंडी और रिज़बे होने जा रहा है, इसमें अनकंफर्टेबल, ऑफ्टन अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट ऑफ विल्स, एस्टेट्स और व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डाई, इस पर बातें होगी और सम ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस को अनकवर किया जाएगा अराउंड इनहेरिटेंस और एस्टेट प्लानिंग. तो इसमें तानिया पिंटो, सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट है, इनसे बातें होगी. Who will break down what happens when someone dies without a will, और उनके assets के लिए कौन entitled रहेंगे, और why having a partner doesn't necessarily mean कि automatically उनको सब कुछ मिल जाएगा, और क्या होता है अगर family disagree होते हैं about an estate. Drive text करें 5599 पर for full audio, या फिर unfiltered with Sandy or Rizbe text search करें on Rover and Spotify for the podcast. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Cafe on Hum. Driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuka and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuka and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
6: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है. अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. दायरा स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन.
7: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ.
8: और मैं नहीं करता.
6: दायरा रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर.
8: ओपन शट केस है, उनकी स्टोरी ओवर है.
9: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है.
6: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग टीबीसी.

0: Murphy on Hum. आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Unfiltered Dry सुनना ना भूले. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातें हो रही है, जैसे कि इफ यू डाइड टुमारो तो आपके पैसों का, आपके घर का, कीवी सेवा, ज्वेलरी और बिजनेस का क्या होगा. काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसका आंसर काफ़ी ऑब्वियस है, ये चीज़ें आपके पार्टनर, आपके बच्चों या आपके फैमिली के पास जा सकता है. बट वट इफ़ दैट्स नॉट एक्चुअली हाउ इट वर्क्स. इन न्यूजीलैंड अगर आप विल के बगैर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका एस्टेट विल बी सब्जेक्ट टू इंटेस्टेसी लॉज और आउटकम मे नॉट बी what you expect. क्योंकि जो एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ड्राइव विद सैंडी और रिज़बे होने जा रहा है, इसमें अनकंफर्टेबल, ऑफ्टन अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट ऑफ विल्स, एस्टेट्स और व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डाई, इस पर बातें होगी और सम ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस को अनकवर किया जाएगा अराउंड इनहेरिटेंस और एस्टेट प्लानिंग. तो इसमें तानिया पिंटो सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट है, इनसे बातें होगी. Who will break down what happens when someone dies without a will, और उनके assets के लिए कौन entitled रहेंगे, और why having a partner doesn't necessarily mean कि automatically उनको सब कुछ मिल जाएगा, और क्या होता है अगर family disagree होते हैं about an estate. Drive text करें 5599 पर for full audio, या फिर unfiltered with Sandy or Rizbe text search करें on Rover and Spotify for the podcast. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Night Cafe on Hum.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manuko.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. Professional financials hai saath aapke. Loan or insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect.
0: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
1: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
0: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
9: Indelible Homes, your building expert.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
13: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब मुलाकात होती है कल, आ जाएंगे थर्सडे नाइट को आपका साथ देने के लिए. अपना बहुत ही ख्याल रखें. क्रिश का बहुत सारा प्यार. नमस्ते.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रोसिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रोसिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. हर eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
7: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
8: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
7: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
8: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
7: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
8: 100% authentic and pure as mother's love.
9: Night flight on.

0: your family's covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HERA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
1: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
2: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है. अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. दायरा स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन.
3: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ.
4: और मैं नहीं करता.
2: दायरा रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर.
4: उनकी स्टोरी ओवर है.
5: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है.
2: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग टीबीसी.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
7: Night Flight.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोगांव में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट। नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा क्यूज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलोगांव। हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ। बोली बस मेरा फोकस है।
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह
4: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
7: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. As a business owner, what do you do when customers won't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that the Indian community values trust, relationships, respect, and keeping their word. With 20 years of debt recovery experience, they use respectful follow-up and mediation to recover your B2B debts. Want your invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment fee.

0: एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल। बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
2: आई वाज टोटली वर्थ इट।
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: Go on, Chunky. Now it's your turn. Go on, get up. Tell us.
1: Yeah, sing.
2: हाँ, please बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूँ.
3: आगे.

0: मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नियत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाओ!
0: लिपट गई आके नशे में,

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हे जरे झटपट पर उलट पलट नटखट जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा
3: ए छोरा

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
3: MediaWorks complaints. How can I help?
4: Yeah. Hello.
3: Hi.
4: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
3: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
4: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
3: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
4: Great. Sing it to me.
5: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
6: Bollywood ka asli blockbuster. Playing Bollywood's biggest hits.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: It's normal to feel low sometimes, just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
0: Night Flying.

0: Mega Finance and Spindle Home, Zeal Group, Perfect Panel Beaters and Paint Limited, Port Poles Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
2: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
3: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
2: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
4: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
5: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है. A crime thriller inspired by true events. Daira, starring Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran.
6: Law का एक framework है DCP Kumar, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ.
7: और मैं नहीं करता.
5: Daira, releasing in cinemas on 18 September.
7: वो cultural case है, उनकी story over है.
6: कहाँ over? अभी तो शुरुआत है.
5: Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई branch नहीं है.

हैंडल्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई ले

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuko and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
2: तो क्या करें?
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.

0: का कुछ अलग इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये सारी चीजों के लिए अब तैयार रहेगा। शुरुआत तो खैर हमारे साथ होगी विद ब्रेकफास्ट कैचअप, जहां पर हम करते हैं कैचअप खबरों के साथ, दुनिया भर में क्या हो रहा है, यू नो पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, और इसके अलावा ऑल दी अपडेट्स दैट वी कैन गेट यू फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपके लिए जाननी जरूरी हो, प्लस इंटरटेनमेंट भी बरकरार रखते हैं और साथ ही साथ आपके लिए सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रखते हैं ताकि आपके साथ इंटरेक्शन भी बना रहे। सो
1: बस उम्मीद यही है कि आप हमारा साथ जो है ये देने के लिए तैयार रहेंगे, और इस दौरान जो कुछ खबरें हैं, जरूरी बातें हैं, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ हम आपकी खातिर लेकर आएंगे।
0: तो तैयार रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 104.2 FM या रोवा ऐप के जरिए अगर आप हमारे साथ का मजा उठा रहे हैं तो शुक्रिया आपके साथ और समय के लिए।

0: Sunny Side Up.
1: You know, आज की सनी साइड अप स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम. कभी कभी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो सिचुएशंस होते हैं जिससे हमको खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं हम उनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं और हमारा फोकस मेनली हो जाता है ऑन बिग थिंग्स. जैसे कि अगर आपने घर ली हो तभी खुशी होना ज़रूरी है. जैसे कि आपने एक नई गाड़ी ली हो, आपकी ड्रीम कार, तभी खुशी होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं होता ना
2: जी.
1: Because if you experience these small moments in life of happiness, तभी आप अपनी life को fully जी रहे हैं. और ऐसा ही एक exhibition जो है on the 14th of September, ये Tokyo, Japan में हुआ. इस exhibition में पहुँचे Steve Ma, ये इनका Instagram ID है. और Steve ने इस exhibition में जाने के बाद इन्होंने पूरा का पूरा video जो है ये तैयार किया. Surprisingly, Tokyo, Japan में ये जो exhibition है ये 1st of July से लेकर 30th of September तक चला. And it lasts, एक admission lasts around 30 minutes before ये admission close होता है and the next one starts on. So, the interesting thing about this exhibition is कि इसका नाम है Micro Relatable Exhibition. That's way too small. छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में, सिचुएशंस जो आप फेस करते हैं, जो आपको हैप्पीनेस देती है, वो यहाँ पर ये रिक्रिएट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर कुछ दरवाजे हैं. दरवाज़ों के बाहर जापानीज़ भाषा में लिखी हुई है कि सपोज़ जब आप घर से निकले हैं और आपने दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया, बट यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट एंड आपको वो डर था कि कहीं आपने दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ दिया. यू कम बैक होम एंड यू फाइंड द डोर वाज लॉक्ड, क्योंकि आप दरवाज़ा जब खोलने की कोशिश कर रहे हो इट्स लॉक्ड.
2: कभी कभी स्टोव का होता ना कि आपको लगता है अरे क्या मैंने स्विच ऑफ किया, आयरन लाइक दैट.
1: हाँ, एंड व्हेन यू कम बैक एंड यू रियलाइज कि आपने किया था, तो आपको खुशी होती है कि नहीं कि हाँ मैंने किया था. सो ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया गया, एक दरवाज़ा जो लॉक्ड है और उस पर साइन पर लिखा हुआ है कि ऐसा होता है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं वी थिंक अबाउट इट कि दरवाज़ा लॉक किया नहीं किया, एंड वंस वी कम बैक होम एंड वी फाइंड कि दरवाज़ा लॉक्ड था, तो वो एक ऐसी खुशी है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो उस सिचुएशन को वहाँ पर रिक्रिएट किया. फिर थोड़ा और आगे गए तो एक और एक दरवाज़ा इन्होंने पाया और ये कहा कि जैसे आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने जाते हो एंड जस्ट बिफोर आप अंदर जा रहे हो इस्तेमाल करने के लिए, यू सी द क्लीनर वॉकिंग आउट. इसका मतलब कि क्लीनर अभी साफ कर कर निकले हैं ना. तो आप जैसे ही उन्होंने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, जैसे ही उन्होंने डोर ओपन किया, अंदर से क्लीनर जो है ये आई विद द क्लीनिंग इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग एंड शी वॉक्ड पास्ट हिम ग्रीट करते हुए उनको. और इट्स लाइक अ होल टॉयलेट सेटअप, उनको यूज नहीं करना था. इट्स जस्ट दैट मोमेंट क्रिएट किया है वहां पर उस एग्जीबिशन में. फिर एक और एक दरवाजे के बाहर वो जाकर खड़े हुए, उस दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था कि नॉर्मली शायद आप के लाइफ में एक ऐसा बच्चा है आपका जो आपकी बातें नहीं सुनता और कहीं ना कहीं हर चीज उनको बोलने के लिए, कराने के लिए आपको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है एंड यू रियली वरी और स्ट्रेस कि उनका भविष्य क्या होगा अगर वो ऐसे ही रहेंगे एंड स्टफ लाइक दैट. एंड ऑल ऑफ अ सडन यू कम होम एंड यू सी कि आपका बेटा बैठे बैठे पढ़ाई कर रहा है, लाइक रियली वर्किंग हार्ड. तो वो जैसे इन्होंने वो दरवाजा खोला, अंदर एक कमरे का सेटअप जहां पर एक लड़का बैठकर पढ़ रहा था. सो देन मोमेंट उन्होंने इस एग्जीबिशन में क्रिएट किया, यू नो, लाइव सिचुएशन ये बनाए. और हर दरवाजे के बाहर उन्होंने लिखा कि दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिनेरियो. तो जब आप पढ़ रहे हो, यू आर लिविंग इन दैट सिचुएशन, यू आर लिविंग इन दैट सिनेरियो.
2: कभी कभी खुश होना भूल जाते हैं.
1: एग्जैक्टली, लाइक दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपकी लाइफ में आपको खुशी देता है वो हम भूल जाते हैं. एंड इस एग्जीबिशन में लोगों को वही एक्सपीरियंस करने का मौका मिला.
2: तो इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स गुड. अभी आई एम नॉट रियली श्योर यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता तो कितने लोग जाएंगे एग्जीबिशन में इस तरह के, क्योंकि आई डोंट नो खुशी को हम इवेलुएट कैसे करते हैं कि हमारे लिए खुशी क्या है.
1: एग्जैक्टली, यू नो दैट्स द डील, दैट्स व्हाट आई सेड कि हम शायद तभी खुश होते हैं
2: जब कुछ बड़ा
1: कुछ होता बड़ा है. होता है कोई बड़ी अचीवमेंट हम हासिल करते हैं, बट व्हाट अबाउट द फैक्ट कि लाइफ में एवरी डे सिचुएशंस में जो छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उसको हम रिकॉग्नाइज करना या अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. एंड ऑन द सेम नोट, आज चलिए सुबह सुबह आप हमें ये बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई एक छोटी सी चीज़ अभी हुई है सुबह से व्हेन यू हैव वोकन अप and that has given you happiness, like जब से आप जागे हैं till अभी तक जब तक आप हमें सुन रहे हैं, उस दौरान कोई एक ऐसी जैसी छोटी सी चीज हमने भी explain की है, वैसी कोई छोटी चीज हुई है and you felt happy.
2: मेरे
1: जी मुझसे मैं आपसे पूछ रही हूँ,
2: Last night I felt I may not be able to go to it today. This morning when I woke up, I said, "Acha nahi, I think I can."
1: Interesting. Mere liye, I would say, when I woke up late today. And when I woke up late, I was a little panicked, stressed, ki, what if I'm not able to get ready on time? So I did everything, and when I got out of the house, I realized that I've got enough time to reach work. So that made me feel good. So it's like a small thing. देर हो जाती तो स्मॉल चीज नहीं होती बट इट वॉज अ स्मॉल थिंग दैट मेड मी हैप्पी दिस मॉर्निंग सो ऐसे ही अगर आपने भी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है आज सुबह एवर सिंस यू वोकन अप टिल अभी तक आप जब हमें मैंने ये सवाल पूछा जब तक आप सुन रहे थे कोई एक ऐसी छोटी चीज़ के बारे में बताइए हमें दैट यू फील हैज़ गिवन यू हैप्पीनेस दिस मॉर्निंग आप अपने नाम के साथ अपना मैसेज हमारे पास 55999% कीजिए थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि आप में से कितने लोगों ने हमें मैसेजेस सेंड किए हैं
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, dekho maa gaye.
0: Ladies and gentlemen,
4: unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect, polished Instagram friendly stories hain, aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw, emotions hote hain real, aur conversations hote hain bina mask ke.
5: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
4: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
6: Discover the magic at Go Bananas Child. जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन ये हमेशा आपके पास है गो बनाना चाइल्ड केयर 12th बर्थडे ऑफर 6 मंथ्स कंप्लीटली फ्री एंड द फॉलोइंग 6 मंथ्स 50% ऑफ ऑन फीस फॉर ऑल एजेस ऑफर एंड्स 30th सितंबर लिमिटेड स्पेसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड तो जल्दी ज्वाइन करो और एंजॉय करो स्पेशल ऑफर्स कॉल 0800 46 26 26 26 टुडे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
8: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में 3.0

0: vehicle warranty. More ways to save at Winger Motors East Auckland, North Shore and Pukekui or winger.co.nz. On now till 30th September. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
2: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
4: Global Headlines.
5: सुबह के मुख्य समाचारों में गाजा सिटी के रिमल नेबरहुड में एक वो डैमेज्ड सिक्स स्टोरी बिल्डिंग के गिरने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है जिसमें 11 बच्चे शामिल हैं। अल शिफा अस्पताल और सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक बिल्डिंग के मलबे तले लगभग 100 लोग अभी भी लापता हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बिल्डिंग वो के शुरुआत में इजरायली एयर स्ट्राइक से डैमेज हुई थी जिसमें कई फैमिलीज रह रही थी और वेंसडे सुबह ये ट्रेजिक हादसा हो गया। भारत में रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2000 रुपीज से ऊपर के कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर लगे नए एमडीआर चार्जेस पर चिंता जताई है जिससे इंडिया के फिर से कैश इकोनॉमी बनने का खतरा है। एसोसिएशन के सीईओ कुमार राजगोपालन के मुताबिक कम मार्जिन पर काम करने वाले छोटे मोटे मर्चेंट्स अब यूपीआई पेमेंट्स करने के बजाय कैश को प्राथमिकता दे सकते हैं। एनपीसीआई ने सफाई दी है कि नॉर्मल कंज्यूमर्स और 1 लाख रुपीस मंथली तक रेवेन्यू वाले स्मॉल मर्चेंट्स के लिए यूपीआई बिल्कुल फ्री रहेगा जबकि 2000 से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर 0.4% का एमडीआर लगेगा। फिजी की कोलिशन सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस पर नवंबर और मिड दिसंबर के बीच रेफरेंडम कराने का प्रस्ताव दिया है ताकि नया कॉन्स्टिट्यूशन 24 दिसंबर तक लागू हो सके। कैबिनेट ने रिपोर्ट को ट्यूसडे को पार्लियामेंट में सब टेबल करने को मंजूरी दे दी है लेकिन स्पष्ट किया है कि सभी रिकमेंडेशंस को अभी स्वीकार नहीं किया गया है और सब कमेटी इस पर फर्दर विचार करेगी। 2013 कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के बाद पब्लिक रेफरेंडम जरूरी होगा जिसके लिए नेशनल रेफरेंडम बिल का पास होना अभी बाकी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपकमिंग होम ओडीआई सीरीज के लिए इंडियन क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान हो गया है जिसमें शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। सीनियर स्टार प्लेयर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओडीआई टीम में वापसी हुई है जबकि केएल राहुल को वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी मिली है। सेलेक्टर्स ने 15 मेंबर टीम में ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया है जबकि ऋषभ पंत को स्क्वाड से बाहर रखा गया है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: Hollywood's most wanted.
6: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
7: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और बॉलीवुड में भी तमाम चीज़ें हो रही हैं जिसकी जानकारियां हम आपको बारी बारी से इस प्रोग्राम में देते रहते हैं। और अभी अगर देखें तो भारतीय सरकार ने जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसको लेकर कुछ चेंजेस किए हैं और ये इमीडिएटली असर में भी आ गया है। बॉलीवुड हंगामा की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में पढ़ रहा था जहाँ पर इसके बारे में जानकारियां जो है ये पब्लिक की गई हैं। और सबसे पहले अगर देखें तो कई लोग जिनको इस बोर्ड में शामिल किया गया है उनमें अगर लिस्ट की ओर देखें तो सबसे पहले सुनील शेट्टी का नाम जो है ये आया है और उसके अलावा कई अन्य जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी इस सर्टिफिकेशन बोर्ड में शामिल किया गया है। प्रीति जिंटा ये भी हैं इस बोर्ड में और उसके अलावा एक्ट्रेस की ओर अगर देखें तो इनमें प्रीति जिंटा, साथ में पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी, फिल्म मेकर प्रिया दर्शन, म्यूजिशियन रिकी केज, हंसराज हंस, फिल्म मेकर नीला मधाब पांडा और एक्टर डायरेक्टर रूपाली गंगुली भी शामिल हैं। और सीबीएफसी जो है ये सिनेमाटोग्राफ एक्ट और सिनेमाटोग्राफ रूल्स 2024 के तहत अपना काम जो है ये करना जारी रखेगा।
1: Accurate traffic.
2: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
3: Cloudy all day, rain from the afternoon, but a warmer high of 19. Into the city, Northern Motorway, 18 minutes, Constellation Drive to town, 32 from Silverdale, slowing at Silverdale and a slow patch, Constellation to Milford. Northwestern, slowing down close to the city, building overall, 20 minutes, Massey to the city. Southern, 22 and from Monaco, slow patch, Papakura to Papatoetoe, Southwestern, fine.
2: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
8: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
10: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुगाव में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुगाव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
11: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
12: मुझे भी।
11: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
13: Business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. As a business owner, what do you do when customers won't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that the Indian community values trust, relationships, respect, and keeping their word. With 20 years of debt recovery experience, they use respectful follow-up and mediation to recover your B2B debts. Want your invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi.
14: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
15: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
16: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा,
17: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको। स्प्रिंग सेल ऑन नाउ, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, टीज़ एंड सीज़ अप्लाई ओनली एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको।
6: गुड मॉर्निंग के कई मैसेजेस हमारे पास बाय द वे आए हैं और आप सब ने हमें सुबह सुबह याद करते हुए अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजे, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच. सबसे पहले आज मिस्टर माडामाटा, इन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग राम, जय साई राम एवरी वन, हैप्पी थर्सडे. गुड मॉर्निंग ऑल. राज जो कि आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट के लिए ड्राइविंग का काम करते हैं, ये फिलहाल प्रोग्राम इन्जॉय कर रहे हैं. और इसके साथ साथ सलू फ्रॉम गल्फ हवा फंगपुरुआ, यहाँ से इन्होंने अपना मैसेज भेजा है. किसी और ने मैसेज किया है, इन्होंने कहा जय शिव शंभू विजय भाई एंड पूजा जी, हैव अ ब्लेस्ड डे, पर नाम नहीं लिखा इन्होंने अपना, तो नहीं पता है कि ये एक्चुअली कौन है. हैप्पी थर्सडे, जय साई राम, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, साई ब्लेस ऑल. ये हमारे पास आज सुबह सुबह बॉबी मान जी ने भेजा है. थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस और साथ के लिए.
0: और अभी देखने का वक्त है कि आज 17th ऑफ सितंबर क्या कुछ जमा किया जा रहा है, क्या स्पेशल है. आज कई चीज़ें सेलिब्रेट की जा रही हैं और इनमें अगर देखा जाए तो आज मोंटे क्रिस्टो डे ये मार्क किया जा रहा है.
6: क्या
0: मोंटे क्रिस्टो डे?
6: मोंटे क्रिस्टो डे,
0: हाँ,
6: ये क्या होता है?
0: ये एक क्लब सैंडविच है दैट इज डिप्ड इन फ्रेंच टोस्ट बैटर एंड क्रिस्प टू परफेक्शन.
6: मतलब क्लब सैंडविच को फ्रेंच टोस्ट के बैटर में डालकर फ्राई किया जाता है.
0: हाँ. लुक्स वेरी डिलीशियस. उसके अलावा आज ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप डे है.
6: ओके.
0: तो जो लोग ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं वो आज के दिन को मार्क करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. रेस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप डे है आज. वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये भी आज मार्क किया जा रहा है. एंड इट्स इंटरनेशनल कंट्री म्यूजिक डे, ये आज मार्क किया जा रहा है. बर्थडे की ओर देखें तो आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनका जन्म आज के दिन हुआ था.
6: ओके. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग. और वैसे अगर आज आपका भी बर्थडे है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज 5599 पर अपने मैसेजेस आपको सेंड करने होंगे हमारे पास. एंड मेक श्योर आप ये अगले घंटे से पहले कर दें, बिकॉज अगले घंटे ही हम आपको विश करेंगे. सो वी लव कि आप मिस आउट ना हो ना. इफ यू ओ समवन यू नो जो आज अपना बर्थडे या अपने वेडिंग एनिवर्सरी अपना बेसिकली स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप हमारे पास अपने मैसेजेस जरूर सेंड कर सकते हैं. चलिए आज हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे गेस्ट करने की बारी जो है आपकी ये आई है. कौन सी फिल्म है आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे? आई एम 100% श्योर आप नहीं बता पाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी फिल्म है. बट बाकी में से जितने भी लोग शायद सुन रहे हैं उनमें से कोई ना कोई आज ये फिल्म गेस्ट जरूर कर सकते हैं, बिकॉज दिस वॉज लाइक वन ऑफ दोज पॉपुलर मूवीज, सो इट कैन नॉट गो अननोटिस्ड. डेफिनेटली जिन लोगों को ये फिल्म पता है, जिन्होंने देखी हुई है, उनको जरूर आइडिया रहेगा कि कौन सी फिल्म के बारे में बोल रहे हैं. सो आज आपको बताना है कौन सी फिल्म है ये. एक लड़का है जो अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान है और वो इतना परेशान हो गया कि अब उसने ये फैसला किया कि हर बार जब वो कहीं ट्रेवल करने जाएगा तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बनाएगा लोगों के लिए.
0: okay.
6: जिनसे वो उस जर्नी में मिलेगा. और ऐसे ही वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की के साथ जो उसके इस कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी से प्यार करने लगती है.
0: अच्छा,
6: तो कौन सी फिल्म है ये आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि ये कौन सी फिल्म है तो हमारे पास अपने मैसेजेस आप जल्दी से सेंड कीजिए BF लिखकर सबसे पहले ऑन 5599 अपने अपने नामों के साथ. आज आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म है जिसमें एक लड़का है जो अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान है और वो इतना परेशान हो गया कि उसने फैसला किया कि हर बार अब जब वो कहीं ट्रेवल करने जाएगा तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी जो है लोगों के लिए बनाएगा. और ऐसी ही एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी उनकी जो है उससे एक लड़की को प्यार हो जाता है जो इनसे इस इनके एक ट्रिप के दौरान मिलती है. तो कौन सी फिल्म है आपको जवाब देने के लिए हम दे रहे हैं अराउंड 5 मिनट्स का टाइम. एंड टाइम starts now.
8: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Traffic. Briscoe's 25k birthday giveaway.
2: Cloudy with rain in the afternoon, got a high of 19 today. Starting to slow on motorways, coming in on the southern, 25 minutes Monaco to the city, 45 from Drury, slow Papakura to Papatoetoe and Penrose to Mount Wellington. Northwestern, 24 minutes in from Massey now, slow at Tangaratu, Pātiki and then St Luke's to the city, little heavy at St Luke's. Northern 18 from Constellation, slow at Silverdale, Constellation and Esmond.
1: Briscoe's club members could win 25k cash. T's and C's apply.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
4: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोगांव में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोगांव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale

0: Do you buy 0800 Rachna? Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलिए बारी है आज की हमारी पहली थ्रोबैक की जो आपके लिए हम लेकर आएंगे. लेकिन बिफोर यू प्ले द थ्रोबैक हमने जो सवाल पूछा है मुझे लगा था कि इजी है और पीपल विड बी एबल टू गिव द राइट आंसर्स लाइक वेरी इजीली. लेकिन आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि गलत जवाब ज़्यादा आज हमारे पास आए हैं. रोनल ने अपना आंसर भेजा है, साथ में क्रिश नायडू स्वानसन से इनका मैसेज आया है, नितिका ने जवाब भेजा है, ताकिनिनी से हमारे पास अर्पना इन्होंने टेक्स्ट किया है, मेघना ने मैसेज कहा भेजा है मतलब कहा है मतलब मैसेज भेजा है. इन्होंने जवाब तो दिया, साथ में कहा यू गाइस आर अमेजिंग एंड बेस्ट आरजेस फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, यू मेक आवर मॉर्निंग मोर फन. थैंक यू सो मच मेघना आपके मैसेज के लिए. यू डोंट रियली नो कि आपका ये एक मैसेज हमारे लिए कितना मोटिवेटिंग हो जाता है ना.
2: या मेरे लिए तो बहुत है आज के दिन.
1: ऐसे कोई आपकी तारीफ कर दे दो हम ऐसे थोड़ा मॉडेस्ट हो जाते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है. बट जब कोई आपकी तारीफ करता है आपको अच्छा बहुत लगता है. इट्स अ फैक्ट. एंड ऐसे जब आप हमें अप्रिशिएट करते हैं मुझे तो जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है. कोमल ने अपना मैसेज भेजा है, इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, होप यू गाइस हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड. वैसे कोमल ने भी जवाब जो है ये हमारे पास टेक्स्ट किया है. इसके अलावा हमारे पास प्रीति आपका मैसेज जो है ये आया है, साथ में हाँ हमारे पास काजल आपने भी टेक्स्ट किया है, सोनम है, शायल है, शनील है, आप सबके मैसेजेस जो है ये हमारे पास आए हैं. तो आप सब में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे पास अलग अलग आंसर्स भेजे हैं, जैसे जब वी मेट, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और राजा बाबू. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज वन पर्टिकुलर आंसर जो आप में से ज़्यादातर लोगों ने भेजे हैं. जैसे राहुल का भी यही आंसर है, कृष्णी ने भी यही टेक्स्ट किया है और साथ में हमारे पास शिव का भी यही मैसेज आया है. सो इट्स नॉट दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओ जब वी मेट या फिर राजा बाबू.
2: और आज बड़े सालों बाद किसी का मैसेज मेरे फोन पे आया है.
1: आज किसका?
2: सुनील गोयल, ये नाम याद है?
1: याद है.
2: जब मैंने मैसेज देखा मैंने देखा आखिरी बार इन्होंने कब मुझे मैसेज किया था, दैट वाज अराउंड 4 years ago. लगता है आज सुबह सुबह बड़े सालों बाद प्रोग्राम सुन रहे हैं.
1: या पॉसिबली, बट ये हमारे साथ जुड़े थे एज अ एडवर्टाइजर, फिर उसके बाद में हमारे साथ ये एज अ लिसनर भी बने रहे. सो अच्छा लगा जिनका नाम सुन कर सुबह सुबह. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सुनील जी.
2: एंड अभी तो 9 मिनट रह गए हैं, आप फिर से वो बता दो.
1: हाँ मैं फिर से बता दूँ कि अगर ये दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं है तो ये कौन सी फिल्म है जिसमें एक लड़का जो अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान है वो फैसला करता है कि अब हर बार वो कहीं ट्रेवल करने जाएगा तो अपनी नई नई पर्सनैलिटी जो है ये लोगों के लिए बनाएगा, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी जो उनकी है असल ज़िंदगी में उससे अलग ही लोगों को दिखाएगा. और ऐसी एक ट्रिप पर वो जाते हैं जहाँ पर एक लड़की से मुलाकात होती है उनकी, और उनकी इस अलग पर्सनैलिटी के साथ इस लड़की को प्यार हो जाता है. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूवी एंड आई वुड से स्टोरी टेलिंग की बातें अगर हम करें तो दिस पर्टिकुलर मूवी हाइलाइट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट स्टोरी टेलिंग.
2: तो आप अपना जवाब हमारे पास भेजिए, BF अपना आंसर और अपना नाम. साथ ही में आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. भारत के नागपुर में एक लुटेरा जो है बड़ा यूनिक आइडिया जो है ये इन्होंने अपनाया एक लूटमारी करने के लिए, उसके बारे में आपको बताएंगे. अगले घंटे आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे भी विश करना है, सो मेक श्योर अपने मैसेजेस टाइम से पहले आप हमें ज़रूर भेजते
1: हैं. और साथ ही साथ अगले घंटे आपको वैसे हम बताने वाले हैं आपका दिन कैसा बीतेगा आपके हॉरोस्कोप्स के अनुसार. नॉर्मली जब हम राशि वाइब्स करते हैं उसके बाद लोग हमें मैसेज करते हैं कि हम भूल गए या मिस हो गया. तो याद रहे कि ये 7 बजे के बाद रहेगा, 7 AM से 7:15 के बीच में.
2: जी
1: राइट, तो हमारे साथ ही आपको इसके लिए बने रहना है. फिलहाल मैसेजेस आप सेंड करते रहे हमारे पास ऑन 5599 आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे गेस करने के लिए. हमने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है फिल्म का. क्लू अगर कुछ देना हुआ क्लू के तौर पर ये कहा है कि स्टोरी टेलिंग के मामले में ये फिल्म बहुत रिलेटेबल है, बहुत अच्छी फिल्म है जो आपने अगर नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए. आई एम थिंकिंग लाइक और क्या क्लू मैं दे सकती हूँ विदाउट गिविंग अवे द आंसर, पर मेरे को ऐसे कोई क्लू अभी आ नहीं रहा है मेरे दिमाग में. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग और आपको मैं रिमाइंड करा रही हूँ. अपने अपने आंसर्स जो है ये आप हमारे पास भेज सकते हैं ऑन 5599.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल आज का मौसम कहा गया है ज्यादातर क्लाउडी रहने वाला है विद आइसोलेटेड लाइट शावर्स और आज सनसेट 6:14 PM पर होगा. टेम्परेचर फिलहाल तो 11.3 डिग्रीज है, हाई ऑफ 11 या 18 एक्सपेक्टेड है, बाद में चलकर ओवरनाइट 11 डिग्रीज रहेगा.
0: विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको स्प्रिंग सेल ऑन नाउ. ब्यूटीफुल फर्नीचर with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.

0: 1234.
1: तीन मिनट हो रहे हैं 7:00 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. अगर कुछ देर से आप हमारे साथ शामिल हुए हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारे साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. हमने कहा था पिछले घंटे कि आपको बताएंगे भारत में एक लूटमारी की खबर जो आई है, उसके इसका वीडियो जो है ये काफ़ी वायरल हो रहा है. तो 28 साल के एक ग्रेजुएट जो है इनको अरेस्ट किया गया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने नागपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच जो है वहां लूटमारी की थी.
2: ओके.
1: किया क्या उन्होंने कि शाम 6 बजे के वक्त जो बैंक के कर्मचारी ATM से कैश निकाल कर ला रहे थे, उस समय पर ये बैंक पहुंचे. एम्प्लॉइज जो है उनकी आंखों में मिर्ची डाली, क्या बोलते हैं उसको,
2: चिली पाउडर
1: डाला.
2: हाँ.
1: और ओवर 4 लाख रुपीज.
2: हाँ.
1: लेकर चलते बने.
2: इंटरेस्टिंग.
1: 4 लाख रुपीज से ज्यादा पैसे. लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया.
2: पहचान में आ गए होंगे.
1: आई डोंट नो कैसे पहचान में आ गए, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और उनके पास से सारा का सारा कैश भी मिल गया.
2: चोरी करोगे तो यही अंजाम होगा ना, और क्या ही रिजल्ट हो सकता है आपका. बट आई थिंक आई हैव सीन द वीडियो, चिली पाउडर डाल डालकर जो इन्होंने चोरी करने की कोशिश की थी.

0: is it Rocket Singh? Sujata Fero, इनका मैसेज आया है. किसी ने मैसेज किया, नाम नहीं लिखा है, उन्होंने कहा रब ने बना दी जोड़ी. तो ये भी सारे के सारे गलत आंसर्स हैं. सही जवाब वुड बी तमाशा.
1: अच्छा,
0: 2015 में ये फिल्म आई थी तमाशा. कुछ लोगों ने वैसे सही जवाब दिया था, हमारे पास मैसेज किए थे, रोनल्ड बीइंग द वेरी फर्स्ट वन. और उसके अलावा आपको बताया कि ये फिल्म जो है 2015 में आई थी. आपने नहीं देखी है तो कभी मौका लगे ज़रूर इस फिल्म को आप देखिएगा. इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि बिफोर इसका जो नाम है इस तमाशा फाइनलाइज हुआ था, इसका ओरिजिनल टाइटल वाज सपोज टू बी विंडो सीट. फिर पता नहीं कुछ बदलाव किए गए टाइटल्स पर और फिर विंडो सीट से बदल कर इसको तमाशा नाम जो है ये दे दिया गया. एंड इंटरेस्टिंगली इस फिल्म को ऑफर किया गया था टू अनुष्का शर्मा बिफोर इट वॉज बींग ऑफर टू दीपिका पादुकोण.
1: अच्छा,
0: लेकिन अनुष्का शर्मा का ये कहना था कि इस फिल्म की कहानी ज़्यादातर जो मेल कैरेक्टर है वेद जो प्ले कर रहे थे रणबीर कपूर उनके ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है. इट डजंट गिव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द फीमेल कैरेक्टर, विच इज़ वाई उन्होंने ये रोल जो है डिक्लाइन कर दिया. एंड दैट्स व्हेन दीपिका पादुकोण केम इनटू द पिक्चर और उन्होंने तारा का किरदार जो ये प्ले किया. बट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द मूवी इज कि इस फिल्म का वो गाना है, आपको याद है?
1: कौन सा?
0: अगर तुम साथ हो, जलके याग्निक की आवाज में.
1: शायद
0: आई थिंक यू फॉरगॉटन. अगर आपको नहीं याद है मैं किस गाने की बात कर रही हूँ तो आपको मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ और फिर मैं इस गाने के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी. सो दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म. और इस गाने के बारे में अगर हम आपको बताएं, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ है फॉर वन रीज़न. तो अब याद आया कौन सा गाना ये?
1: मैंने तो बोला था. हाँ,
0: आपको याद नहीं था पर मैं सबको सुना रही थी. तो ये जो गाना है अरिजीत सिंह अलका याग्निक ने गाया था. एंड ऑफ कोर्स द रीजन वाज द वे दे हैव संग द सॉन्ग बहुत ही खूबसूरती से. बट अनदर रीजन जो इस गाने के बारे में लोगों ने नोटिस किया था कि जिस तरह से इस गाने की शूटिंग हुई थी, इमोशन सीम्ड क्वाइट हाई जब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने इस गाने की शूटिंग की थी. दिस वॉज दैट मूवी जो उन्होंने एक साथ काम किया था पहली बार आफ्टर देयर ब्रेकअप.
1: अच्छा, ब्रेकअप के बाद?
0: I think this was the movie. Breakup ke baad jis film mein unhone ek saath kaam kiya tha, if I'm not mistaken. So this particular movie ka ye gaana jo hai, isme jab ek scene hota hai jahan par Deepika Padukone jo hai ye Ranbir ko rokne ki koshish karti hai, but then wo apna haath chhuda kar chale jate hai. Wo particular scene was not scripted. It just so happened ki wo इस गाने को नेचुरली इनेक्ट कर रहे थे. एंड इम्तियाज अली डिसाइडेड कि ही वुड नॉट कट दैट सीन, ही जस्ट लेट इट बी. और पूरी शूटिंग होने के बाद ही डिसाइडेड कि वो ये पार्ट रखेंगे गाने में.
1: अच्छा, बहुत गहरी दोस्ती है इम्तियाज अली से लगता है आपकी.
0: नहीं, गूगल से है.
1: वैसे आज 17th ऑफ सितंबर है. कल 1, 2, 3, 4, 5 हिंदी रिलीजेस आने वाली हैं. कौन कौन सी हो सकती हैं ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद.
2: किट धूम तेरे किट.

0: 0818-104-234. Rashi Vibes.
1: सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज कहा गया है कि अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें आप, क्योंकि तबीयत आज आपकी बिगड़ सकती है। बिजनेस डील्स जो है ये जो है आप टाइमली मैनर में करें, और आज आपने आपके जीवन पार्टनर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन भी आप कर सकते हैं।
2: और इसके बाद आज अगर देखा जाए तो
1: वृष यानी टॉरस
2: आपके लिए कहा गया है कि प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस मामले में। हेल्थ के लिए कहा गया है कि दिस इज़ द प्रॉपर टाइम जहाँ पर आप अपने हेल्थ पर थोड़ा यू नो फोकस करें, इन्वेस्ट करें इन योर हेल्थ, बिकॉज चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, एंड इफ़ यू कीप ऑन इग्नोरिंग योर हेल्थ तो इसका बहुत बुरा असर जो है आने वाले कुछ दिनों में आपके ऊपर पड़ सकता है।
1: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज जो दिन का पहला हिस्सा है इस दौरान आपको काफ़ी एक्टिव रहना होगा, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर द ऑफ द डे फॉर यू। और इसके अलावा फाइनेंशियली दिन आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, ये आपके लिए आज कहा गया है।
2: और उसके बाद आज बताया जा रहा है कर्क ने कैंसर आपके लिए कि यू मे फील मोर इमोशनली कनेक्टेड विद समवन स्पेशल टुडे, और ये इसकी वजह से आज आपका रिश्ता उनके साथ और भी ज़्यादा मजबूत होगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अगर आप किसी भी शख्स के साथ आज डील कर रहे हैं स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें, एंड इफ़ योर इंस्टिंक्ट्स आर टेलिंग यू टू स्टे अवे, मेक श्योर फैसला आप ज़रूर लें और उस पर एक्शन भी आप करें। एक काम इवनिंग आज आपके काफ़ी काम आ सकता है इन helping you recharge।
1: सिंह यानी लियो, आज दिन भर आप काफी एक्साइटेड रहेंगे, परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है आपका ये भी ठीक ठाक ही रहेगा। बिजनेस में कुछ नए क्लाइंट्स जो है इनसे आज आप कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
2: और उसके बाद आज बताया जा रहा है कन्या यानी वर्गो आपके लिए कि स्मॉल जेस्चर्स आपके लिए ज्यादा मायने रखते हैं मोर देन द ग्रैंड डिक्लेरेशंस, और इसी तरह से आज आप इन्हीं चीजों पर छोटी छोटी बातों पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। आपके लिए बताया गया है कि आज का दिन बहुत बढ़िया है जहां पर आप अपने बजट को रिव्यू कर सकते हैं, बिकॉज देयर कुड बी सम चेंजेस जो आपकी हेल्प कर सकता है इन सेविंग मनी, एंड अगर आप ये रिव्यू करते हैं तो इट विल वर्क आउट फॉर यू। डोंट लेट परफेक्शनिज्म क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, इसीलिए आप परफेक्शन की तलाश ना करें, बस अपना काम जो है ये जरूर करते रहे।
1: तुला यानी लिब्रा, आज दिन भर आपका मन काफी खुश रहेगा, और अगर आज आप चाहते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका संबंध और मजबूत हो तो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यू विल बी फीलिंग एनर्जेटिक होल डे।
2: और उसके बाद आज वैसे देखा जाए तो बताया जा रहा है वृश्चिक ने स्कॉर्पियो के लिए कि अपनी प्लानिंग अच्छी तरह से कर ले, अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये आपको मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू डोंट हैव अ प्लान यू जस्ट जंप ऑन टू दी अपॉर्चुनिटीज़। एक प्लान का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज। रिलीज़ योर टेंशन थ्रू एक्सरसाइज एंड क्वाइट टाइम, अगर आपको कोई भी चीज़ परेशान कर रही है तो जस्ट टेक सम टाइम ऑफ और खुद के साथ आप अकेले में थोड़ा टाइम जो ये स्पेंड करें।
1: यानी सेजिटेरियस, पैसों का बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है, इनकम के नए रास्ते आपके लिए तैयार होंगे, सोच समझकर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फायदा आज आपको हो सकता है।
2: और उसके बाद आज मकर यानी कैप्रिकॉन आपके लिए कहा गया है बी ओपन अबाउट योर फीलिंग्स, अगर आप उसे खुद तक ही रखेंगे तो जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके आसपास उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, देन इफ यू एक्सपेक्ट देम टू नो एंड वर्क ऑन इट वैसा नहीं होने वाला, इसलिए ओपन अप एंड शेयर योर फीलिंग्स विद योर लव्ड वंस, स्पेशली समवन जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। और आज आपके लिए कहा गया है कि आज बहुत ही बढ़िया दिन है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, अगर आपको फाइनेंशियली पैसे वगैरह कहीं स्पेंड करने थे इन्वेस्ट करने थे Today is the right day to get that sorted.
1: कुम्यन एक्वेरियस, आज लोग काफ़ी इंक्विजिटिव रहेंगे, काफ़ी जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके ज़िंदगी के बारे में, और आज पर्सनल लाइफ आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली काफ़ी पैसे जो है ये आज आपको मिल सकते हैं, हेल्थ भी बढ़िया ही रहेगा।
2: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है ये आपको हेल्प करेगी इन अंडरस्टैंडिंग कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको एक्चुअली में क्या चाहिए आपसे, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू वांट टू डिलीवर इट गो फॉर इट। आपके लिए ये भी कहा गया है कि अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखें, लेकिन अपने प्रैक्टिकल डिटेल्स को भी दिमाग में प्रायोरिटाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपके लिए कहा गया है कि इमोशनल वेलबींग पर फोकस करें, क्योंकि शायद आप इसे इतने दिनों से इग्नोर करते जा रहे हैं, यू हैवंट रियलाइज्ड कि इसका कितना बुरा असर आपके ऊपर पड़ रहा है। सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ अब चलिए थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आपके लिए हम आज का हमारा
1: सेलिब्रिटी अलार्म।
0: Breakfast show with VJ and Pooja.
3: Chubo jao, papi ho, chubo jao.
0: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
4: ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम चाहिए यस प्लीज माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के 1 आवर क्लिक एंड कलेक्ट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करो और सिर्फ 1 घंटे में कलेक्ट करो टीज एंड सीज अप्लाई स्किप द क्यूज एट माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन
5: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
6: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
7: Hungry? Feel like pasta? Or a pie? How about pasta in a pie? Zed's new beef brisket mac and cheese pie is what you need. Head to Zed and for only $7.50, you can grab a delicious beef brisket mac and cheese pie. Zed is for the love of pies.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
11: Celebrity Alarm. Hit it.
12: चलिए अब बारी है आज के सेलिब्रिटी अलार्म की और आज की जो सेलिब्रिटी अलार्म है ये वही साहब के लिए लाने में मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू डिलीवर द वे आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट और नॉट बट कोशिश मेरी जारी है तो चलिए अब आपके लिए आज के जो सेलिब्रिटी है इनकी आवाज़ जो है ये हम पेश करने जा रहे हैं राइट
13: राइट राइट
12: यू हैव टू लिसन टू दिस एंड देन उसके बाद आपको अनुमान लगाना होगा कि कौन है नाउ लेट मी टेल यू इसमें 2-3 आवाजें आपको सुनाई जाएंगी
13: हाँ.
12: मैं आपको बताऊंगी कौन सी आवाज आपको पहचाननी है
14: कहीं ये बूढ़ा गिर गया मर गया तो हम लोग खाली पकड़ पहुंच जाएंगे चलो ये बूढ़े को छोड़ के सरजू बूढ़े के पास चलते हैं चलो चलो
12: अच्छा यहीं पे सुना देते हैं बस
13: यहीं पे सुना देते
12: हैं मतलब इतना ही सुनाते हैं मुझे सुनाना कुछ और तो बट आई थिंक दिस विल डू तो आप बता दो कि ये किसकी आवाज है जो आपने भी सुनी
13: आई थिंक आई नो अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो
12: हाँ क्योंकि आसान है
13: अच्छा आसान है
12: हाँ
13: तब तो मैं सही हूँ लगता है
12: बहुत आसान है यार
13: तो आप बताइए कि आवाज किसकी थी पहले एक बार फिर सुना दो इतना ज्यादा उसमें वो था क्या बोले
12: क्या था साउंड इफेक्ट
13: हाँ
12: इसीलिए आपको हार्ड होगा टू फिगर आउट कि कौन थे
13: नहीं हार्ड नहीं होगा शायद ध्यान नहीं दिया होगा अभी तक लोगों ने ना क्योंकि आपने कहा था कि 2-3 आवाजें एक को पहचाननी है
12: हाँ एक्चुअली इनिशियली 2-3 आवाजें ही थी पर फिर मैंने वही बोल रही मैं कि मैंने थोड़ा से वो बदल दिया प्लान बिकॉज आई कुड फिगर आउट कि चलो ये अच्छा काम करेगा तो चलिए आपको मैं जो आवाज़ सुनाने जा रही हूँ आपको अनुमान लगाना है कि ये किसकी आवाज़ है और अपना अपना आंसर जो है ये आप हमारे पास जो है ये मैसेज कीजिए ऑन 5599 हियर वी गो दिस इज द वॉइस दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई
14: कहीं ये बूढ़ा गिर गया मर गया तो हम लोग खाली पकड़ पहुंच जाएंगे चलो ये बूढ़े को छोड़ के सरजू बूढ़े के पास चलते हैं चलो चलो
12: तो ये आवाज आपको पहचाननी है
13: सो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजें देखिए आज सुबह सुबह आप में से कितने लोग हैं जो इस आवाज को पहचान पाते हैं सही सही
12: राइट अपने अपने आंसर्स हमारे पास सेंड कीजिए. 6 मिनटों का समय है. देखेंगे आफ्टर 6 मिनट्स क्या किसी ने इनकी आवाज पहचानी है सही सही या नहीं.
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
16: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सेंट्रल ऑकलैंड के तेकोमितांगा स्क्वायर पर माइग्रेंट बस ड्राइवर्स की रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट्स को लेकर रैली में एक शख्स के रेसिस्ट रिमार्क्स के बाद हंगामा हो गया, जिसमें पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। ड्राइवर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज थ्रेशोल्ड को कम करने और सेफ वर्किंग कंडीशन की मांग की, ताकि वो बिना किसी डर के न्यूजीलैंड में रह सके। इमिग्रेशन मिनिस्टर एरिका स्टैनफोर्ड ने रूल्स का बचाव करते हुए कहा कि कई सौ बस ड्राइवर्स ने पहले ही ये स्टैंडर्ड मीट कर लिया है और बाकी लोगों को काफ़ी टाइम दिया गया है। नेशनल पार्टी के सुपरमार्केट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने के लिए फूडस्टफ्स को ब्रेक करने के प्लान की न्यूजीलैंड के टॉप बिजनेस ग्रुप्स ने कड़ी आलोचना की है। बिजनेस एनजेड और ईएमआई का कहना है कि ये प्रपोजल इन्वेस्टर्स के लिए गलत सिग्नल भेजता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स और बिजनेस स्टेबिलिटी के खिलाफ है। बिजनेस लीडर्स ने वॉर्न किया है कि बड़ी कंपनी को तोड़ने से जरूरी नहीं कि ग्रोसरी प्राइसेस कम होंगे, बल्कि इससे कंज्यूमर कॉस्ट और बढ़ सकता है। वॉरियर्स टीम इस सप्ताह अंत ईडन पार्क पर न्यूकासल नाइट्स का सामना करने के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रही है। एलिमिनेशन सेमीफाइनल में वॉरियर्स को इस सप्ताह जीत हासिल करनी होगी और इस मैच के लिए टिकट्स जो है ये सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco. Accurate traffic.
4: Kitchen Mania free installation.
5: Rain this afternoon on a cloudy one today, a high of 19 degrees. Coming into the city on the southern motorway, got a breakdown before Takanini blocking the left lane, but not slowing you too badly. We're just slow on and off from Papakura to the city, 37 minutes in from Monaco, hour from Drury. Northwestern, half an hour Massey to town, slow on and off from Te Aratu, heavy at St. Luke's. Northern 25 from Constellation, slow there to the bridge and at Silverdale.
4: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
6: Craving ho rahi hai. थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी, अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Officer, I'm running late for work and I didn't realise I was speeding. I can't have been that much over though. I mean, everyone's going that fast. And I'm the one that gets pulled
10: over the centre lane and crashed into an oncoming vehicle. She was going too fast, lost control. The fire team's attempting to remove the driver. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
11: It's the Briscoes lady here. I'm hitting the road to celebrate Briscoes' biggest birthday yet, with birthday treats to give away across Auckland stores this Friday and Saturday. Pop in and say hi. See online for participating stores and times.
12: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Add colour to your space with evergreen azaleas, now $16.49 for a 125mm pot. Or freshen up your deck with Forestwood Deck and Timber Stain, now $185 for 10 litres. Mitre 10, your home for outdoor living.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Birthday greetings.
13: Iska birthday bhai?
14: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
13: Happy birthday to you.
2: मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज 17th ऑफ सितंबर के दिन अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. योगेंद्र सिंह बिंदु जी माउंट रॉस्किल में आज के दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. अपना स्पेशल डे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सभी परिवार वालों की ओर से तो आपको मिल ही रही हैं. हम सभी की ओर से भी यह स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
0: हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज जहां कहीं भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से आप तक हम जरूर पहुंचा रहे हैं.

0: Taste true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
1: तो आज का सेलिब्रिटी लैम, टाइम टू रैप इट अप. लेकिन हमने नोटिस किया है कि कुछ लोगों ने अपने आंसर जो भेजे हैं हमारे पास, आई थॉट इट वाज वेरी इजी, बट फिर भी गलत आंसर जो है ये आए हैं. विधि है साथ में हमारे पास, माली का मैसेज आया है, सोम है, इसके अलावा हमारे पास धर्मेंद्र जी ने अपना मैसेज भेजा है, दीपांशा है पापाखुरा से, सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसके अलावा गुंजन है, इमरान है और खान साहब है, इनका भी मैसेज आया है, अरफाज आपका भी मैसेज हमें मिला है, थैंक यू सो मच, सोनी है, नीलेश दयाल है, आरना है, आयरीन, आयरा, निवेदिता और साथ में नितिका, इन्होंने भी मैसेजेस अपने सेंड किए हैं. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो आवाज हमने आपको सुनाई है, ना जाने क्यों लोगों को लग रहा है कि वो जावेद जेफरी की आवाज है.
2: ओके,
1: सिंपल तरीके से आपको बताया तो नहीं, वो जावेद जेफरी नहीं है, उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं है. और ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो था, ये कैरेक्टर ने डायलॉग्स बोले थे. सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक की एक एक्टर है, पर जावेद जेफरी नहीं है. अभी आपको एक आखिरी बार हम आवाज सुना रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा.
3: कहीं ये बूढ़ा गिर गया, मर गया तो हम लोग खाली पकड़ पहुंच जाएंगे. चलो ये बूढ़े को छोड़ के सरजू बूढ़े के पास चलते हैं. चलो चलो.
1: तो ये आवाज किसकी, आपको अनुमान लगाना है. आवाज तो हमने सुना दी, आपको ये भी बता दिया जावेद जेफरी नहीं है. क्लू के तौर पर एक चीज मैं आपको बताऊंगी, एक खाने की आइटम, एक डिश है बेसिकली जो इनके नाम के साथ एसोसिएटेड है. आई मीन नॉट एग्जैक्टली द वे द डिश इज सेड या उसका नाम एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं, बट एक डिफरेंट तरीके से एक खाने की आइटम इस एक्टर के नाम के साथ जुड़ चुकी है. बिकॉज़ ही प्लेड सम कैरेक्टर.
2: ओके,
1: राइट. इतना क्लू आपको दे सकते हैं, इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते. और साथ में आपको 3 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं to send in your answers now.
2: BF answer aur naam ye 5599 par aap hamare paas bhej sakte hain. Aur aaj kai cheeze, kai khabrein jo hai ye trend bhi kar rahi hain. Aur navratri ke liye kuch bahut trend kar raha hai abhi.
1: Okay, so trend petrol mein janenge uske bare mein, jiske liye aap hamare saath bane rahiyega. But remember, aaj hai Thursday the 17th of September aur aapke liye on the drive show, big promises, big decisions, real consequences. Is saal ke elections ke through ऐसे बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज जो है कि अनाउंस की है. बट इट्स टाइम टू गेट स्ट्रेट आंसर्स और यहाँ पर आपको मौका मिलेगा इलेक्शन स्पेशल ये सुनने का, जहाँ आपके लिए ड्राइव शो में आज शाम 5 बजे से रहेगा. एंड आज एक्ट पार्टी के जो लीडर है डेविड सिमो, ये लाइव ज्वाइन करने वाले हैं सैंडी एंड रूज़बेक ऑन द ड्राइव शो. वे आर हिल बी टॉकिंग अबाउट द पार्टीज पॉलिसीज, उनकी प्रायोरिटीज, उनका विजन फॉर न्यूजीलैंड. अगर आपके पास कोई भी सवाल है दैट यूड लाइक सैंडी एंड रूज़बेक टू आस्क डेविड सिमो, तो आप अपने सवाल हमारे पास ड्राइव कीवर्ड के साथ, यानी ड्राइव लिखकर 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं. पर याद रहे, इट्स ऑल हैपनिंग टुडे ऑन द ड्राइव शो फ्रॉम 5 PM.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Accurate traffic.
4: Spring starts with HRV.
5: Cloudy with rain coming, a high of 19 today. Coming in on the southern, 42 minutes Manukau to town. A breakdown before Takanini cleared. We're just slow all the way from Papakura. Heavy spots Mount Wellington to Green Lane. Northern 30 in from Constellation, 54 Silverdale to town. Very heavy Silverdale to Snow Planet. Heavy patches from Constellation. Northwestern 28 Massey to town. Slow from Tiaratu, but heavy at St. Luke's.
4: Spring clean your air at home with HRV.
6: Professional financials hai saath aapke. Loan or insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
7: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
6: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
7: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 098469934. Or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
8: ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम चाहिए? यस प्लीज माई टिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के वन आवर क्लिक एंड कलेक्ट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करो और सिर्फ एक घंटे में कलेक्ट करो. T's and C's apply. Skip the queues at माई टिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.
9: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
10: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards rush.
11: The Breakfast Show with Vijay and

0: Union Finance experience. Call 0800-634-234.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: बस 11 मिनट ही बाकी है इस समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे देखा जाए तो 8 बजने में, ठीक 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए, जिसके बाद द रश आवर। और आज ट्रेंड पेट्रोल में आपने कहा था ना, नवरात्रि के अराउंड एक नया ट्रेंड बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, इसके बारे में बातें करेंगे
3: डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले जो आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के आंसर्स हैं, अंशु हैं, साथ में हिबा हैं, नीलेश हैं, सागर धर्मेंद्र आचार्य हैं, नीलू कृणाल, थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स के लिए।
2: कृष्णील, अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर आंसर एज वेल। रोहिल का भी मैसेज है, जेनिस कुमार है, नवि है, शिखर है, किरण है, जिन्होंने अपना मैसेज सेंड किया है, साथ में नवनीत और सलमा आपका भी मैसेज आया है।
3: और उसके अलावा नीतिका है जो, साथ में सरिता और रितेश न्यू प्लिमथ से, अंजिता आपने भी अपना जवाब भेजा है, साथ में लोकेश और राहुल आपने भी अपने आंसर्स भेजे हैं,
2: एंड थैंक यू सो मच। नवी आपका भी मैसेज हमें मिला है, प्लस हमारे पास अंकिल, इन्होंने कॉल करते हुए भी अपना आंसर दिया था,
3: सो थैंक यू। आई थिंक ही वाज आल्सो फ्रॉम
2: आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं वो कहां से,
3: नहीं उन्होंने बताया था रोवा पर सुन रहे हैं वो,
2: हाँ, रोवा पर सुन रहे हैं वो बोला था,
3: हाँ, न्यू प्लिमथ मेरे ख्याल से बोला था,
2: पता नहीं मुझे न्यू प्लिमथ नहीं सुनाई दिया, बट रोवा पर सुन रहे हैं ये जरूर याद है। बट थैंक यू सो मच जितने लोगों ने आज हमारे साथ सेलिब्रिटी अलार्म में पार्ट लेते हुए, आज के हमारे सेलिब्रिटी यानी कि चंकी पांडे, इनकी आवाज जो है ये पहचानी। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज जब लोगों ने जावेद जाफरी लिखना भी शुरू किया था, बट यस इट वॉज चंकी पांडे जिनकी आवाज आप सुन रहे थे। बाय द वे, अब चलिए आज के थ्रोबैक आपके नाम करने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्ट न्यूज जो है ये हाथ लगा है, ये जो खबर है आपके लिए है, अगर आप एक वॉरियर्स फैन है तो, आर यू अ वॉरियर्स फैन?
3: अ वॉरियर्स फैन,
2: या
3: यस,
2: ओके, और आपके पास वॉरियर्स की कोई भी जर्सी है?
3: नहीं, किसी ने गिफ्ट नहीं की मुझे अभी तक।
2: अच्छा, किसी को गिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अगर फैन है तो आपके पास खुद होनी चाहिए ना। बट व्हाई एम आई आस्किंग अबाउट दिस, द रीजन इज क्योंकि वॉरियर्स फैंस आपसे एक मांग है कि बिफोर यू गिव अवे योर ओल्ड जर्सी जो शायद आपके वार्डरोब में इतने दिनों से पड़ी हुई थी, एंड यू लाइक कि चलो किसी को दे देते हैं या डोनेट कर देते हैं, ये करने से पहले एक बार उसका वैल्यू जरूर चेक कीजिएगा। Apparently there are some collectors जिनका कहना है कि ऐसे कुछ fans हैं who are walking around Warriors games as well cash के साथ, जहां पर they are hoping to buy vintage jerseys straight off people's back. अगर कोई पहन कर आया है तो उनको पैसे देंगे, ऑफर करेंगे, एंड they are ready to buy it right like that कि आप उतार के दे दो हम ले लेंगे। और ये बताया गया है रसलर डंकन द्वारा, रसलर डंकन वुड, जिनका कहना है कि if a jersey attracts several collectors with deep pockets it could sell for thousands of dollars. और देर आर सम सीरियस एग्जाम्पल्स जिनमें एक मैच वॉन क्रूसेडर्स जर्सी फ्रॉम 1996 जो है ये बिका था फॉर $3,500, वाइल जोना लोमो की एक जर्सी है रिपोर्टेडली इट सोल्ड फॉर आई थिंक 5 to 6 टाइम्स दैट अमाउंट। अगर $3,500 का 5 to 6 टाइम्स आप करोगे, इवन वॉरियर्स जर्सीज आर ऑल्सो गेटिंग बिग मनी। 2015 वॉरियर्स एनआरसी जर्सी जो है, या एनआरसी जर्सी जो है, ये रिसेंटली बिका है $2,800 में एक जर्सी। ट्रेड मीक में रिसर्चर्स का कहना है कि बहुत से सर्च किए जाते हैं अबाउट वॉरियर्स रिलेटेड आइटम्स दैट हैव गॉन टू 80% कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर, जहां पर सर्चेस जो है ये किए जाते थे फॉर वॉरियर्स जर्सीज एंड दे वर अप फॉर अबाउट 45%। और कलेक्टर्स का कहना है कि जर्सीज फ्रॉम बिफोर 2005 से पहले के टाइम की अगर कोई जर्सीज है, लिमिटेड रिलीजेस वाले, लिमिटेड एडिशंस वाले, स्पेशल स्पॉन्सर्स और स्पेशली मैच वॉन जर्सीज जो है ये ज़्यादातर वैल्यूबल हो सकते हैं। बट डोंट जस्ट अज्यूम कि आपकी पुरानी जर्सी जो है ये आपको काफ़ी पैसे दिला सकता है। द ओल्डर इट इज़ द मोर प्राइज यू गेट, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास ऐसी कोई एक जर्सी हो जिसकी वैल्यू उतनी हो जितनी की आपको समझ नहीं है फिलहाल। सो बिफोर यू थ्रो देम अवे, मेक श्योर लेबल चेक करें, स्पॉन्सर एंड साल चेक करें, एंड देन प्रोबब्ली यू कैन ट्राई सेलिंग इट फॉर अ बिगर प्राइस।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो आज के मौसम के लिए भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर बादल जो है ये छाए रहेंगे. लिटिल बिट ऑफ आइसोलेटेड शावर्स होने की संभावना है. सनसेट होगा 6:14 PM पर. टेम्परेचर हैज गोन अप टू 12.8 डिग्रीज राइट नाउ. ओवरनाइट टेम्परेचर 11 डिग्रीज रहेगा, जबकि आज हाई ऑफ 18 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर.
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजय एंड पूजा
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: Hello, Kiora. Good morning and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. 3 minutes ho rahe hain samay hamare studios mein 8:00 aur aaj hai Thursday, 17th of September. Now, jaise ki humne promise kiya tha, it's time for
3: आज की ट्रेंडिंग खबर. और ये ट्रेंडिंग खबर जो है NDTV पर आई है, जहाँ पर एक ऑफर जो है इंस्टाग्राम का ये वायरल हुआ है.
1: ओके.
3: और नवरात्रि बस आने ही वाला है, लोग तैयारियां कर रहे हैं गरबा डांडिया की. ये दो डांस फॉर्म होते हैं जो
1: ज्यादातर लोग जो एंजॉय करते हैं ड्यूरिंग नवरात्रि.
3: अभी एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है ये वायरल हो गया है. एक बहुत ही रिलेटेबल नवरात्रि प्रॉब्लम जो है इसको लेकर.
1: ओके.
3: I don't know, मैं तो नहीं जाता हूँ डांस करने के लिए या नवरात्रि गरबा में इस तरह से.
1: You are not sure कि कितने लोगों के लिए रिलेटेबल रहेगा.
3: I know thousands of people के लिए शायद रिलेटेबल हो,
1: पर आपके लिए नहीं है.
3: हाँ, okay. क्योंकि क्या होता है कि कहते हैं हाँ. कि लोग बहुत डिफिकल्टी का सामना करते हैं टू फाइंड अ गरबा डांसिंग पार्टनर.
1: ओके, या दैट इज ट्रू.
3: और एक इंस्टाग्राम पोस्ट जो है ये आया है, रेंट अ गरबा पार्टनर.
1: रियली?
3: हाँ,
1: दैट्स इंटरेस्टिंग.
3: एक यूजर है कृष मिस्त्री, इन्होंने 3 पैकेजेस जो है ये तैयार किए हैं.
1: ओह वाओ.
3: जिसमें मिक्स ऑफ गरबा सेशंस, डांस असिस्टेंस और फोटो अपॉर्चुनिटीज शामिल है. हाईलाइट किया है इन्होंने, दिस नवरात्रि डोंट डांस अलोन. मिस्त्री जो पोस्टर है उनका ये सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम में है.
1: हाँ.
3: रेंजिंग फ्रॉम 1,000 to 2,000 रुपीज.
1: Okay.
3: सबसे अफोर्डेबल सिल्वर पैकेजिंग, इसमें 2 hours ऑफ गरबा, मैचिंग आउटफिट, अ प्रॉमिस टू टीच बेसिक स्टेप्स टू द अदर पर्सन, और एक म्यूचुअल अग्रीमेंट टू क्लिक ऑकवर्ड बट क्यूट सेल्फीज. गोल्ड पैकेज 1,500 रुपीज, 4 hours ऑफ कंपेनियनशिप इवेंट पर, जिसमें एक क्यूट बैक स्टोरी ऑफ हाउ वी मेट. पैकेज में ऑप्शनल अरेंजमेंट है इन विच द गरबा पार्टनर कैन एड्रेस द कस्टमर्स फ्रेंड्स अस भाई एंड भाभी.
1: अरे वाह.
3: सबसे महंगा वाला है, कस्टमर्स हैव एन ओल्ड कंपनी
1: राइट,
3: ये साथ रहेंगे, हु प्रॉमिस टू शो हिज बेस्ट डांस मूव्स, और साथ में अन्य चीजें जो है ये
1: इसमें इंक्लूडेड है.
3: हाँ,
1: राइट.
3: 1.7 मिलियन व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं.
1: अरे इतना यूनिक पैकेज तो आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा. एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग पैकेज, और काफी अच्छे टाइम पर इन्होंने

0: it's a Monday. You feel like going, but someone doesn't feel like going. तो इस मामले में आपका business यहाँ पे चल सकता है ना ऐसे.
1: Exactly.
0: But interesting है यार, I must say कि creativity ना लोगों में कितनी कूट कूट कर भरी हुई है. क्या क्या तरीका लोग निकाल लेते हैं पैसे कमाने का. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. 7 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर इस समय हमारे स्टूडियोज में, और थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और दिलचस्प जानकारियां. इनफैक्ट आज का हमारा जो व्हाट्स यो टेक टॉपिक, इसके बारे में भी आपसे हम बातें करेंगे और आपको मौका देंगे हमारे साथ जुड़ते हुए अपना अपना टेक आज के टॉपिक पर शेयर करने के लिए. सो याद रहे, अगर हमारे साथ आप ऑनियर जुड़ना चाहेंगे कॉल करते हुए 0800 004866 पर, और अगर आप चाहें तो 5599 पर टेक्स्ट भी कर सकेंगे.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
2: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
3: PDTech's Mega Spring Sale is on now. Save on a huge range of tech, computing, phones, gaming, audio, smart home and more. Don't miss out.
4: Check, check with PDTech.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply. Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
9: What's your take?
10: 16 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 8 बजकर और आज है थर्सडे 17th of September. आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक जो है ये आपको बताने से पहले याद दिला दे दैट अगर आप हमारे साथ आज के टॉपिक ऑफ द डे में पार्ट लेना चाहते हैं एंड यू लिसन टू द टॉपिक एंड यू फील लाइक यस दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन और आप अपना कोई भी व्यू जो है हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो बहुत सिंपल से तरीके हैं जिसके तहत यू कैन डू दैट. यू कैन गिव अस अ कॉल 0800 004866 पर या फिर आप चाहे तो 5599 पर आप हमारे पास टेक्स्ट भी कर सकेंगे.
11: आज का टॉपिक इसके बारे में समझ इनफैक्ट दो कहानियां मैं वेरी ब्रीफली जल्दी जल्दी आपको बताता हूं. ऑरेकल में आपको पता होगा अभी बहुत सारे लोग अपनी नौकरी जो है ये खो रहे हैं रिस्ट्रक्चर की वजह से. एक लेडी है जिन्होंने जाकर सोशल मीडिया पर अपने पति के जॉब लॉस के बारे में डिटेल्स शेयर किए हैं. 12 साल तक उनके पति ने उस कंपनी में काम किया और ही गेव हिज ब्लड एंड स्वेट टू द ऑर्गेनाइजेशन और उन्होंने बताया कि वो दिन रात नहीं देखते थे, काम करते रहते थे, काम कर यहाँ तक कि जब लेडी हॉस्पिटल में एडमिट थी अपने किसी एक यू नो सर्जरी के लिए या प्रोसीजर के लिए उस टाइम पर उसके पति हॉस्पिटल में लैपटॉप पर काम कर रहे थे. और उसके अलावा इन्होंने एक अभी रिसेंटली एक डॉग एडॉप्ट किया. ही टुक केयर ऑफ द डॉग एंड ही कंटिन्यूड वर्किंग से अंटिल अबाउट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह 3 बजे तक काम किया करते थे, ये उनकी पत्नी ने बताया है. और उसके बाद दिवाली, राखी, होली कुछ भी हो उनके पति ने कभी छुट्टी नहीं ली, हमेशा काम ही करते रहे. और एक दिन क्या हुआ कि वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे बट ही कुड नॉट लॉगिन और तब जाकर उन्हें पता चला दैट ही लॉस्ट हिज जॉब.
10: देयर वाज नो conversation
11: in fact,
10: before that?
11: What actually happened, जो report में पढ़ रहा था हिंदुस्तान टाइम्स पर कि company ने emails जो है ये भेजे थे, लेकिन साथ ही में लोगों का जो क्या बोलते हैं login और वो सारी चीजें वो भी हटाई गई थी. But शायद कुछ employees ऐसे थे जिनके emails उनके पहुंचने से पहले उनका
10: login जो ये बंद हो गया.
11: उनका login बंद हो गया.
10: He was one of them.
11: He was one of them, and she was so heartbroken about it.
10: Yes.
11: दूसरी तरफ एक और शख्स जो है इनकी स्टोरी में लिंक्डइन पर पढ़ रहा था, उन्होंने भी अपनी नौकरी जो है गुरुग्राम में यह स्टोरी सामने आई थी, नौकरी खो दी लेकिन अपने माता पिता को वो बता नहीं पा रहा था कि अब मेरे पास नौकरी नहीं है. एंड ही ऑल्सो बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम करता था
10: right.
11: लेकिन उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपने पेरेंट्स को बता सके कि वो नौकरी पर जा रहा है या नौकरी खो चुका है. तो क्या किया उसने कि नौकरी के दौरान जब इनकी नौकरी चली गई, वो नाटक करने लगा हर सुबह कि वो नौकरी पर जा रहा है. सुबह उठकर रेडी होता, तैयार होकर घर से बैग वैग लेकर निकल जाता, खाना लेकर निकल जाता
10: जैसे कि वो काम पर जा रहा है.
11: और हाँ, सबको घर पर लगता कि वो काम पर जा रहा है
10: right.
11: और उनकी स्टोरी जो है ये सामने आई लिंक्डइन पर. तो मैंने सोचा आज आपसे पूछते हैं, एज अ ह्यूमन बींग हमें अपनी नौकरी को कितना देना चाहिए? हाउ मच should we involve ourselves या अपने आप को, I don't know, I can't find the right word अभी कि कुछ लोग जो है अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, अपना सब कुछ सिर्फ नौकरी को ही दे देते हैं. they sacrifice their family time, they sacrifice their whatever they
10: have, personal time,
11: हाँ, जो भी उनके पास हो वो सब कुछ हटा देते हैं. so basically उनके लिए work is worship
10: right.
11: is work really worship? आज आपसे हम जानते
10: हैं.
11: यहाँ पर भी यू नो बहुत सारे लोगों के साथ रिस्ट्रक्चर्स और वो चीजें हुई हैं. तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हमने कुछ लोगों से बातें की थी जहां पर दे वे ऑन द वेज ऑफ लूजिंग देयर जॉब और वो सारी चीजें
10: राइट.
11: यू नो इट इज हार्ट ब्रेकिंग, बट अभी बहुत सारी जगह पर ये हो रहा है. तो मैंने सोचा कि आज आपसे पूछते हैं, इज वर्क रियली वर्शिप? आप कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं
10: आपके हिसाब से? व्हाट्स द वे शुड यू
11: ड्रॉ द लाइन
10: कि आप कितना जो है अपनी कंपनी को अपना टाइम दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए ना, उसके हिसाब से. गुड मॉर्निंग. हम
9: मॉर्निंग पूजा, मॉर्निंग विजय, कैसे हो?
10: बढ़िया जी.
9: अमित बोल रहा हूँ मैं. तो बहुत अच्छा टॉपिक है. वर्क वर्शिप हमेशा नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट. जब वर्क टाइम है तो वर्क टाइम करना चाहिए, एंड देन वंस यू कम आउट फ्रॉम योर वर्क प्लेस यू शुड नॉट थिंक अबाउट वर्क.
11: डू यू डू दैट? ओह या, आर यू एबल टू डू दैट?
9: यस, आई एम एबल टू डू दैट नाउ, बिकॉज़ आई वर्कड इन रिटेल फॉर ऑलमोस्ट 8 इयर्स अराउंड इन न्यूजीलैंड, एंड बीइंग अ स्टोर मैनेजर इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज. तो ये होता था कि लाइक even on my days off, used to get texts and calls from the store. So then I decided to like, there's no point, you know, sacrificing my family time. So then now I'm in banking and I've been in banking for over like 3-4 years now.
10: Okay.
9: And once I finish work, that's it. On my days off, I don't think about work and I don't get any communication from work at all.
10: Very interesting.
11: That's good.
10: Okay.
11: Thank you, Amit.
10: Thank you.
11: Experience jo hai ye share karne ke liye.
10: Good morning.
12: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
10: बढ़िया जी, आप बताओ.
12: हाँ जी, परमिंदा बोल रही हूँ
10: जी.
12: अच्छा, ये जो बात है ना, ये वर्क इज वर्शिप, द स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज ट्रू डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू कंसिडर वर्क. अब जो एक वर्किंग लेडी होती है, अब जो मेरे से पहले बोल रहे थे उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक टीचर की लाइफ डिफरेंट होती है, एक रिटेलर की लाइफ डिफरेंट होती है,
10: okay.
12: एक क्लीनर की लाइफ डिफरेंट होती है, कॉर्पोरेट मैन की लाइफ डिफरेंट होती है, ठीक है. आप चाहे काम फिजिकली लाओ ना लाओ, मेंटली वो आपके दिमाग में रहता है. यू वर्क ऑन इट मेंटली इमोशनली, राइट?
11: वेरी ट्रू.
12: अच्छा, और आपका सिर्फ काम, हमने तो क्या, टीचर्स तो घर में मार्किंग भी लाती हैं, प्लानिंग भी लाती हैं, जो बच जाए स्कूल का काम लाती हैं, उसके अलावा जो क्लास में स्कूल में रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स टीचर्स कॉलीग्स को लेके, और ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, बैंकर सबके लिए, वो सब दिमाग में चल रहे होते हैं. आप जब खाना बना रहे हो तब भी चल रहे हो, ठीक है. फिर एक साथ में एक औरत ऐसी भी है जो टीचिंग को पूरा देती है, अपने काम को 100% देती है, लेकिन वो अपने घर को फैमिली को भी पूरा देती है। उसको बाहर कपड़े भी डालने, मशीन का साइकिल पूरा हो जाएगा, उसको डिशवॉशर खाली करना है, साथ साथ में बच्चों के टिफिन पैक कर रही है, साथ में उसको ये भी मालूम है स्कूल जाते ही मैंने ये काम करना है। सो इट इज ऑल वर्क। यू माइट नॉट बी सिटिंग एट योर डेस्क एंड वर्किंग,
10: राइट?
12: यू माइट हैव गॉन टू द वेयरहाउस, यू माइट हैव गॉन फॉर डिनर आउट विद योर फ्रेंड्स, बट एट द सेम टाइम यू नो दैट व्हेन यू गेट बैक यू हैव टू सेंड दैट ईमेल और यू गेट अप इन द मॉर्निंग। So that work is worship is a phenomenon which is mental, emotional, physical, practical, everything.
11: And
12: और ये एक individual के attitude से decide होता है कि वो उसको कितना seriously लेता है।
10: Interesting.
11: ये बताइए, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, जितनी भी चीजें समझाई हैं। How good or bad is it for a person?
12: I think it is excellent for a person if he wants to do it. Because it is very rewarding. अगर आपने अपना काम कर लिया तो आपको एक बहुत शांति, सुकून, कॉन्फिडेंस, एम्पावरमेंट सब आता है। आई थिंक इट इज एक्सेलेंट टू कंसिडर वर्क इज वर्शिप इफ यू डू द नीडफुल अकॉर्डिंग टू योर ओन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ।
11: ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए, आपके टाइम के लिए। जो आप सेम हियर, थैंक यू सो मच,
10: थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहे तो हमारे पास टेक्स्ट ज़रूर कर सकते हैं 5599, हम हमने आपको जो टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर ये बताया है। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू कान टेक्स्ट, यू कैन डेफिनेटली सेंड अस मैसेज 5599 पर। अगर नहीं कर पा रहे तो 0800 हम 0800 004866 पर आप हमारे पास कॉल ज़रूर कर सकते हैं।
11: डेफिनेटली आप में से जितने भी लोग सुन रहे होंगे हमें
10: जी,
11: आपके मन में अपने काम को लेकर कुछ ना कुछ ख्याल तो आया होगा।
10: ऑब्वियसली
11: यहाँ हम लोग बैठे हैं,
10: हाँ,
11: मैं अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ।
10: लाइकवाइज जब आपने ये टॉपिक शुरू किया तो इवन आई स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग अ फ्यू थिंग्स इन माय माइंड, बट इनकी पहले सुनते हैं, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग।
13: मॉर्निंग
10: जी,
13: मेरा नाम रश्मीत है।
10: क्या नाम है आपका?
13: रश्मीत।
10: रश्मीत
11: जी,
13: या
10: जी रश्मीत बोलिए।
13: वर्क इज वर्शिप, हमें लगता है कि लोगों ने हर चीज का ना अलग अलग कॉन्सेप्ट निकाली। एक सेंटेंस अच्छा सेंटेंस है, वर्क इज वर्शिप, लेकिन इसका ना अलग अलग सबका पर्सपेक्टिव है और सबने अपनी अपनी चीजें निकाली है। वर्क इज वर्शिप मीन्स कि आप किसी भी चीज को ऑनेस्टी से करो, दिल से करो, जो भी काम आपके पास आया है। वर्शिप का मतलब ये है कि आप उसको दिल से और ऑनेस्टी से करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी लाइफ डेडिकेट कर दो किसी एक काम के लिए और अपनी पर्सनल चीजों को आप सेकेंड प्रायोरिटी दो, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है, तो लाइफ को आपको जीना भी तो है।
11: बिल्कुल।
13: तो वर्शिप का मतलब ये है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, do it honestly and like per heart, ताकि आप जो भी करो वो अच्छा करो, कोई भी छोटा सा भी काम करो तो अच्छे से करो।
11: थैंक यू सो मच रश्मित, अपना व्यू जो है ये शेयर करने के लिए। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि भाई अपनी पूरी जिंदगी
10: मतलब है,
11: उसकी पूरी जिंदगी नहीं, उन्होंने अपने नजरिए से बताया है कि वो किस वर्शिप का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी टाइम हो उसको आप अच्छी तरह से डेडिकेट करके डिलीजेंटली अपना काम करो, अपनी पूरी जिंदगी जो है अपने नौकरी को दे दो, वो किस
10: वर्शिप नहीं है।
11: तो अब आप चाहें, वक्त हमारे पास बहुत ही कम है। मुनेश ने कहा है, फॉर मी
10: फैमिली कम्स फर्स्ट।
11: आप भी हमें 5599 पर टेक्स्ट करके बताएं आपके नजरिए से आप किस तरह से इसे देखते हैं, वर्क इज वर्शिप, आप किस तरह से अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं या अपने लाइफ को किस तरह से बैलेंस करते हैं, अपने बारे में कब सोचते हैं, वो सारी चीजें जो कुछ भी आपके मन में है वो आप हमें जरूर बता सकते हैं।
8: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम।
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में आपके लिए अमाल मलिक की कंपोजिशन पर लेकर आ रहे थे आवारापन फिल्म 2 का ये टाइटल ट्रैक और आज का हमारा बॉलीवुड मोस्ट वांटेड आपके लिए। वैसे चलिए आज थर्सडे है, आपको पता है एवरी थर्सडे को बातें होती हैं गुरु किंडोला के साथ फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गुरु, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग पूजा, आप बताओ कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया जी, और आप ही से बातें करने के लिए हम एवरी फ्राइडे को इंतजार करते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन और इतने सारे अपडेट्स जो है ये आते रहते हैं, तो हमने सोचा कि आज आपसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर हम सवाल करना चाहेंगे, वो है फर्स्ट होम बायर्स के मामले में। अभी करंटली मार्केट में देखा जाए जो भी सिचुएशन है, अगर कोई एक फर्स्ट होम बायर जिनके पास कम डिपॉजिट हो, लो डिपॉजिट हो बेसिकली, तो बैंक उनको कैशबैक के लिए क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं अभी?
1: गुड क्वेश्चन पूजा, जो फर्स्ट होम बायर्स विद अ लो डिपॉजिट, डेफिनेटली बैंक, तो पहले बैंक का जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है कि अगर आप 20% डिपॉजिट लेके आते हो तो देन वी विल गिव यू रियली गुड कैशबैक, अप टू 1% कैशबैक देंगे और आपको शार्प रेट देंगे, बट यू हैव टू हैव कम विद अ 20% डिपॉजिट। बट इफ यू कम विद लेस देन 20% डिपॉजिट देन दे हैव अ डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है हम आपका लोन फिर भी कर रहे हैं बट वी नॉट गोना offer you the same cashback, we might gonna offer you 0.50 ya fir we might gonna offer you $5,000 only for your first home. So there's a different offers jo bank karte hain for the low deposit customers, but unka loan kar dete hain, but lekin cashback mein they would just either give you minimum 5,000 or little bit more than that. Abhi again because market agar dekha jaye to jo interest rates hain डेफिनेटली जो 6-7-8 महीने पहले थे उससे डेफिनेटली ऊपर जा चुके हैं, और इंटरेस्ट रेट के साथ बेसिकली बैंक्स कमिंग आउट विद अ डिफरेंट ऑफर्स एंड देयर सम बैंक्स जो भी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर कर रहे हैं 1% कैशबैक फॉर इवन हाई LVR कस्टमर, जिनका अगर डिपॉजिट अगर आप 10% डिपॉजिट के साथ भी आप घर ले रहे हो देन दे आर स्टिल गोना ऑफर यू द सेम कैशबैक जो वो 20% डिपॉजिट वालों को देते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग, बट इट्स वेरी फॉर लिमिटेड टाइम, इट इज ओनली देयर टिल यू नो 30th of September, एंड ऑफ दिस मंथ।
0: ओके,
1: और अगर आप आपने घर ऑलरेडी ले रखा है लाइक 2-3 साल पहले आपने घर लिया हुआ है और आपने जब घर लिया था उसके बाद अभी वैल्यूज बढ़ी नहीं है और उस टाइम पे भी आपने जब घर लिया था तो सिर्फ 10% डिपॉजिट दे के लिया था, तो आज की डेट में भी अगर आपकी लोन 3 साल में इतना ज्यादा नहीं उतरा होगा, 10-15 हजार उतरा होगा, तो उसमें आज भी अगर आप अपनी घर की वैल्यू देखते हो और लोन देखते हो तो आप कहते हो कि यार अभी भी मैं 90% पे ही बैठा हुआ हूँ या 85% पे बैठा हुआ हूँ, तो अगर आप उसको भी रीफाइनेंस करते हो तो जो किसी और बैंक में जाते हो तो बैंक आपको बोलता है कि नहीं आपके पास 80%, आप हमारे से 80% लोन नहीं ले रहे, आप हमसे 85 या 90 ले रहे हो अभी भी रीफाइनेंस में भी, तो हम आपको कैशबैक बहुत कम देंगे बट लेकिन आपको आपके रीफाइनेंस कर देंगे, बट फॉर लिमिटेड टाइम ओनली राइट नाउ, कि आप अगर आपकी जो LVR उसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब अगेंस्ट कितनी वैल्यू आपकी घर उसके अगेंस्ट कितना लोन है, तो अगर आप उसकी रेशियो निकालोगे तो अगर आप अभी भी 90% पे बैठे हुए हो या 85% पे बैठे हुए हो
0: जी,
1: तो फॉर लिमिटेड टाइम ओनली अगर आप सेम टू सेम बैंक, मतलब सेम टू सेम लोन अगर आप जो लोन अमाउंट आपका है, अगर आपके पास 1 मिलियन का लोन चल रहा है और वही 1 मिलियन का लोन हम उठा के ए बैंक ए टू बैंक बी लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं डॉलर टू डॉलर रिफाइनेंस, उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, उसमें कोई डेट कंसोलिडेट नहीं होगा, इट इज जस्ट एग्जैक्टली मिरर होगा उस लोन का जो एक बैंक में ए में 1 मिलियन पड़ा है वो बैंक बी में जाएगा 1 मिलियन
0: राइट
1: बैंक ऑफरिंग, और उसमें भी अगर आपका हाई LVR है, हाई LVR का मतलब अगर आप 90% पे बैठे हुए हो तो दे विल स्टिल ऑफर यू 1% कैशबैक ऑफ दैट लोन अमाउंट, और मैक्सिमम लोन मैक्सिमम कैशबैक यू कैन गेट इज अप टू $30,000। तो अगर आपका बड़ा लोन चल रहा है, लेट्स से कि 2 मिलियन का लोन चल रहा है और आपकी जो LVR है वो अभी भी 80% पे नहीं है, वो इट्स स्टिल सिटिंग एट समवेयर 90%, तो अगर उसको वो रीफाइनेंस होता है देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर $20,000 कैशबैक।
0: इंटरेस्टिंग, तो अभी जितने भी लोग फिलहाल हमें सुन रहे हैं एंड दे काइंड ऑफ वो इवेलुएट कर सकते अच्छा उनका सिचुएशन कैसा है, क्या क्या सिनारियो है, और कहीं ना कहीं इट फिट्स द बिल फॉर देम, और वो इसके बारे में फर्दर डिटेल्स आपसे हासिल करना चाहेंगे या आपसे कुछ और जानकारी हासिल करते हुए दैट लाइक योर हेल्प इन गेटिंग दैट डन, तो हाउ डू दे अप्रोच यू फॉर दैट?
1: मुझे जी सिंपल लॉजिक लगाना है, लॉजिक फाइनेंस आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो यू विल गेट आदर माय डिटेल्स और माय बिजनेस पार्टनर कमल्स डिटेल्स, तो आप यू कैन गेट इन टच विद एनी वन ऑफ अस, बट लेकिन अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है यू कैन कॉल मी ऑन 0800 लॉजिक जी, अगर आप 0800 लॉजिक जी टाइप करते हो दैट कम्स टू मी विच इज 0800 564 424 0800 564 424 is number to get in touch with me and then yeah we can help you out with this.
0: Thank you so much Guru aapke time ke liye and for all that information. Hum aapse aur bhi baatein ab next week Thursday ko karenge. Bahut bahut shukriya ek baar phir se.
1: Thank you Pooja.
2: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: mind. Sif Rovapur.
1: Accurate traffic.
2: The warehouse, low grocery prices.
3: Grey and wet today. Afternoon rain and got a high of 19. Citybound on the southern motorway, 40 minutes Manukau to the CBD. We're fine to Otahuhu, but quite heavy there to Green Lane. Southwestern heavy northbound through Whitty, fine the other way. Northern 25 Constellation to town, easing at Silverdale, slow Constellation to the bridge. Northwestern half an hour in from Massey, slow from Partiki with a lot of heavier patches.
2: 12 pack of eggs, just $5.99 at the warehouse. Conditions apply.
4: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone-in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
5: TradeDepot.co.nz.
6: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $2.99. Iceland fridge freezer, just $2.99. Midea washing machine, just $2.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
5: TradeDepot.co.nz.
7: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. Altogether Auckland.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
5: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
5: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
10: वैसे याद दिला दे आज है थर्सडे 17th ऑफ सितंबर एंड नेक्स्ट वीक फ्राइडे यानी 25th ऑफ सितंबर को वैदिक सेंटर पापा टोई टोई में हमारा हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग जो है ये होगा जहां न्यूजीलैंड के जो कीर्तन कलाकार हैं इनके कीर्तनों को यहां पर ऑन द डे रिकॉर्ड किया जाएगा और शुड आई से ऑन द नाइट रिकॉर्ड किया जाएगा और इसका हिस्सा आप बेशक बन सकते हैं. यहां पर एंट्री बिल्कुल फ्री है. आप आ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे एक रिकॉर्डिंग जो है ये की जाती है और ख़ासतौर पर जो कीर्तन कलाकार है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए भी आप यहां पर मौजूद रह सकते हैं बिना किसी एंट्री फी के. हाउएवर द वेन्यू रिफ्रेशमेंट्स और कावा वगैरह जो है ये फॉर सेल रहेगा अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो. बट याद रहे जितने भी कीर्तन कलाकार जिनके कीर्तनों को रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन फ्राइडे 25th ऑफ सितंबर हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग के तहत, इन कीर्तनों को आप सुन सकेंगे हमारे हम फीजी कीर्तन संग्रह प्रोग्राम पर या म्यूजिक स्टेशन पर जो रोवा ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है.

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Accurate traffic.
2: You made it with Caboodle.
3: Cloudy today, afternoon rain, a high of 19. Easing on most motorways. Southern motorway now 38 minutes, Manukau to town. Fine to Otahu, quite heavy there to Green Lane, then fine to the city. Northwestern, 28 minutes, messy to town. Slow from Patiki, lots of heavy spots. Northern, 25 in from Constellation Drive. Not too bad at Silverdale. Slow patches, Constellation to the bridge. Southwestern looking okay.
2: Impress even the toughest critics with Caboodle's stylish, affordable and easy to install kitchens.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
5: Okay, a large pizza base with tomato paste, a few salami slices, grated cheese, a 1.5 litre bottle of fizzy drink and a garlic bread on the side. Is that all?
6: Yes, that's all, thanks, but whoa, how much? On second thought, no thanks. I'm just going to make my own pepperoni pizza with stuff from Pack and Save.
5: Okay, sorry.
6: Apology accepted. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
5: Oh, man.
7: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
8: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
9: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
0: Time check.
10: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
11: Good morning, it's 7:09 बज़ रहे हैं.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
12: Morning, I'm Grace Conker with the latest at 9. A grim picture's been painted of New Zealand's scam landscape. More than 1 million dodgy texts were reported to Internal Affairs last year. Sean Lyons from NetSafe imagines it's just a small snapshot.
13: The difference between the amount of money that gets reported in scam losses versus the predictions and the research around how much money is lost, the discrepancy is huge.
12: There are calls for heads to roll at fire and emergency. An inquiry has blamed the poor state of trucks on executives wasting time, money and resources. Union Secretary Waddy Watson says Fens has let everyone down.
14: They are telling you that 99% of the time the trucks get out the door and go to a fire. That is absolute rubbish. There's a very, very poor service.
12: A star-studded lineup for Christchurch's Electric Avenue, including rock band Kings of Leon.
15: You know that I can use somebody.
12: Electronic artist Calvin Harris is also headlining the festival, which takes place in Hagley Park on the 26th and 27th of February. It's the 11th year Electric Avenue has been put on. And the Obamas have lost their beloved family dog Sunny, who was by their side for 13 years. The former president says she was full of boundless energy, leaping over the hedges of the South Lawn. In sport, a first at Black Ferns start in 8 years for Alina Saili. Coach Whitney Hansen's named the double Olympic sevens gold medalist at second five for Sunday's test against Scotland in Edinburgh.
16: She's an incredibly physical defender. She's a great distributor, so she'll get her opportunity to prove her case this weekend.
12: And former Warriors wing David Fusitua has switched codes and will make his debut for the Queensland Reds this weekend. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com.
8: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best. Hamari good brands.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: आज का मौसम सुपर सिटी ऑकलैंड में ज़्यादातर क्लाउडी रहने वाला है. लिल बिट ऑफ फोर्ट शावर्स जो है ये भी होंगे, और आज वैसे बताया जा रहा है कि इवनिंग में पॉसिबली हैवी शावर्स है. सनसेट आज का 6:14 PM पर जबकि होगा. करंट टेम्परेचर 14.6 डिग्रीज तक पहुंच चुका है. ओवरनाइट 11 डिग्रीज रहेगा. हाई ऑफ 18 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है आज बाद में.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
8: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco. What's going on? Kya bakte ho?
17: Are kehna kya chahte ho?
11: तो आज की क्या बगते हो स्टोरी जो कि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, और देखते हैं कि आज क्या कुछ जो है क्या बगते हो स्टोरी में आपके लिए है. अपेरेंटली आई केम अक्रॉस दिस स्टोरी एंड देन आई थॉट लाइक कि चलो इसके बारे में पहले पता करते हैं, और फिर जब मैंने पता किया तो आई थिंक मेरे लिए वो ज़्यादा सरप्राइजिंग था रदर देन दिस स्टोरी. तो आज सबसे पहले आपको हम इस स्टोरी के बारे में डिटेल्स जो है ये दें. सोशल मीडिया ट्रेंड जो है ये हुआ था अभी कुछ दिनों पहले से शुरू है ना, गोइंग बैक इन द 80s. और रिपोर्टेडली बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, अपनी करंट फोटो को AI के जरिए ऐसे जनरेट करते हैं कि अगर वो 80s में होते तो कैसे दिखते. एंड व्हेन दिस हैपेंड अपेरेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, बहुत से न्यूज़ चैनल पर भी इसे रिपोर्ट किया गया है, जहाँ पर कहा गया है कि उज्जैन में मध्य प्रदेश में ऐसे एक ट्रेंड करती एक महिला की फोटो जब सामने आई तो 45-year-old theft जो है ये लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो अलग अलग वेबसाइट्स पर पब्लिश्ड है, इनफैक्ट आई एम रीडिंग इट फ्रॉम वन ऑफ दीज न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पेज जिसे स्कूप प्रूफ के नाम से जाना जाता है, जहां पर काफी चीजें पोस्ट की जाती है. एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इन्होंने कहा कि ये जो महिला है शी हैड विजिटेड अ ज्वेलर्स शॉप अराउंड 1980s एंड उन्हें अक्यूज किया गया था ऑफ स्टीलिंग अ गोल्ड नेकलेस बिफोर शी डिसअपीयर्ड. केस रिमेन्ड अनसॉल्व फॉर डेकेड्स. Years later, जब इन्होंने ये 80s का ट्रेंड जो है ये ट्राई किया, जहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन एज पार्ट ऑफ दिस 80s AI ट्रेंड इन्होंने अपनी फोटो डाली, तो जो ज्वेलर जिनके लग से इन्होंने पैसे चोरी नॉट पैसे ज्वेलरी चोरी किए थे 45 years ago, उन्होंने इनकी फोटो पहचान ली. उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस ने केस रीओपन किया और रिपोर्टेडली इन्हें ट्रेस किया गया, और मेरे ख्याल से इन्हें अरेस्ट भी किया गया. ऑल गुड सो फार सो गुड. ये है स्टोरी ना
18: जी.
11: लेकिन द सरप्राइजिंग थिंग इज कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है. Yes, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है. लेकिन कई न्यूज चैनल्स ने इसे रिपोर्ट कर दिया है. अपेरेंटली आज तक फैक्ट चेक किया गया, आज तक न्यूज चैनल जो इन्होंने एक फैक्ट चेक किया कि क्या ये कहानी सिर्फ एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है जस्ट टू जनरेट सम ऑनलाइन व्यूज एंड इंटरेस्ट, या फिर सच में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जहां पर कोई महिला थी जिन्होंने 45 इयर्स अगो एक ज्वेलर की तरफ से चोरी की, फिर उसके बाद में गायब हो गई, और जब उन्होंने ये AI ट्रेंड किया गोइंग बैक इन द 80s वाला, उनकी फोटो इस ज्वेलर ने पहचानी, महिला को अपेरेंटली जो है लोकेट किया गया, अरेस्ट किया गया और फिर केस वापस से रीओपन किया गया, तो ये बात पता चली कि दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज अ फैब्रिकेटेड स्टोरी. और रिपोर्टर्स ने जब कॉन्टेक्ट किया था उज्जैन में SP प्रदीप शर्मा को, जिन्होंने उस दौरान वहाँ का जो यू कह सकते हैं पुलिस

0: सच में हुआ है. फॉर एग्जाम्पल गुजराती मिड डे, ये एक न्यूज चैनल है जिन्होंने पब्लिश कर दी ये स्टोरी ऑन द 16th of September. लेकिन जब ये फैक्ट चेक आज तक न्यूज चैनल द्वारा किया गया तो पूरी बात सामने आई कि इट इज अ फेक स्टोरी, देयर इज नो सच्चाई इन दिस स्टोरी. सो सोशल मीडिया और AI का जमाना उतना भी आसान नहीं है टू डील विद.
1: कमाल की चीजें जो है ये लोग करते हैं भाई.
0: आजकल आप कोई भी कहानी जो भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो देखते हो, यू ऑलवेज हैव टू फिगर इट आउट, यू ऑलवेज हैव टू डू योर रिसर्च उसे पब्लिश करने से पहले ऑन योर पेजेस ऑन योर चैनल्स कि क्या उस कहानी में सच्चाई है या नहीं. एंड दिस इज व्हाट आई कॉल क्या बकते हो.

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: बहुत सी जगह पर गणेश चतुर्थी का पर्व जो है ये मनाया जा रहा है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं. सबसे पहले आपको हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपके खास आपके लिए नोट शो भारतीय संगम ये लेकर आ रहे हैं गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस जो कि 19 सितंबर को रहेगा, यानी अभी से दो दिनों में, विच इज़ ऑन दिस सैटरडे. दिन में 11 बजे से तकपुना वो मेमोरियल हॉल, 7 द स्ट्रैंड तकपुना, यहाँ पर आप जा सकते हैं. यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री है आपके लिए. और दिन में 11 बजे से गणेश पूजा के साथ, फिर सत्यनारायण पूजा के साथ प्रोग्राम, जबकि ये शुरू होगा 1 बजे. जो लंच है ये सर्व किया जाएगा, 2 बजे कल्चरल इवेंट्स वगैरह रहेंगे और शाम 4 बजे ढोल और ताशा के साथ जो क्लोजिंग सेरेमनी है ये होगी. तो आप इसका हिस्सा बेशक बन सकते हैं. और अगर आप इसमें शामिल होना चाहें, भाग लेना चाहें, डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप नोट शो भारतीय संगम को जरूर संपर्क कर सकते हैं.
4: उधर श्री राम मंदिर पर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में भी श्री गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और ये रविवार तक जारी रहेगा. हर रात 7:30 बजे के करीब पूजा आरंभ होती है. अंतिम दिन 20 सितंबर को सुबह 9 बजे से पूजा आरंभ होगी और मध्यान्ह को गणेश विसर्जन होगा.
3: और साथ में इसी संडे यानी 20 सितंबर तक जो 7 डेज श्रीमद् भागवत कथा है भारतीय मंदिर पर, 7:30 PM टू 9:30 PM हर रात ये होगी. तो इसका हिस्सा बन सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस, जहां पर जो डिवाइन स्पिरिट ऑफ डिवोशन है इसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद 100 ईयर्स ऑफ पिछवाई ब्रजरास रसिक डॉक्टर श्री कृष्णा किनकर जी के साथ, जो कि श्री धाम वृंदावन नाम संकीर्तन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है.
4: उसके अलावा वैदिक सेंटर पर 32 ग्लेसगो पापेटोएटोए में जो वेद प्रचार सप्ताह है, इस दौरान वेद प्रचार होने जा रहा है और ये 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रहेगा 32 ग्लेसगो पापेटोएटोए में. और ये 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड, तो आप जाकर जरूर इसमें हिस्सा ले सकते हैं.
3: वैसे अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं फॉर द पीपल आउट देयर इन द कम्युनिटी, तो आप ज़रूर हमारे पास इन्हें ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Hey, देखो मैं आ गए.
0: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
6: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
7: ये गलत बोल दिया यार.
6: और पहनता भी नहीं है उसको.
7: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
6: इंटरेस्ट
8: ब्रांड हो गया,
7: अभी ब्रांड हो गया ना.
6: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
9: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
0: India comes to town. Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
10: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho to nahi bhej sakte na. Uske liye apno ko khane pe bulaye. Rishton ko aur kareeb laye. Kashish Premium Basmati Rice. Eat better, live better. For more information, log into www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
5: 1% finance and $2,000 off. Exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off. Experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
11: It's Woolworths $5 Frenzy. Fill the trolley with Tip Top Toppers or Jelly Tips 6 to 10 pack, just $5 a pack. And Paseo King Size or Ultra Soft Luxury Long Roll 6 pack, just $5. Only at Woolworths. T's and C's apply.
12: Online person, phone person, or I want to speak to a real person. MTF Finance gets it. You can apply online, give them a call, or visit one of their 55 local teams around New Zealand. And because MTF knows finance isn't one size fits all, they'll talk about it the way that works for you. However you'd like to talk about your next loan, MTF will meet you there. Search MTF Finance today. Lender criteria and checks, terms, conditions and fees apply. See mtf.co.nz/terms.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
2: 22 मिनट हो रहे हैं अभी 9 बजकर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है दैट इट्स समटाइम्स इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग रीच आउट एंड टॉक टू ए ट्रस्टेड प्रोफेशनल सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज Call Asian Helpline on 0800-862-342 for free and confidential mental health support. If you or someone is in immediate danger, please call 111 or the emergency services.
3: तो याद रहे ये ज़रूरी सूचना आप तक हम लेकर आ रहे थे एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से पर ऑन दी अदर हैंड आपको कुछ और भी ज़रूरी चीज़ों के बारे में हम बताते हुए चलेंगे इस घंटे की कि दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन जहां पर हम आपको अपडेटेड रखते हैं
2: आपको तो पता ही है कि ये मौरी लैंग्वेज वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं
3: जी
2: और बहुत सारी चीज़ें सुबह सुबह हर दिन हम आते हैं आज सुबह के बारे में एक सवाल है मेरे पास
3: अच्छा पूछिए
2: हाउ डू यू से गुड मॉर्निंग इन मौरी
3: मोरेना ओह ये क्वेश्चन था आपका सॉरी आई डिडंट रियलाइज कि आप ये पूछने जा रहे हैं आई एम रियली सॉरी
2: आई एम सो टायर्ड
3: आई नो
2: या आई नो यू नो
3: नहीं सबने शायद ध्यान नहीं दिया होगा यार उतना ध्यान से नहीं सुनते लोग हमें
2: चलो मैं एक दूसरा सवाल जो है ये पूछने की कोशिश करता हूँ आज मोरेना कहते हैं गुड मॉर्निंग को ऑब्वियसली आप ये अच्छा हमें बताइए कि हाय रे माई
3: हाँ
2: इसका मतलब क्या होता है
3: ये तो बहुत कॉमन फ्रेज है आप ओकलैंड एयरपोर्ट पर भी जैसे आते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो दिखता है पढ़ने को मिलता है ना
2: जी तो अगर कोई कहता है हाय रे माई इन मौरी लैंग्वेज उसका मतलब क्या होता है
3: व्हाट डज इट मीन
2: यस ये आपको हमें बताना है
3: राइट तो आप ऐसा कीजिए BF लिखिए फिर उसके बाद में हमारे पास अपने मैसेजेस जो है ये आप सेंड कर सकते हैं 5599 पर और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि आप में से कितने लोगों ने सही सही पहचाना है कि जब कोई हाय रे माई बोलता है माओरी में तेरे में तो उसका क्या मतलब होता है 25 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर आप चलिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस घंटे का बॉलीवुड्स मोस्ट वॉन्टेड
4: सीधा अंदर आऊं
5: मैं लाऊं अपना ए गेम
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स
3: तो फिल्म मिर्जापुर द मूवी जिसे लोगों ने देखा पसंद किया और काफ़ी धूम मचा रही है मूवी चाहे ऑनलाइन अभी इसके बारे में बातें हो रही हो या इसके गानों के बारे में बातें हो रही हो वैसे इस फिल्म का जो गाना है वारू फॉरएवर ये आपने सुना है बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में आपके लिए हम लेकर आए हैं इसे बहुत बार वैसे ये जो गाना है वारू ये दरअसल मिर्जापुर सीरीज में भी था
2: अच्छा
3: जी okay. और फिर वहाँ से इसे इस फिल्म के लिए जब यू नो पेश किया गया तो रोमी द ओरिजिनल सिंगर ऑफ द सॉन्ग वो तो मेंटेन किए ही गए थे पर श्रेया घोषाल ऑल्सो जॉइंड ऑन बोर्ड और उन्होंने जो फीमेल वोकल्स है ये दिए इस गाने के लिए बट देयर इज अनदर सॉन्ग जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है फ्रॉम द सेम मूवी मिर्जापुर द मूवी और इस गाने की जो विजुअलाइजेशन है वो तो लोग देख कर एकदम अप्रिशिएट कर रहे हैं इफ यू हैव सीन मिर्जापुर तो आपको बिरजू लोहार का नाम पता होगा
2: यस यस यस आई कांट रिमेंबर
3: बीना जो है कैरेक्टर की आपको पता है आपने फिल्म देखी स्टिल यू डोंट नो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी बट एनीवेज कमिंग बैक टू द सॉन्ग
2: आई नो कालीन भैया आई नो गुड्डू भैया
3: हां वो तो फ्रॉम द मूवी इटसेल्फ दे हैव बीन मेंटेन ना बीना इज आल्सो अ कैरेक्टर कालीन भैया की जो पत्नी है वो लेकिन बिरजू लोहार एक ऐसे कैरेक्टर है जो इस मिर्जापुर द मूवी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनका
2: अच्छा।
3: उनका कैरेक्टर और कहीं ना कहीं ये गाना उनके और बीना के लिए डेडिकेटेड है इन दिस मूवी आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा बट इस गाने की जो ओरिजिन्स है ये मुझे हमेशा लगता था कि इट्स फ्रॉम द मूवी कोयला आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक कि यू नो ये मूवी कोयला में मैंने सुना था इट वॉज पिक्चराइज ऑन क्या नाम है उनका माधुरी दीक्षित पर
2: अच्छा।
3: कोयला में मैंने देखा था सुना था पर कमाल की बात ये है कि ये गाना वॉज अ सिंगल जो कि नुसरत फतेह अली खां साहब ने लिखी थी कंपोज की थी और गाई भी थी इन्होंने
2: और, भी था।
3: जी और ये उनका पहला सॉन्ग था जो उन्होंने परफॉर्म किया था उनके फर्स्ट विजिट टू इंडिया टूर के लिए जो 1979 में उन्होंने किया था। दिस वॉज द सॉन्ग दैट ही हैड परफॉर्म्ड एंड उसके बाद चलकर इसे इस गाने को थोड़ा सा वेरीफाई कर यूज किया गया था इन द मूवी कोयला। बट द ओरिजिनल सॉन्ग इटसेल्फ इज समथिंग जो इतना मैजिकल होता है कि आप सुनना पसंद करते हो। फिर अभी हाल फिलहाल इसके बहुत से रेंडिशंस भी आए, अलग अलग आर्टिस्ट ने इस गाने को गाया, फिर मिर्ज़ापुर द मूवी में ये गाना आया और रिसेंटली दिलजीत दोसांझ जिन्होंने इतना बड़ा हिस्ट्री क्रिएट किया बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने वेम्बली स्टेडियम जो है लंदन यहाँ पर परफॉर्म किया 90,000 to 92,000 लोगों के सामने। He was that first Indian artist जिन्होंने ये stadium पूरा भर दिया and he also performed this song during his stage performance. So आज चलिए ये गाना जिसके original creator को याद करते हैं इतने कमाल के कलाकार नुसरत फतेह अली खान साहब और उनके creation पर इसे recreate किया गया है for the film मिर्ज़ापुर the movie sung by मधुर शर्मा और composed or recreated by वैभव पानी।

0: nobody gonna run a race like me.
1: 25 मिनट रखे हैं फिलहाल, अब 10 बजे में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज थर्सडे हो चुका है, वीकेंड पर आप क्या कुछ लुक फोर्ड कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड? हमने देखा था चार पांच चीज़ें हैं जो रिलीज होने जा रही हैं टुमारो, लीडिंग विद ओम का हरी। हाँ,
2: ये क्या है?
1: ये मूवी है ना,
2: ओके,
1: ओम का हरी। और इसमें रघुवीर यादव, अंशुमान झा, सोनी राजदान, आयशा कपूर जैसे कलाकार जो है ये काम कर रहे हैं। एक कॉमेडी ड्रामा है, हरीश व्यास ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया है। सेकंड ऑन द लिस्ट इज लस्ट स्टोरीज 3, डिजिटली ये रिलीज होने जा रही है। टुमारो दायरा भी रिलीज होगी।
2: ओके,
1: काफी बहुत सारे लोग इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। और कुणाल खेमू, इन्होंने एक फिल्म को लिखा है, डायरेक्ट किया है,
2: वाइब।
1: ये भी इसी
2: वीकेंड
1: कल रिलीज होने जा रही है। वाइब इज ऑल्सो रिलीजिंग टुमारो। एंड भारत देश है मेरा, ये फिल्म भी कल रिलीज होने जा रही है।
2: इंटरेस्टिंग।
1: सो ये चार पांच फिल्में कल रिलीज होने को है। एंड नेक्स्ट वीक आल्सो सम वेरी बिग नेम्स जो है कि आ रहे हैं, द पैराडाइज, डोंट बी शाय, लव लॉटरी, महाकाव्य, श्री रामायण कथा, श्री राम की, ये नेक्स्ट वीक रिलीज होने जा रही है। दीवान और हार्ट ऑफ द बीस्ट, ये एक इंग्लिश मूवी है, ये भी रिलीज होने जा रही है नेक्स्ट वीक।
2: राइट, सो देयर आर अ लॉट ऑफ मूवीज दैट आर रिलीजिंग दैट इज इन द लाइन। और देखते हैं कि आपको क्या पसंद आती है, आप जो भी देखे, इफ यू फील लाइक ओके दिस वाज गुड, और आप यू नो बताना चाहेंगे औरों को टू वॉच इट, तो आप अपने रिकमेंडेशंस भी जरूर हमारे पास सेंड कर सकते हैं। फिलहाल चलिए आपको याद दिला दें कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं आपके पास, और ऐसे में एक मौका है हमारे साथ जुड़ते हुए, ना केवल हमारे जो प्रोग्राम्स ऑन हम लेकिन हमारे पॉडकास्ट जो है ये भी आप चेकआउट करें। वैसे अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूज़ में जो रीसेंट एपिसोड है, यहाँ पर इन्होंने कुछ ज़रूरी बातों के बारे में चर्चा की है विद तानिया पिंटो, जो कि सीनियर ट्रस्टी है पब्लिक ट्रस्ट, और इन्होंने बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर किए हैं। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन ब्रेक डाउन करते हुए शेयर किए हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन समवन डाइज जिन्होंने अपना कोई विल तैयार ना किया हो। तो अगर ऐसे सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो जाए तो ऑब्वियसली हम सोचते हैं कि अच्छा उनके पार्टनर को, उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को उनकी प्रॉपर्टी मिलती है, बट दैट्स नॉट exactly how it works here in New Zealand. Dying without a will, इसकी वजह से क्या लॉज हैं और क्या आउटकम हो सकता है, अगर आपको अच्छे तरह से समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द मिथ्स एंड यू नो फैक्ट्स अराउंड दिस, तो आप सैंडी एंड रूज़बे के साथ अनफिल्टर्ड का ये रीसेंट पॉडकास्ट एपिसोड जो है पॉडकास्ट का, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ड्राइव लिखकर 5599 पर सेंड करें, आउटर रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा, और रोवा या स्पॉटीफाई पर जाकर आप ये पॉडकास्ट जरूर सुन सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट, जहां पर हम बातें करते हैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जिसमें आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देते हैं, और फिर उन बिट्स एंड पीसेस को हम हमारे इस पॉडकास्ट ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट में जो है अपलोड करते हैं, ताकि आपको जब भी समय मिले आप जाकर ये चेकआउट कर सके। रिसेंटली ड्यूरिंग द शो वी हैड स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि हमारी सोसाइटी में हम सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं, एंड अगर आपके पास घर हो, गाड़ी हो, यू नो ये क्या सक्सेसफुल लाइफ का एक मेजरमेंट है, या फिर देयर अदर मीन्स एंड वेज ऑफ फिगरिंग आउट कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में कितने सक्सेसफुल है कितने नहीं। बट ये पूरा का पूरा कन्वर्सेशन आप चेकआउट कर सकते हैं ब्रेकफास्ट कैचअप किट पोस्ट इस पॉडकास्ट में, बी एफ लिखकर 5599 पर सेंड करेंगे तो ऑटो रिप्लाई में लिंक आपको मिल जाएगा।

0: Mega Finance, Ants Funeral Home, Zeal Group, Perfect Panel Beaters and Paint Limited, Port Poles Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. Jankariyon ke liye hum sunte rahein.
1: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
2: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
3: Okay, we've got a handful of coffee beans, hot water, full fat milk, 3 packets of sugar, oh, and a nice little chalky fish on top. That sound like you?
4: That does sound like me. But wait, how much is that? You know what? I'm actually good. I'm just going to make my own fancy flat white with stuff from Pack and Save.
3: Oh, well that's sick, man.
4: Close. It's Stick Man. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
3: Assembly? Oh, we used to have that at school.
5: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
7: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
9: PDTech's mega spring sale is on now. Save on a huge range of tech, computing, phones, gaming, audio, smart home and more. Don't miss out.
10: Check, check with PDTech.
11: JB Hi-Fi is celebrating the stunning store refresh of JB Sylvia Park this Thursday from 5 p.m. with Cost Plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Sylvia Park this Thursday, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
12: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest-free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
14: What's going on?
15: 17 मिनट रह गए हैं 10 बजने में. आज खबरों में सबसे पहले न्यूजीलैंड के का जो गवर्नमेंट वेबसाइट सेफ ट्रेवल है, इसने फिजी ट्रेवल कर रहे लोगों को चेतावनी दी है कि वो अपना बहुत ख्याल रखें और ट्राई करें टू अवॉइड एक्टिविटीज जिनसे उनके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है. फिजी ने मंगलवार को दो दिन पहले एक नेशनल HIV इमरजेंसी जो है ये डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद चलकर सरकार की ये चेतावनी आई है. ट्रेवलर्स जो है ने का कहना है कि अब वो इंतज़ार कर रहे हैं और डिटेल्स का बिफोर मेकिंग हर ट्रिप टू फिजी लेटर दिस ईयर. और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ उनका जो है ये ठीक ठाक ही जाए. फिजी गवर्नमेंट ने एलियर दिस वीक जो अनाउंसमेंट किया है उसके मुताबिक फिजी में 1 in 60 adults are estimated to be living with HIV. एक मेजर पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी में फिजी गवर्नमेंट ने फॉर्मली एचआईवी को एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है. हेल्थ मिनिस्टर एंटोनियो लालम्बलावू ने अनाउंस किया है कि यह डिक्लेरेशन जो है प्राइम मिनिस्टर त्रिवेणी रम्बुका और कैबिनेट के सपोर्ट के साथ किया गया है, जिसमें यह एक्नॉलेज किया गया है दैट एन आउटब्रेक लेवल रेस्पॉन्स इज नो लॉन्गर सफिशियंट इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए. और सरकार जो है सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि कई अन्य ओवरसीज कंट्रीज में अब इसको बहुत गंभीरता से ले रही है. और ग्लोबली मीडिया जिनमें CNN भी शामिल है ने इस न्यूज को बहुत ही गंभीरता से लिया है और लोगों को वार्निंग्स देना इशू कर दिया है.
5: इसके अलावा एक सिटीजन्स अरेस्ट जो हैमिल्टन में हुआ इसके चलते एक 19-year-old व्यक्ति पर अब असोल्ट के चार्जेस जो है ये लगाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि दे वर कॉल्ड टू कमर्शियल प्रीमिसेस ऑन विक्टोरिया स्ट्रीट एट अबाउट 5:15 PM लास्ट सैटरडे और एक शॉपलिफ्टिंग का मामला जो है ये सामने आया था. जब ऑफिसर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो सस्पेक्टेड पर्सन है शॉपलिफ्टिंग वो ऑलरेडी हैड बीन डिटेन्ड बाय समवन एट द सीन. पुलिस ने ये कहा कि दैट ड्यूरिंग द सिटीजन्स अरेस्ट द पर्सन हु डिटेन्ड द सस्पेक्ट शॉपलिफ्टर असॉल्टेड देम. 19-year-old जो व्यक्ति है उन्हें अब चार्ज किया गया है विद कॉमन असॉल्ट एंड इज ड्यू बैक इन हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन फ्राइडे. सस्पेक्टेड शॉपलिफ्टर जो है वो फिलहाल अभी यूथ जस्टिस प्रोसेस के थ्रू जो है किए जा रहे हैं. और ये जो केस है जस्ट केम आफ्टर न्यूजीलैंड ने अपना सिटीजन्स अरेस्ट पावर्स जो है एक्सपेंड किया था. फिर रिमेंबर लास्ट मंथ इसके बारे में हमने काफ़ी अपडेट्स आपको दिए थे. जस्टिस मिनिस्टर पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा है कि द लॉ अलाउज पीपल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस टू होल्ड समवन एंड देन कॉल पुलिस और इंस्ट्रक्शंस जो है पुलिस की ओर से ये आप फॉलो करें. उनका कहना है कि ही स्टैंड्स बाय द न्यू पॉलिसी लेकिन वो इस मामले में फिलहाल कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि एक इंडिविजुअल केस है. तो याद रहे सिटीजन्स अरेस्ट जो है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पकड़ रहे हो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको साथ आप मार पिटाई कर दें. पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी सेफ्टी देखें. इफ़ यू फील यू आर इन अ सेफ पोजिशन टू डू सच अ थिंग तभी आप इसमें इन्वॉल्व हो. दूसरी चीज़ जिसका ख्याल आपको रखना है कि किसी पर हाथ उठाने का हक फिर भी आपको नहीं मिलता. एंड दैट इज़ वाई वट यू नीड टू डू इज़ यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस स्ट्रेट अवे. और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचे जो भी इंस्ट्रक्शंस पुलिस आपको देती है कि ठीक है अब आप हट सकते हैं यहाँ से विल टेक इट ओवर विल लुक इन टू दिस मैटर तो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू फॉलो द रूल्स.
14: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZ PMI, your

0: Breakfast Show with Weejay and Pooja.
1: 2 bojao, papi ho. 2 bojao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
2: Aaj ki pehli baat, majboor bhi tootte hain, mashhoor bhi tootte hain. मजबूर भी टूटते हैं, मशहूर भी टूटते हैं, वक्त की चोट के आगे गुरूर भी टूटते हैं।
3: Very true.
2: और आज की दूसरी बात हो सके तो इस पर गौर करें। कहकर सोचना और सोचकर कहना इंसान का व्यक्तित्व बदल देता है।
3: एक बार फिर से।
2: कहकर सोचना
3: हाँ?
2: और सोचकर कहना एक इंसान की पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल देता
3: है। वेरी ट्रू अगेन। चलिए इसी बात के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। शुक्रिया आपके साथ और समय के लिए। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक सुबह 6 पर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जो आपके लिए हम लेकर आएंगे।

सिंगिंग आती है ना, वो जो गाना आता है वो कौन सा था, माधुरी दीक्षित का घाघरा वाला, उसमें भी बिल्कुल ऐसे आता है कि अरे आ गई हैं सो एंड सो, बिल्कुल वही फीलिंग आ गई है मुझे भी इस समय कि मैं आ गई हूँ स्टूडियोज में आपका साथ निभाने के लिए। और 10 से 12 बजे तक आपका और मेरा ये जो सफ़र होता है ना, बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत बहुत मज़ा आता है आपके साथ बातचीत करके। बताने के बाद जब होता है ना, आपका रिस्पॉन्स आना शुरू होता है ना, दैट एक्चुअली मेक्स माई डे। वैसे ऑफिस शाउट आउट के लिए भी आप तैयार हो जाइए, कहीं से सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, बस मैसेज डाल दीजिए, ताकि कभी कभी ऐसे ना फीलिंग आती कि भाई मैं अकेली आपस में मैं अकेले ही बातें करते चले जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं होता खैर, मगर हाँ आपके जब टेक्स्ट आते हैं ना वो एक अच्छा एनर्जी लेवल बन जाता है। बिग थैंक यू टू कशिश फूड्स जो आपका और मेरा ये जो एक रिश्ता है जो बनाए रखे हैं। 10 से 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आ जाती हूँ मैं काशिका आपका साथ निभाने के लिए। और बस थोड़ी देर बाद हमारे एक एक्सपर्ट जो है मिथिला गडकरी, ये आ रही हैं एशियन फैमिली सर्विसेज से बात करने के लिए। अब ये सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, डिटेल्स आपको मैं बताऊंगी इन अ बिट। स्टे ट्यून्ड, कीप हमिंग। बचा रही हूँ गाना, ओके? बचाओ क्या?

0: एक्सपर्ट्स अड्डा। एक्सपर्ट अड्डा में मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि मेरी बातचीत होने वाली है एशियन फैमिली सर्विसेज में, और एशियन फैमिली सर्विसेज में आज जो मेरे पास एक बात है, ये आई कैन डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट, एंड आई हैव ऑनलाइन विद मी नन अदर देन मिथिला। एंड मिथिला इज डॉक्टर मिथिला गडकरी, पब्लिक हेल्थ लीड फॉर एशियन फैमिली सर्विसेज। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मिथिला, कैसी हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग कशिका जी। वेल, पहले तो थैंक यू मुझे आपके शो पर आने का मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं तो बस ठीक हूँ। वैसे एक बात बताइए, अभी ये आने वाले जो मंथ्स हैं, वी

0: We'll be talking about mental health और उसकी importance for noticing it कि जब मैं या हमारे आसपास कोई जिनको एक support चाहिए होती है तो Asian Family Services जो हैं इसमें एक program कर रहे हैं जहाँ पर reach in reach out, इसका मतलब अगर आप हमें समझा सकती हैं तो please बताइए।
1: कशिका जी, कभी कभी low feel करना normal बात है, right? तो उस समय reach in करना मतलब टेकिंग अ पॉज टू नोटिस हाउ यू आर फीलिंग। तो खुद से पूछिए, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, क्या मेरी नींद, मेरा रूटीन या मेरा लोगों से मिलना जुलना बदल गया है। सो नोटिसिंग दीज चेंजेस इज अ पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप। इसी तरह रीच आउट करना मतलब स्टार्टिंग अ सिंपल केयरिंग कॉन्वर्सेशन विद समवन हु सीम्स डिफरेंट देन दे यूजुअली आर। तब आप बोल सकते हैं कि यू डोंट सीम लाइक योर सेल्फ लेटली, वुड यू लाइक टू टॉक। तो अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार अपनी परेशानी शेयर करे तो उनकी भावना को समझे, उनके लिए मौजूद रहे और बिना कोई राय बनाए उनकी बात सुने।
0: बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी जब हम लो फील करते हैं ना तो ये एकदम मौसम की तरह होता है ना कि कभी धूप है कभी छांव है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो यू सी ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना।
1: हाँ एकदम।
0: हाँ, तो इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आप किस तरह या हेल्प कर सकते हैं या क्या सपोर्ट हमारे लिसनर्स को मिल सकती है।
1: तो सबसे पहले तो टॉक टू समवन यू ट्रस्ट।
0: हाँ,
1: और वो उसके बाद भी अगर नहीं आपको यू नो सॉल्यूशन मिल रहा है तो यू कैन टॉक टू अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल। सो एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री और कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी एशियन हेल्पलाइन नंबर है फ्री, which is 0800-862-342। तो लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई इमीडिएट डेंजर में है जैसे आप या कोई भी आप जानते हैं तो उस समय आपको 111 पे कॉल करना है इमरजेंसी सर्विसेज को। तो रीचिंग आउट जो है इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है।
0: यस एब्सोल्युटली। तो भाई इमीडिएट डेंजर है, इफ़ यू नो समबडी कॉल 111 या इमरजेंसी सर्विसेज। और जब जैसे आपने कहा कि रीचिंग आउट इज एक्चुअली एक ताकत है, इट्स अ साइन ऑफ बीइंग शोइंग योर स्ट्रेंथ यू हाउ स्ट्रांग यू आर। और मदद किसी से भी मांगना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं, कमज़ोरी नहीं कह सकते, कोई वीकनेस नहीं हो सकती, बल्कि एक आई थिंक ब्रेव यू नो ब्रेवरी की निशानी है, है ना, कि किस तरह से आप हिम्मत रख सकते हैं अपने आप। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से?
1: यस यस श्योर डेफिनेटली डेफिनेटली।
0: बिल्कुल, तो भी जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। एंड इनका एशियन हेल्पलाइन का फोन नंबर है टोल फ्री 0800-862-342, दैट्स 0800-862-342। और एशियन फैमिली सर्विसेज .nz इनका वेबसाइट एड्रेस है, ज़रूर क्लिक कीजिए अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। मिथिला जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ बात की एंड अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।
1: थैंक यू कशिका जी,
0: टेक केयर, बाय बाय।
1: यू टू, बाय। माय टाइम विद कशिका, आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, हाफी तो नहीं।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है यार, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.

0: weekdays 6 to 10 a.m.
1: ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम चाहिए? यस प्लीज, माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के वन आवर क्लिक एंड कलेक्ट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करो और सिर्फ एक घंटे में कलेक्ट करो. टीज एंड सीज अप्लाई. स्किप द क्यूज एट माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
5: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks' greatest rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो? तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
8: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
8: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
11: JB Hi-Fi is celebrating the stunning store refresh of JB Sylvia Park this Thursday from 5 p.m. with Cost Plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Sylvia Park this Thursday, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
12: Office Shoutout.
13: तो जब मैं ऑफिस शॉर्ट आउट की बात करती हूँ तो बस एक ही नाम मुझे याद अभी समय आ रहा है, और वो नाम याद आ रहा है जो आप मुझे सुन रहे हैं मैंगरी से, विम्स इंटरनेशनल से. दिस इज नन अदर देन वी हैव रश्मि हियर, एंड थैंक यू वेरी मच. जिस तरह से आप प्यार से हमें सुनती आ रही हैं, तो थैंक यू वंस अगेन. आपका मैसेज आया हुआ है, यू आर इन्जॉइंग. सो तो ये हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, लेकिन अब आगे हमें जब बढ़ना है, हम कहते हैं ना कि हमें कुछ भी बढ़ने के लिए कुछ आपकी मदद चाहिए होती है, और ये मदद हम आपकी डेफिनेटली चाहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, गला फिर से पकड़ गया है लगता है ऐसा, क्योंकि कभी ऐसा मौसम होता है ना, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको करना है, 1:05 के आसपास ट्यून करना है. न्यूजीलैंड स्पीक्स और इलेक्शन स्पेशल ड्राइव शो पर आने वाला है, और ये 5:05 एक्ट पार्टी के लीडर डेविड सिमर जो बात करने वाले हैं अबाउट पॉलिसीज, प्रायोरिटीज़ एंड उनका विजन न्यूजीलैंड के बारे में. आपका कोई सवाल है जल्दी करो, 5599 पे आप ड्राइव लिख के भेजिए और अपना सवाल लिख के भेजिए. देखिए कोई ऐसा कुछ होगा, हो सकता है डेविड समर आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दें. सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपने अभी पहले ऑलरेडी इसमें रजिस्टर कर दिया है अपना नाम, लेकिन आउट टू योर स्पीक्स एंड योर क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स इज गोइंग टू बी द सिलसिला.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: एब्सोल्युटली हमारी कोई ब्रांच नहीं, बट एक बात बताऊं आपको कि इतना कुछ होता है जब, और ये गाने जब आप सुनते हैं ना तो अच्छा लगता है। कल मैं भूल जाती हूँ, अभी बता नहीं क्या हो गया, अरे तुम रिमाइंडर तो दे ही सकते हो ना। अब रिमाइंडर ये है दैट व्हाई डोंट वी ट्राई एंड सेलिब्रेट आवर सेलिब्रिटीज हु आर स्टिल देयर विद अस, आवर लेजेंड्स। सो अ बिग हैप्पी बर्थडे सुखविंदर जी को, जिनका कल बर्थडे था। सो ये तो उनके बर्थडे के लिए मैंने सोचा चलो एक आध गाना उनका बढ़िया सा मैं आपके लिए बजा देती हूँ। लेकिन ये माउरी वीक है, और जहाँ पे माउरी लैंग्वेज वीक जब है, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे हमें करनी होती हैं। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, मैं एक मेरा थ्रोबैक है, वो फ़ोटो मैंने अभी अभी फेसबुक के ऊपर शो मतलब पोस्ट करी है, हैव अ लुक एट इट, आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इट इज़। से सो तो आतुआ होकी, सो तो आता हुआ होकी, इसका मतलब है दैट्स ब्यूटिफुल। और ये एक कैंपेन हुआ था, और जब ये कैंपेन हुआ था एक थ्रोबैक 2023 में, और उस 2023 के कैंपेन में आई वॉज फीचर्ड है, तो जाइए जाके फोटोग्राफ देखिए।

0: on with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: You know, there are films like horror film, जैसे हैवान आके गई और उसके बाद अब The One, ये पिक्चर एक आ रही है और ये एक टीज़र इसका आ चुका है. एक फोक लोर पर बेस्ड ये कहानी है जहाँ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इस फिल्म में है. एंड ये एक कहानी है एक फॉरेस्ट के आसपास की जहाँ पे एक इंडियन फोक ट्रेडिशन चलती चली आ रही है जहाँ फैंटेसी एडवेंचर एंड मिस्ट्री है. एंड ये जो फिल्म है 25th of September के दिन रिलीज़ होने वाली है. अब ये एंशंट बिलीव सुपर नेचुरल फोर्सेस पर बेस की गई है जिस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना जो हैं पहली बार एक साथ पेयर अप होकर आ रहे हैं और साथ में इसमें एक्शन रोमांस ह्यूमर काफ़ी कुछ नज़र आने वाला है. ये स्टोरी जो है ये कैरेक्टर्स की पर्सनल जर्नी से लेके एक लार्ज मिस्ट्री विच इज़ कनेक्टेड टू द वर्ल्ड ऑफ वन वन इज़ फॉरेस्ट. तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें जो है आपको नज़र आने वाली हैं. एंड इट्स यू नो इट वॉज आई थिंक फ्रॉम अ कॉमिक मूवी कॉमिक बुक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन जिसके ऊपर ये कहानी फिल्म के ऊपर बेस की गई है. तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म एंड लेट्स सी 25 तारीख को अगले फ्राइडे के दिन ये फिल्म जो है रिलीज़ होने वाली है. फोकलोर फैंटेसी मिस्ट्री एडवेंचर एक साथ एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड में आपको लेके जाने वाले हैं. लेकिन हाँ, इस सुपर नेचुरल वर्ल्ड के साथ एक सुपर ड्रीम भी होती है आपकी अगर कुछ आ रही है तो वो ड्रीम जो है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसको इंटरप्रेट करके आपको बता सकूँ कि आपकी ड्रीम का क्या मायने हो सकता है.
2: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Bunnings helps you to elevate your garden. In spring, from getting the une soil ready to our wide range of nake nake plants and hua whenua veggies. Come and have a kōrero of us to get your māra humming.
5: It's Woolworths $5 frenzy. Fill the trolley with Lucifora mandarins just $5 a kg. And Wattie's baked beans or spaghetti 420 gram 3-pack just $5 each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
6: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
7: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
9: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है. अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. दायरा स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन.
10: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ.
11: और मैं नहीं करता.
9: दायरा रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर.
11: उनकी स्टोरी ओवर है.
10: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है.
9: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: Frankly speaking, आज कोई टेक्स्ट नहीं आया. अबाउट द ड्रीम, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर कीपिंग इन माइंड दैट मूवी द वन, कभी कभी सुपर नेचुरल्स जो होते हैं ना, उनके ड्रीम्स जो होते हैं, वो सुपर पावर्स जो होते हैं, दे वॉन्ट यू नो प्रॉबली आपकी ड्रीम्स में अगर वो आते हैं और आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस हैं आप इस बारे में, तो ये कॉमन मीनिंग्स इसकी हैं, दैट यू वॉन्ट अ सिचुएशन टू बी फिक्स्ड एंड यू फील दैट इट इज़ गोइंग आउट ऑफ योर हैंड. एक कॉन्फिडेंस जो होता है आपकी, जो अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए टू फेस अ बिग चैलेंज, शायद कभी कभी वो मिसिंग हो जाता है. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है दैट यू वॉन्ट टू ब्रेक फ्री, जहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, हैवी स्ट्रेस होती है. तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि ये सुपर नेचुरल पावर्स जब कभी आपको ऐसा लगता है सपने में अगर आ रही हैं या आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो यस, ये एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है. कुछ अनटैप्ड पोटेंशियल हो सकती है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ सकती है, एंड द डिज़ायर टू कंट्रोल और द फ्रीडम. ये सपने जो होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं, जहाँ पे कुछ हिडन अबिलिटीज़, इमोशनल ग्रोथ, डीपर लेवल्स, जहाँ आप आपकी खुद के अवेयरनेस के बारे में सोचने लग जाते हैं. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं.
0: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो वैसे आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है और एक या ऐसे हमारे नेता का जन्मदिन है जो बहुत बहुत कम लोगों का जन्मदिन होता है आज के दिन. 17 सितंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं नरेंद्र मोदी जी, आज इनका बर्थडे है. लेकिन अगर आपका बर्थडे उनके साथ मैच करता है, वैसे मुझे बहुत कम लोग मिले हैं जिनका बर्थडे उनके साथ मैच करता है, मगर अगर आपका बर्थडे मैच करता है तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. और आपके अंदर भी वही तेज होगा. वैसे एक बात है, मैं नोट कर रही थी कि आज एक राजा का बर्थडे है. अब राजा, अरे फिल्म राजा थी और इस फिल्म राजा में संजय कपूर ये नज़र आए थे. और शायद इनका डेब्यू तो नहीं था इस फिल्म में, लेकिन इस फिल्म के बाद इनकी काफ़ी बातें इनके बारे में होनी शुरू हो गई थी. अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट डू वेल व्हेन इट केम टू सिनेमाज, बट या आई थिंक इस फिल्म में जो शाइन आउट करके आए थे वो थी फिल्म की हीरोइन यानी कि रानी यानी कि माधुरी दीक्षित. तो चलिए ये गाना मैं आपको सुना रही हूँ एंड हैप्पी बर्थडे टू यू. इन केस आपका बर्थडे है एंड यू आर शेयरिंग अ बर्थडे विद इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो प्लीज़ गो अहेड, मुझे टेक्स्ट कीजिए. देखते हैं कि आप में कितनी पावर दिखती है उनके जैसे.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 18 overnight, temperature of 11. आज का forecast बताया जा रहा है, it feels like 17 degrees right now. Cloudy day रहेगा, शाम के समय बारिश पड़ सकती है. 6:14 पर sunset बताया जा रहा है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithi, kyunki aa rahi hai.
2: My time with Kashika.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? क्या चल रहा है भाई? बर्थडे एनिवर्सरी, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड अ हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू. इसके साथ साथ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों का बर्थडे है तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे के साथ साथ मैं इतना कह सकती हूँ दैट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें लगता है कि शायद हम अंडरप्ले कर जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस, ऐसी बातें आती रहती हैं. बट देखो सामने, आगे देखो, आगे सामने सवेरा है, यानी कि वीकेंड आपके बिल्कुल नज़दीक आके नॉक नॉक करने वाला है. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है, जहां पर मैं कशिक आपका साथ निभाती हूं और आपका साथ मैं 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे यहां निभाने आ जाती हूं. 10 से 12 बजे का ये जो शो होता है ना, इस दौरान मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूं, बहुत सारी ऐसे बातें शेयर करूं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो. तो बस थोड़ी देर बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपके साथ करूंगी. स्टे ट्यून, कीप हमिंग.
0: बचाओ क्या,

0: ईट बेटर लिव बेटर कशिश फूड्स के अगर आप हल्दी का भी पैकेट उठाते ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रीजनेबल है हल्दी। मैं हल्दी की इसलिए बात करती हूँ कि हमारी ब्यूटी में हल्दी का बहुत महत्व है, और ये खास तौर पे हल्दी के आइस क्यूब्स अगर हम फ्रीज कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए आप इसे अगर स्किन पर लगाएं तो कितने एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले ये कूलिंग है, इसके इंग्रेडिएंट्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, और स्पेशली आपको कभी प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि हाँ हमारे को एंटी एजिंग में इसकी ज़रूरत है, या पिगमेंटेशन या एक्ने किस चीज़ से। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम इसे आइस क्यूब्स को अगर बनाना चाहते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, इन्हें आपको थोड़ा सा यू नो लाइक आपके साथ इसका माइल्ड कॉन्टैक्ट होना चाहिए, बहुत एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए। तो एक कूलिंग इफेक्ट देने के लिए उसको प्योर आइस में आप ऐड कर सकते हैं। हल्दी को थोड़ा सा पानी में आपने ऐड किया एंड दैट्स अबाउट इट। देखो कितनी सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक मोमेंट्री रिलीफ देते हैं हीट। अब ये धीरे धीरे स्प्रिंग आ रहा है, हीट शुरू होने वाली है, एक स्किन पर अलग सा प्यारा सा सेंसेशन आने लगता है, ख़ास तौर पे जब वेदर चेंज होने लग जाता है और स्किन पे एक ग्लो जो आती है, आपकी स्किन जो है टेम्परेरली ये रिफ्रेश कर देते हैं, और इसकी कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो फ्रेशनेस और फेशियल स्किन को टाइट बनाने में हेल्प ज़्यादा करती है। एक छोटा सा सेल्फ केयर का रिचुअल अगर आप कर लें, एक DIY मास्क होता है, उसके बाद आप आइस क्यूब लगा लीजिए वॉश करने के बाद, यू नो विद दी टर्मरिक या हल्दी आइस क्यूब्स, सी द डिफरेंस, और आपके लिए रिजल्ट्स क्विक होने शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत ही सिंपल है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा परेशान मत सोचिए क्या करें क्या ना करें। बस आपको एक कप ड्रिंकिंग वाटर में सिर्फ आधा चम्मच हल्दी डालनी है, और एक आइस क्यूब ट्रे में आपने क्लीन से आपने एक स्पून से करते करते आपने उनको भर देना है। दैट्स अबाउट इट। आपकी स्किन की टॉलरेंस आपको देखनी पड़ेगी कैसी है। तो हल्दी अगर आप पानी में डालते हैं तो मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा रफ नहीं हो हल्दी, उसका पाउडर होना चाहिए, और इसको कुछ फ्रीज कर लीजिए कुछ घंटों के लिए, ओवरनाइट रख दीजिए, दैट्स अबाउट इट। अब ये फ्रोज़न बाहर निकल कर आती हैं, आप हाथ से टच नहीं करना चाहते तो किसी टिश्यू पेपर में आपने इसको, या किसी भी तरीके से आप इसको इनडायरेक्टली आप लेके अपने स्किन पर अच्छी तरह से रोटेशन के साथ साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माइल्ड क्लेंजर के साथ आपकी स्किन पहले क्लीन होनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई द क्यूब, रिमेंबर दैट। और इसको आप एक, जैसे मैंने कहा, किसी कपड़े पे या किसी टिशू, मोटे टिशू में, किचन टॉवल में रैप कर सकते हैं। जेंटली इसको आपको लेना है, आपके जो पफिनेस है आइस के नीचे आप डैब करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहता है, और काफ़ी मिनट तक आपकी स्किन देखिएगा, आप इसे टच कीजिए, करिए ट्राई, इट विल वर्क वंडर्स। उसके बाद इसको ड्राई करने के बाद थोड़ी सी मॉइस्चराइजर क्रीम अगर आपने लगा ली, बस दैट इज़ मोर देन इनफ एज योर DIY स्किन केयर। स्किन की स्किन आपकी रिफ्रेश हो गई, खूबसूरत की खूबसूरत ये लगने लग गई।
1: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुज़बे, टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुज़बे, ओनली ऑन हम।
6: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
1: Choose कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में।

0: with a vehicle warranty. More ways to save at Winger Motors East Auckland, North Shore and Pukekui, or winger.co.nz. On now till 30th September. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: It's the Briscoe's lady here. I'm hitting the road to celebrate Briscoe's biggest birthday yet, with birthday treats to give away across Auckland stores this Friday and Saturday. Pop in and say hi. See online for participating stores and times.
2: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
4: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
8: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
9: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
8: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
10: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
11: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
12: तो मेरी six word story आज की है, big thank you to ध्रुव, आपका मैसेज है। आपने कहा many paths, one ultimate divine essence। मैंने तो बताया भी नहीं था कि आपको क्या आज की, अच्छा आपको पता है मेरी थीम है इस पूरे हफ्ते के लिए divine, yes, yes। आज क्या हो रहा है मुझे सब भूल रही हूँ, बट दैट्स ओके। सो यस, डिवाइन है। एंड कल इंस्टाग्राम पे मेरी ये कहानी डेफिनेटली जाने वाली है कि कितने सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया, मुझे रिप्लाई दिया और आपने पार्टिसिपेट किया सिक्स वर्ड स्टोरी में। अगर आपकी भी कोई सिक्स वर्ड स्टोरी है तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर मुझे बताएं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू एड इट टू माई इंस्टा स्टोरी, इंस्टा पोस्ट, जहाँ मैं आपकी स्टोरी डिवाइन, आपकी फीलिंग क्या है बताइए। चलिए, हफ्ता भी ऐसा चल रहा है ना गणपति का, तो ऐसे में हम लोग गणपति जी के इस ब्यूटीफुल से हफ्ते में जा रहे हैं और प्रेयर्स कर रहे हैं। और आज एक ऐसी फिल्म भी शायद आई थिंक रिलीज़ हुई है, हनुमान अंश, उसके बारे में कितना सुना है मैंने। माई गॉड, द फिल्म हैज़ गॉन सो वायरल। देखनी पड़ेगी, है ना। कुछ भी हो, ऐसी चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है जब किसी के बारे में ख़ास तौर में पता चलता है। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कि हमारे कीर्तन संग्रह जो है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है 25th of September के दिन वैदिक सेंटर पापाटोई में होने वाली है। जो कलाकार हमने सेलेक्ट किए हैं उन कलाकारों को रुवा ऐप पर आप हम फीजी कीर्तन संग्रह पर सुन भी सकेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं हम ये कैसे कर रहे हैं, You are most welcome to become a guest. आ जाइए 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापा टोई टोई में और आप इस ब्यूटीफुल से इवेंट को देखें कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिफ्रेशमेंट्स है, कावा विल ऑल्सो बी ऑन सेल और साथ साथ प्राइजेस जीतने का मौका भी आपको मिलेगा।
11: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वैसे इस शहर में एक चीज तो है, आप फ्राइडे को निकले, मैं दोपहर में निकलती हूँ, आई एम क्रॉसिंग दी स्ट्रीट नियर के रोड। अच्छा, के रोड से पहले एक अंदर से मीडिया वर्क से जब मैं जाती हूँ, हर फ्राइडे के दिन मुझे रोक लिया जाता है, पूछो क्यों, बाय द कॉप्स। ब्रीदिंग का टेस्ट करते हैं, वो ब्रेथ टेस्ट लेते हैं, और ब्रेथ टेस्ट मैं कब, भाई मैं तो दूर दूर तक कहीं पे भी कभी ना पीऊँ, पीती नहीं हूँ, तो क्या फिर भी होता है टेस्ट ऑफकोर्स। बट एक बात बताऊँ आपको, कुछ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जिसमें बार्स, आरएसए क्लब्स जो हैं वो ऑफर करते हैं फ्री कर्टसी वैन सर्विसेज, जहाँ वो पेट्रंस को पिक करते हैं घर से और ड्रॉप करते हैं सेफली टू देयर प्लेस वेयर एवर देयर इज। ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज हैं एंड दे कंप्लाई विद द न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग लॉ। अगर आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रनिंग देयर कॉस्ट, अब जिसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस चार्जेस टू द पेट्रंस होता है, अब ये पैसेंजर सर्विस में इट्स जस्ट लाइक अ टैक्सी सर्विस एक्चुअली। सो डेविड सिमर जो आज शाम को 5 बजे ड्राइव शो में सैंडे और रुजबे के साथ भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा ये की स्टेप लेना चाहते हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेगुलेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। वो कहते हैं ये स्टूपिड रूल्स हैं और ये कट करना चाहते हैं, तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स, बट आई एम श्योर यू विल हेयर अबाउट इट सून एट 5 o'clock। स्टे ट्यून्ड।

0: chacun.
1: अद्भुत। वैसे एक बात तो है, हमारी कम्युनिटी में जो कुछ हो रहा है ना, वो उसका अगर आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये बाकी के जो लोग होते हैं उनको सुन के उससे लाभ मिलता है, ठीक है। यानी कि आपकी कम्युनिटी की बात, आपका कम्युनिटी का प्रचार हम कर देते हैं कि कुछ कम्युनिटी इवेंट हो रहा है, जैसे वेद प्रचार वीक जो है वो 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 32 ग्लासगो एवेन्यू पापा टोई टोई में होने वाला है। ये हाईलाइट होगा 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड। इसी के साथ साथ नॉर्थ शोर भारतीय संगम आपके लिए गणेश चतुर्थी 19 तारीख को लेकर आ रहा है, आने वाले संडे के नहीं सैटरडे के दिन, और ये सुबह 11 बजे से टाकापुना वॉर मेमोरियल हॉल में होने वाला है। यहाँ पे आपको सुबह 11 बजे से गणेश पूजा और उसके बाद महाप्रसाद, कल्चरल इवेंट ढोल ताशा के साथ 4 बजे ये इवेंट का समापन भी किया जाएगा। 7 दिन की श्रीमद् भगवद गीता की जो प्रचार है, उनका कथा जो है ये 20 तारीख तक चलने वाला है, 14 से शुरू हो चुका, 7:30 से 9:30 भारतीय मंदिर, आप यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। श्री राम मंदिर में भी गणेश जी के उत्सव में 20 तारीख तक आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप 7:20 से लेकर 9 बजे तक आप आ सकते हैं हर रोज़ गणेश पूजा के लिए, और फिर गणेश विसर्जन जो है वो सुबह 9 बजे 20 तारीख को होगा, एंड दिस विल हैपन अराउंड 12 o'clock। बस थोड़ी देर में आपके लिए रिसाइकल मी यू री यूज मी क्या करना चाहेंगे, राजमा ऑफ कोर्स।
2: ड्राइविंग योर होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
4: ये गलत बोल दिया यार,
3: और पहनता भी नहीं उसको।
4: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो।
4: अभी ब्रांड हो गया ना।
3: रुस्बे के बाल लगे उस।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
9: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
10: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
11: Make the most of your deck with a stylish louver from Trade Tested. From tiny decks to massive decks, we've got a louver that'll suit you. Easy to put together and unbeatable value starting at only $3,000. Make your backyard great at Trade Tested today.
12: Discover more with Air New Zealand flights on sale now. Wherever you're going, enjoy a more Kiwi way to get there. Sales periods vary by destination. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or your preferred travel agent.
13: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है, अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, द दायरा स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
0: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
14: और मैं नहीं करता।
13: दायरा रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर।
14: वो कल्चर केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
0: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
13: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग टीबीसी।
15: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
16: Rescue me, recycle me.
1: तो कल हमने बात की थी राजमा टिक्की के बारे में, लेकिन आज मैं बात करती हूँ राजमा बर्गर के बारे में। नाउ थैंक यू वेरी मच, आपका सुहासिनी कॉल आया था और आपने बताया कि जिस तरह से कशिका जी आपने कहानी मैश करके उसमें आलू डाल दो, तो उन्होंने कहा कि वैसे भी बाइंडिंग होता है राजमा अगर आप उसमें ब्रेड क्रम्स डाल दो और फिर आप अंडा उसमें फेंट के और अगर उसमें आलू भी ऐड कर दो तो उसकी पैटीज की शेप अलग बन सकती है। वेरी गुड आइडिया, आई नेवर रियलाइज। हाँ ऑफकोर्स एग इज़ बाइंडिंग, ब्रेड क्रम्स भी उसके साथ होते हैं और फिर अगर उसका एक हम बर्गर बना देते हैं तो बच्चे भी उसको बहुत ही शौक से, आप उसको लेयर्स बना के आप बच्चे भी आपके स्कूल भी लेके जा सकते हैं। आपको लगता है ना कई बार राजमा नहीं खा पाते बच्चे की क्या होता है, तो इट इज़ नॉट सो बैड, आई क्वाइट लाइक दैट। क्योंकि मैंने तो एक नॉर्मल टिक्की के तरह सोचा कि टिक्की की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट राजमा का बर्गर इज़न दैट अ ब्यूटिफुल आइडिया। ऑफकोर्स आपको बर्गर के जो ब्रेड्स हैं उस वो तो राजमा के नहीं बन सकती, बट आप जो ब्रेड है राजमा के ऊपर जो बंस लगा रहे हैं उसके आप चटनी वटनी लगाएं, मक्खन वगैरह लगाएं और बच्चों को भेज दें, उसमें आप बर्गर वगैरह डाल के सैलड लीव्स, यू आर डन।
15: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: सो इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 800 रचना भाई इन्हीं की ओर से आपके लिए बर्थडे जो कल सुखिंदर जी का बर्थडे मनाया गया था एंड ऑफकोर्स बहुत ही कमाल की आवाज़ है और मुझे उनकी आवाज़ ताल फिल्म में बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ये गाना आपके लिए सेलेक्ट कर लिया है जाने से पहले ये ज़रूर बजाऊंगी लेकिन जाने से पहले याद दिलाऊंगी कि ब्रेकफास्ट कैचअप जो आप है करना चाहें तो कर सकते बियॉन्ड द डेट व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन द वर्ड सेटल्ड हाउ कैन दिस बी रीडिफाइंड तो एक इसका बहुत ही खूबसूरत कैचअप है जो BF लिख के आप डिटेल जान सकते हैं ड्राइव शो में सैंडी और उस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे ऑफकोर्स आज शाम 5 बजे ज़रूर सुनिएगा डेविड सिमर के साथ ये लाइव कॉन्वर्सेशन में आने वाले मेरा सवाल उन तक पहुंच चुका है आप अपना सवाल अगर भेजना चाहें तो आप उनको ड्राइव लिख के 5599 पे ज़रूर भेज सकते हैं लेकिन एक चीज़ आती है कीवी सेवर से रिलेटेड कि कल को अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपकी विल आपकी स्टेट क्या होगा उसके बारे में क्या जानकारी है तो तानिया पिंटू सीनियर ट्रस्टी ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इनसे उन्होंने बात की तो ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पे ये भी आपको लिंक मिल जाएगा तो इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार आज का दिन कहलाता है गुरुवार वीरवार बृहस्पतिवार मेरी मुलाकात आपसे होगी दिन कहलाएगा शुक्रवार और आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का दिन होगा मैं तो ये बात समझ गई क्या आप समझ गए दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

एक चीज में बताना भूल गया, वो ये था कि कौन कौन से स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं आज है 17 तारीख। वेल यस, सबसे पहले तो फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप और भी इवेंट्स हैं जैसे कि डेविस कप क्वालिफायर सेकेंड राउंड, ये भी शुरू होने वाला है, इसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कोई खास ऐसे इवेंट नहीं अभी, अभी हाल फिलहाल तो यही है। क्रिकेट में देख लेते हैं, जस्ट इन केस अगर कुछ अपडेट हो तो डेफिनेटली आपको जानने का पूरा हक है। और ऑब्वियसली हमें अगर आप सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको ईजिली पता पड़ जाता है सारी बातें। सो यस, आज के दिन मेन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टूर ऑफ मलेशिया, ये 3rd T20 इंटरनेशनल चल रहा है, उसे आप देख सकते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल कप ये चल रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनें दो मैचेस हैं आज, रवांडा उगांडा के बीच और बोत्सवाना केन्या के बीच। एंड साथ में अगर वुमेंस की अगर बात करें तो कल के दिन, आई मीन सॉरी 17 सितंबर, बांग्लादेश चाइना, ये आप एंजॉय कर सकते हैं। ये एक्चुअली शुरू भी हो चुका है। और उसके अलावा पाकिस्तान थाईलैंड के बीच 5 बजे शुरू होने वाला आज, उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये करीबन रात के 11:30 बजे शुरू हो जाएगा, तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं। बचाओ क्या?